मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रथम प्रसारण सभा। इस सभा के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र दिव्या अग्रवाल का नमस्कार और सुप्रभात।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक हैं। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली

0: में लक्समबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा, वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति मीडियम वेव पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस देशगान के साथ।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। लीजिए अब सुनिए इस कार्यक्रम में पंडित राजन साजन मिश्र के स्वर में ये भक्ति रचना, हनुमान जी को समर्पित ये भक्ति रचना हम आपको सुनवा रहे हैं। लीजिए आनंद लीजिए।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से, और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ए हरिहरन के स्वर में भक्ति रचना, जो समर्पित है श्री राम के चरणों में।

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रम दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।

0: अनूप जलोटा के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन। चिंतन में आज आप सुनेंगे डॉक्टर केशव सिंह राठौर के विचार। उपलक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का। सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर डॉक्टर केशव सिंह राठौर के विचार।
1: शिक्षा विश्व की प्रगति का प्रथम सोपान है। शिक्षा के माध्यम से हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है जिसके माध्यम से विश्व साहित्य दर्पण में विभिन्न भाषाओं, भावों और संस्कृतियों के अक्षय कोष का प्रतिबिंब देखने को मिलता है, जो हमारे विवेक और हमारी संवेदनाओं को जागृत करता है। लेकिन ज्ञान मार्ग की पहली सीढ़ी साक्षर होना है। साक्षरता ही व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है। पत्र व्यवहार, लेख प्रकाशन आदि ज्ञान द्वारा मानवीय गुणों की उपलब्धि होती है। निरक्षरता समाज का कोड है, जिसके कारण हस्ताक्षर का अभाव रहा और अंगूठा लगाने की प्रथा का जन्म हुआ। आज भी बहुत लोग इस भीषण रोग से आक्रांत हैं। हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों एवं महापुरुषों की ओजस्वी वाणी द्वारा शिक्षा का प्रसार किया गया। मध्य प्रदेश में सन 1938 ईस्वी में शिक्षा प्रसार विभाग की स्थापना हुई। शहर और ग्रामों में रात्रि पाठशालाएं खोली गईं। चित्रगुप्त नाइट स्कूल सराफा बाजार ग्वालियर ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया। सन 1954 में मैं भी इसी विद्यालय का छात्र था। सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य किया और प्रतिवर्ष साक्षरता दिवस मनाए जाने लगा। उन दिनों साक्षरता अभियान प्रगति पर था। मुझे भी इस दिशा में सेवा अवसर प्राप्त हुआ। छात्र छात्राएं एवं अनुभवी अध्यापक इस अभियान में इस प्रकार नारे लगाते थे, अशिक्षा का नाश हो, शिक्षा का प्रचार हो तथा अंगूठा लगाना पाप है। अंगूठा वालों को बड़ी शर्म आती थी। फल यह हुआ कि हजारों लोग शिक्षित हो गए। अक्षर ज्ञान उपरांत रोचक पुस्तकें तथा पुस्तकालय स्थापित किए गए। पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई। हमें निरक्षरता का पूर्णतः अंत करना ही होगा, तभी साक्षरता की ज्ञान गंगा में अवगाहन किया जा सकता है। अक्षर के जाने बिन ही है अब नहीं ज्ञान, कुछ सुनता कुछ बोलता सब कुछ धूल समान। साक्षरता के अभाव में प्राणियों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। निरक्षरता के कारण व्यक्ति के विवेक का दीपक बुझ जाता है। निरक्षर प्राणी के उच्चारण में कुछ ऐसा बेढंगापन होता है जो समाज के बीच में हास्यास्पद बन जाता है। वास्तव में साक्षरता खुशियों, आशाओं एवं महत्वाकांक्षाओं की जननी है। निरक्षर व्यक्ति धोखा खाता है। कभी कभी तो निरक्षर व्यक्ति की भूमि भी इसी प्रकार हड़प ली जाती थी। विश्व का हर मानव साक्षर होकर प्रगति के सोपानों पर चढ़ता हुआ पारस्परिक एकत्व एवं प्रेम के सूत्र में बंधकर विश्व कल्याण में संलग्न हो जाए, ऐसी कामना है। साक्षरता अपनाए सब, तम को दें भगाए। साक्षरता अपनाए सब, तम को दें भगाए। और तभी विश्व उन्नति करे, सुमति शांति मिल जाए। और तभी विश्व उन्नति करे, सुमति शांति मिल जाए।
0: अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में ये आपने सुने चिंतन। चिंतन में आपने सुने डॉक्टर केशव सिंह राठौर के ये विचार। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

0: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है भिंडी की फसल को बीमारियों से कैसे बचाएं, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, सब्जियों में भिंडी एक प्रमुख फसल है। भिंडी की फसल में अनेक बीमारियों का प्रकोप होता है, लेकिन सभी बीमारियों में पीत सिरा और खर्रा रोग बहुत ही अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। यदि फसल पर पीत सिरा मोजक वायरस का आक्रमण फसल बुवाई के 35 से 40 दिन के अंदर हो जाता है तो फसल की पैदावार बहुत कम हो जाती है। पीत सिरा मोजक एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों की सिराएं कुछ मोटी, पीली और चमकीली हो जाती हैं, और धीरे धीरे ये पत्तियां पीली और छोटी हो जाती हैं, बाद में सिकुड़कर मुड़ने लगती हैं। पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और भिंडी विकृत होकर कड़ी, छोटी और हल्के पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है, जिससे खाने योग्य नहीं रहती है और बाजार में बेचने पर कीमत नहीं के बराबर मिलती है। भिंडी की फसल में पीत सिरा मोजक रोग का संचरण बेमेसिया टेविकाई नामक तंबाकू की सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। ये मक्खियां भिंडी के पौधों पर से ही अपना पोषण प्राप्त करती रहती हैं और प्रजनन वहीं पर बढ़वार होती रहती है। इस प्रकार रोगी पौधों से रोग के विषाणुओं को स्वस्थ पौधों तक पहुंचाती हैं। जब ये फसलें खेत में नहीं रहती हैं, जब ये मक्खियां कुछ जंगली किस्म के पौधों पर निष्क्रिय रूप में रहकर अपना जीवन निर्वाह करती रहती हैं, फसल में जिन पौधों पर पीत सिरा मोजक रोग के लक्षण दिखाई दें उन्हें तत्काल उखाड़कर जलाकर नष्ट कर दें। फसल बुवाई के 35 दिनों तक पीत सिरा मोजक रोग के प्रति अधिक सजग रहें। खेत के आसपास उगे सभी खरपतवारों को समय समय पर नष्ट करते रहें और रोग रोधी किस्में उगाएं, जैसे पंजाब 7, परवड़ी, दीप मालका, क्रांति जैसी प्रजातियों का चयन करके बुवाई करनी चाहिए। फसल को सफेद मक्खी से बचाव के लिए मेटासिस्टा की 3 लीटर मात्रा को 1500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। पहला छिड़काव फसल बुवाई के 25 दिन बाद अवश्य करें। इसी तरह फसल पर 5-6 छिड़काव करके सफेद मक्खी की संख्या में कमी संभव है, जिससे रोग की रोकथाम में सहायता मिलती है। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान का प्रयोग भी काफी लाभदायक है। इसी तरह फफूंद जनित खर्रा रोग होता है। इस बीमारी का प्रभाव पत्तियों, कोमल टहनियों और फलों पर होता है। रोग की आरंभिक अवस्था में रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों के निचले भागों पर सफेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है। यह चूर्ण या पाउडर आरंभ में छोटे छोटे धब्बों के रूप में उत्पन्न होता है और बाद में पूरी की पूरी पत्ती को ढक लेता है। अधिक रोग संक्रमण की स्थिति में पत्तियों पर वक्रता आ जाती है। अंत में पत्तियां पीली पड़कर मुरझाकर गिर जाती हैं। खर्रा रोग की प्रभावशाली और सस्ती रोकथाम के लिए सल्फेक्स या बेटालेस की आवश्यक मात्रा घोल बनाकर हर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। अच्छे परिणाम के लिए पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत करें, जिससे फसल में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव कर सकते हैं और फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुनी है कृषि चर्चा। भिंडी की फसल को बीमारियों से कैसे बचाएं और अच्छे उत्पादन के लिए हमें क्या क्या करना है, ये बातें आप सभी ने जानी इस कृषि चर्चा के द्वारा। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, लीजिए सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। दर्पण में सुनते हैं कुछ संदेश।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने। आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
4: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
5: और इन संदेशों के साथ एक सूचना भी श्रोता हम आपको दे देते हैं संगीत कला प्रेमियों के लिए। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 9 सितंबर से यानी कल से सुबह 11 बजे से विश्वविद्यालय के तानसेन सभागार में किया जाएगा। श्रोताओं, इसमें देश भर के विद्वान विषय के संबंध में विचार प्रस्तुत करेंगे और इस अवसर पर मुख्य वक्ता होंगे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और अध्यक्षता करेंगे विश्वविद्यालय के कुलगुरु। तो ये कार्यक्रम यदि आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर इस कार्यक्रम में आप शिरकत कर सकते हैं। और लीजिए दर्पण कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ और।

0: içerisinde iş.
1: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।

0: इन संदेशों के साथ ही सूचना परक कार्यक्रम दर्पण अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। श्रोताओं, प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और तत्पश्चात हिंदी समाचार। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात महाराष्ट्र राज्ययोः एकदिवसीय प्रवासे स्थास्यति। वडोदरा नगरे आयोजित समारोहे प्रधानमंत्री 35,000 crore rupees विविधानां संरचना विकास परियोजनानां शिलान्यासं राष्ट्राय समर्पणं च विधास्यति। सशस्त्र बलानां युद्धाभियान क्षमतां वर्धयितुं रक्षा अधिग्रहण परिषदा एका महती गोष्ठी समायोजिता। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन 10,000 crore rupees प्रस्तावाः अनुमोदिताः। निर्णयेनानेन सेनायाः आधुनिक वाहनानि, नौसेनायाः गैस टर्बाइन प्रणाल्यः, वायुसेनायाः च राडार निरोधक यन्त्राणि अतिशीघ्रं दलेषु समाविष्टानि भविष्यन्ति। औद्योगिक गमनागमनं यातायात सम्मर्द समस्यामपाकर्तुं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणेन महती योजना रचिता। मन्त्रिणः नन्द गोपाल गुप्ता इत्यस्य सान्निध्ये अभ्यसितेन प्रस्तावेन सामग्री वाहन वाहनानि, यात्री वाहनानि च पृथक् पृथक् मार्गैः यास्यन्ति। 75,100 meter विस्तृत मार्गेण गंगा एक्सप्रेस वे सम्पर्कः अतीव सुगमः सेत्स्यति। उत्तर प्रदेशे नद्यः उत्तुंगस्तरे प्रवहन्ति, अनेन 25 मण्डलेषु जलप्लावनं व्याप्तम्। बरेली लखीमपुर क्षेत्रेषु अतिवृष्टिः जनजीवनम् स्थितेः गभीरतां विलोक्य बरेली प्रशासनेन विद्यालयानां अवकाशः घोषितः। प्रशासनीय अधिकारिणश्च आपदुद्धार कार्याय नियोजिताः। भारत लक्जमबर्ग आर्थिक संबंधान नूतनाम औन्नत्यम नयन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयलः लक्जमबर्ग उप प्रधानमंत्रिणा जेवियर बेटेल इत्यनेन सह मंत्रणाम अकरोत्। द्वयोः नेत्रोः संभाषणे लॉजिस्टिक्स अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रेषु संयुक्त प्रकल्पानां आरंभाय सहमतिः संजाता, येन उभयतः वाणिज्यिक संपदां विस्तारः संभविष्यति। नवदेहल्याम् आयोज्यमानं ब्रिक्स सम्मेलनं भारत ईरान संबंधानां कृते नूतन दृष्टिं प्रदास्यति। ईरान विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता इस्माइल बगाई अब्रवीत यत् राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन भारत प्रवासे द्विपक्षीय व्यापारं वर्धयितुं महतीं रणनीतिं रचयिष्यति। अनेन बहुपक्षीय वार्ता माध्यमेन मध्य पूर्व क्षेत्रे शान्तिः सहकारश्च संवर्धयिष्यते। दक्षिण लेबनान इत्यस्य एकस्मिन् ग्रामे इज़राइल देशस्य वायव्याक्रमणे 12 जनाः मृत्युमुपगताः। रात्रौ कफर रुमाने इत्यत्र आवासीय गृहे आक्रमणानन्तरं द्वौ बालकौ चतस्रः महिलाः समेत्य 11 जनाः मृत्युमुपगताः। वाहनस्य उपरि द्वितीयेन प्रहारेण एकः पराचिकित्सकः अम्रियत। इज़राइलीय सेना अवदत् यत् देशस्य अधिकृत क्षेत्रे सैनिकानाम् उपरि ड्रोन आक्रमणस्य प्रतिकाररूपेण ईरान समर्थितस्य सशस्त्र समूहस्य हिज़्बुल्लाह इत्यस्य मूल सौकर्याणि स्थलानि अपि च शस्त्राणां स्थानान्तरणं कुर्वन्तः नैके आतंकिनः आक्रान्ताः। भारतीय पारंपरिक क्रीडा क्षेत्रे नूतन इतिहासः रचितः। किर्गिस्ताने संधिपत्रे हस्ताक्षरं विधाय
2: भारते विश्व बेल्ट मल्लयुद्ध स्पर्धायाः मार्गः प्रशस्तः कृतः। अस्यां स्पर्धायां नागा मल्लकला जागतिक मञ्चे स्वकौशलं दर्शयिष्यन्ति, येन भारतीय क्रीडकानां उत्साहः द्विगुणितः भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी किया जाएगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विशाल परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत भी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल परिषद की बैठक में ये मंजूरी दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मैरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय कंपनियों से की जाएगी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध हैं। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघी ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। 6G नेटवर्क के विकास और वैश्विक पहल में भारत अब अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक वर्षा वाले 5 जिलों में शामिल हैं। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में भावना और पूजा का सामना चीन से होगा। भारत की पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में स्लोवाकिया से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे महान गायिका आशा भोसले की जयंती पर संगीत के प्रोफेसर डॉक्टर नीना श्रीवास्तव और संगीत के विद्यार्थियों से बातचीत। विश्व साक्षरता दिवस के बारे में राज्य शिक्षा केंद्र में प्रदेश साक्षरता कार्यक्रम के राज्य नियंत्रक डॉक्टर राकेश दुबे से चर्चा होगी। साथ ही आप सुनेंगे वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गोपाल गोयल से विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के महत्व पर जानकारी। सुबह 8:30

0: मीडियम वेव
1: 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रातः 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज के कलाकार होंगे हर्षवर्धन अर्जरिया। इनसे आप सुनेंगे इनके गाए कुछ बुंदेली लोकगीत जो आधारित होंगे मल्हार और सावन पर। ढोलक पर इनका साथ देंगे अब्दुल हनीफ खान और सारंगी पर होंगे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 9:00 से। 9:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम जिसमें आज के कलाकार होंगे पीएल गोहतकर और इनसे आप सुनेंगे इनका गाया राग अलहैया बिलावल। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे हमारे केंद्र से सुबह 10:00 से। 10:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे आपके ही पसंदीदा गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, प्रातः 11:00 से कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से। इसमें आप सुनेंगे 11:00 कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12:00 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 12:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। महिला कार्यक्रम इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होगा, ये सुनेंगे आप दोपहर 1:00 से। और 1:30 पर इंदौर केंद्र की ही प्रस्तुति होगा लोक संगीत का कार्यक्रम और सुगम संगीत का कार्यक्रम 1:45 पर। फिल्म संगीत मध्य प्रदेश केंद्र से आप सुन सकेंगे दोपहर 2:00 से। 2:30 पर चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण आप सुन सकेंगे 3:00 से। श्रोताओं, इसके साथ ही शाम की सभा का प्रसारण भी मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा जिसमें सभा का आरंभ होगा शाम 5:00 से। 5:02 पर आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। 5:33 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत और एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे मध्य प्रदेश केंद्र से शाम 6:00 से। 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकेंगे शाम को 7:30 पर। फिल्म संगीत 8:15 पर। उर्दू कार्यक्रम कहकशां हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर और साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात्रि 10:00 और 10:30 पर राग रंजनी कार्यक्रम। तो ये तो थी जानकारी हमारी आज की इस सभा और शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको लेके चलते हैं भोपाल। सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर, 35,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। धार के आदिवासी अंचल को मिलेगी रेल की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात से छोटा उदयपुर धार परियोजना का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दुबई दौरा। आज यूएई के निवेशकों और उद्योगपतियों से करेंगे 1-to-1 बैठकें। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 का देंगे न्योता। और 11 सितंबर तक रीवा और शहडोल संभाग में तेज बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में वे 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 अहम खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसके साथ यह परियोजना पूरी हो जाएगी। इसके अलावा वे कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत करेंगे और जोबट टांडा रोड नई रेल लाइन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 3 रेलवे और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में वे मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे, जहाँ AI, क्वांटम तकनीकी, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी। वहीं धार जिले के आदिवासी अंचल में भी अब रेल सुविधा पहुंचने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात से ही छोटा उदयपुर धार परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिससे धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में स्थित नवनिर्मित टांडा रोड रेलवे स्टेशन से नई टांडा रोड प्रतापनगर रेल सेवा की शुरुआत होगी। श्री मोदी इस दौरान रतलाम से बड़ौदा फोर लाइनिंग परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बताया कि अब टांडा रोड तक रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद आदिवासी क्षेत्र के लोगों को रेल सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
1: धार जिले में आदिवासी टांडा क्षेत्र में पहली बार रेलवे लाइन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और माननीय रेल मंत्री द्वारा ये शुभारंभ होगा। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी अंचल में पहली बार रेल हमारे यहाँ आएगी। हमारे आदिवासी भाई बहन, किसान, महिलाएं, युवा पहली बार ट्रेन देखेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई यात्रा के तीसरे दिन यानी आज 8 सितंबर को प्रदेश में निवेश लाने के लिए कई अहम बैठकें करेंगे। वे यूएई के बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के साथ बैठक भी करेंगे और निवेशकों को इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन, शहरी विकास, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं कल डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री यूएई

0: मंडल जल्द ही प्रदेश का दौरा करेगा। यूएई की ओर से होटल और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में निवेश के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि प्रदेश में हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और होटल और होमस्टे के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच मध्य प्रदेश और यूएई हवाई सेवा शुरू करने को सहयोग पर भी चर्चा हुई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सागर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना बंडा और बिनायका पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग जगहों से कुल 225.12 लीटर अवैध देशी शराब जब्त की गई है। कार्रवाई में दोनों थाना क्षेत्रों के कई गांवों से शराब बेचने और रखने के आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज में आज कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनिट का उद्घाटन करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मेडिकल कॉलेज के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, डॉक्टर और अधिकारी शामिल होंगे। नई यूनिट शुरू होने से कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी के लिए बेहतर और व्यवस्थित सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रवेश, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम समय पर होना शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता के लिए जरूरी है। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि इस सत्र से विद्यार्थियों की उपस्थिति सार्थक ऐप के जरिए दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परीक्षा सिर्फ ज्ञान परखने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा, कौशल और रचनात्मकता का भी आकलन होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में प्रदेश के 3 शहरों ने देश में शानदार प्रदर्शन किया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर को दूसरा, जबलपुर को तीसरा और भोपाल को चौथा स्थान मिला है। वहीं भोपाल नगर निगम के वार्ड क्रमांक 60 को भी बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। सर्वे में धूल नियंत्रण, सड़क सफाई, हरित क्षेत्र बढ़ाने और लोगों की भागीदारी जैसे कामों को आधार बनाया गया। इसके अलावा उज्जैन, सागर और देवास ने भी अपनी अपनी श्रेणी में बेहतर रैंक हासिल की है। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी की विरासत और संस्कृति को करीब से जानने के लिए इंटरप्रिट कंपनी का 20 सदस्यीय विदेशी पर्यटक दल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से आए पर्यटकों ने पुरानी गलियों और ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण किया। उन्होंने बुनकर परिवारों से मिलकर हथकरघे पर चंदेरी साड़ी बनाने की प्रक्रिया भी समझी। दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में सत्य निकेतन में रविवार को हुए इमारत हादसे में प्रदेश के कटनी के 19 वर्षीय छात्र अक्षत यादव की मौत हो गई है। अक्षत दिल्ली में रहकर BCom की पढ़ाई कर रहे थे। हादसे के समय वे इमारत में मौजूद थे और मलबे की चपेट में आ गए। बचाव दल ने उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में अब तक औसत 31.1 इंच बारिश हो चुकी है, जो बारिश के कुल कोटे का 83.5% है। भोपाल समेत 12 जिलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि 31 जिलों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 सितंबर तक रीवा और शहडोल संभाग में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि बाकी जिलों में हल्की बारिश होगी। 12 सितंबर के बाद नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने पर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अहमदाबाद में चल रही विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में उतरेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में भावना और पूजा की जोड़ी चीन से मुकाबला करेगी। वहीं पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की भिड़ंत स्लोवाकिया से होगी। पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार इराक के खिलाफ उतरेंगे। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी का सामना चेकिया से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के सांदीपनी स्कूल में नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यशाला में लगभग 60 विद्यार्थियों ने पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के गणपति बनाने का प्रशिक्षण लिया। झाबुआ के मेघनगर स्थित BO कार्यालय में आज सुबह 11 बजे से कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। धार जिला मुख्यालय पर भगवान धारनाथ की पारंपरिक और शाही सवारी छबीना धारेश्वर मंदिर से उत्साह के साथ निकाली गई। अशोकनगर जिले में मध्य प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए जल्द ही तहसील स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा के नवीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम के तहत 500 पौधे रोपे गए। सतना के बघा स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में 8 से 10 सितंबर तक निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है। कटनी जिले ने सत्र 2026-27 में अपनी सभी 7 शासकीय आईटीआई की

788 सीटों पर शत प्रतिशत दाखिला पूरा करके प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। डिंडोरी के बजाग तहसील कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेहत की जांच के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मंडला में आगामी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान, पौधरोपण और खेलकूद गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और बैतूल कलेक्टर ने आदिवासी उत्कृष्ट बालक छात्रावास परिसर के पुराने भवन को एक आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी का जन्मदिन है और आशा भोसले जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन हम एक श्रद्धांजलि के तौर पर आज का फिल्म संगीत उन्हें समर्पित करते हैं और आपको सुनवाएंगे उनके गाए कुछ प्रसिद्ध गीत। श्रोताओं, उससे पहले हम बात करते हैं कि आशा भोसले जी के जीवन के बारे में। 8 सितंबर 1933 को आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। लता मंगेशकर की छोटी बहन और दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री आशा ने फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 15 से 16 हज़ार गाने गाए हैं और इनकी आवाज़ के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। श्रोताओं, हिंदी के अलावा इन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल तमाम भाषाओं में, यहाँ तक कि अंग्रेजी और रूसी भाषा के भी अनेक गीत गाए हैं। 1948 में उन्होंने अपना पहला गीत गाया था, वर्ष 1948 में सावन आया फिल्म गीत था और फिल्म का नाम था चुनरिया। श्रोताओं, आशा भोसले जी की विशेषता है कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत, गज़ल और पॉप संगीत हर क्षेत्र में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है और एक समान सफलता पाई है। आशा जी जब केवल 9 वर्ष की थी तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के मरणोपरांत इनका परिवार पुणे से कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया। परिवार की सहायता के लिए आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी ने गाना और फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया। 1943 में उन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म माझा बाल में गीत गाया और गीत चलाचल नवबाला दत्ता डावजेकर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। श्रोताओं, इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे गीत, यहाँ से जो यात्रा शुरू हुई 1948 में हिंदी फिल्म चुनरिया का गीत इन्होंने गाया, लेकिन प्रसिद्धि जो मिली आशा जी को वो मिली गायकी के क्षेत्र में 50 के दशक में आकर, जब इन्होंने CID के लिए गीत गाया, लेके पहला पहला प्यार ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसके बाद नया दौर फिल्म का गीत के जो गीत थे वो ओपी नैयर साहब ने आशा जी से गवाए और वो गीतों ने धूम मचा दी। इसी फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने, तो सुनते हैं ये गीत।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से, और आज के फिल्म संगीत में हम बात कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं और आशा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आशा भोसले को आज हम याद कर रहे हैं। श्रोताओं, इनके विवाह और व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने 31 वर्षीय गणपतराव भोसले के साथ घर से पलायन कर पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध विवाह किया, किंतु किन्हीं कारणों से इन संबंधों में दरार आई और यह विवाह असफल रहा। 1960 के आसपास विवाह विच्छेद के बाद आशा जी अपनी माँ के घर दो बच्चों के साथ लौट आईं और 1980 ईस्वी में आशा जी ने सचिन देव वर्मन के बेटे यानी राहुल देव वर्मन जी के साथ विवाह किया और ये विवाह ताउम्र इन्होंने अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। श्रोताओं, एक समय था जब प्रसिद्ध गायिका जैसे गीता दत्त, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर का जमाना था और चारों ओर इन्हीं का प्रभुत्व था। आशा जी गाना चाहती थी पर इन्हें गाने का मौका नहीं मिल पाता था। 1950 के दशक में बॉलीवुड की अन्य गायिकाओं की तुलना में आशा जी ने कम बजट की और बी और सी ग्रेड फिल्मों के लिए बहुत से गीत गाए, लेकिन विमल रॉय ने एक मौका आशा जी को अपनी फिल्म परिणीता के लिए 1953 में दिया और राज कपूर जी के गीत नन्हे मुन्ने बच्चे बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत था, उसके लिए 1954 में इन्हें अनुबंधित किया और जिस गीत को बहुत प्रसिद्धि भी मिली। फिर इसके बाद ओपी नैयर जी, जैसे हमने बताया था कि आपको उन्होंने बहुत बड़ा अवसर दिया CID फिल्म के लिए, 1957 में नया दौर फिल्म का गीत इन्होंने गाया और इस साझेदारी ने कई प्रसिद्ध गीतों को जनमानस के बीच लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सचिन देव वर्मन और रवि जैसे संगीतकारों ने आशा जी को मौके दिए। 1966 में संगीतकार RD बर्मन की सफलतम फिल्म तीसरी मंजिल में आशा जी ने RD बर्मन के साथ काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी और 1960-70 के बीच प्रसिद्ध डांसर हेलन की ये आवाज़ बनी। कहते हैं कि आशा जी जब भी गाती थी तो हेलन जी रिकॉर्डिंग के समय मौजूद रहती थी ताकि गाने को अच्छी तरह समझ सके और उस पर अच्छी तरह अपने हाव भाव प्रस्तुत कर सकें, उस पर अच्छा सा डांस कर सकें। तो श्रोताओं, बात हम कर रहे हैं आशा जी के गीतों की। ये जो उनके गीत थे जो इस तरह के हेलन की आवाज़ वाले गीत, हेलन के डांस वाले गीत, ओ हसीना जुल्फों वाली, पिया तू अब तो आ जा, ये गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इन्होंने गीत गाया फिल्म काला पानी के लिए। सुनते हैं ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और

0: 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
0: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र में केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले जी के गाए कुछ प्रसिद्ध गीत। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे उनके कैबरे रॉक डिस्को गानों की, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, दुनिया में चुरा लिया है तुमने, खैर ये तो नहीं है कैरबर, लेकिन ये राहुल देव वर्मन जी के संगीतबद्ध किया हुआ बहुत ही प्रसिद्ध गाना है। और जब इन्होंने ये यात्रा शुरू की तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रोताओं, बीआर चोपड़ा ने नया दौर में उनकी प्रतिभा को पहचान कर आने बाद में जो आई उन्होंने फिल्में उनमें पुनः मौका आशा जी को दिया। वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान, धुंध, ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें इन्होंने गीत गाए। उपेन अय्यर जी के गीत की हम बात कर चुके हैं, खयाम जी के गीतों की हम बात करेंगे, साथ ही सचिन देव वर्मन जी के संगीत निर्देशन में ये गीत अभी आपने सुना। और

हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आपने सुना ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में, आवाज़ आशा भोसले जी की। ये जो गीत है ये भी एक कैबरे स्टाइल गीत था जो आपने सुना अभी, और ये कैबरे की जो खूबसूरती है उसको ज़्यादातर बयां किया था संगीतकार आर डी बर्मन जी ने, और उस खूबसूरती को और बढ़ावा दिया आशा जी की आवाज़ ने। इन्हीं की साझेदारी का एक गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म हरे राम हरे कृष्ण से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने, आशा भोसले जी के साथ समूह सर में। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए आनंद लीजिए।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आशा जी को बहुत सारे पुरस्कारों के साथ नवाजा गया है और इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला वो मिला गीत खयाम साहब के साथ, जो उन्होंने गीत साझेदारी की थी उमराव जान फिल्म के गीतों के लिए, और साथ ही सचिन देव वर्मन जी के साथ इजाज़त फिल्म के गीत के लिए भी इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके अलावा फिल्म फेयर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सन 2000 में, पद्म विभूषण पुरस्कार सन 2008 में, बंग विभूषण 2018 में, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 में इन्होंने प्राप्त किया। बहुत सारे संघर्षों को झेलते हुए आगे बढ़ते हुए ये जो जीवन है जिसे हम बहुत चकाचौंध भरा और ऐसा लगता है कि बहुत आसान सा था, लेकिन उन्होंने बहुत ही सारे संघर्षों के साथ जीवन में इतनी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त गीत फिल्म उमराव जान से। गीत को लिखा है शहरयार ने, संगीतबद्ध किया है खयाम ने। श्रोताओं, एक छोटी सी जानकारी हम आपको दें इसके बारे में कि इनकी पहली फिल्म, इस जोड़ी की जो पहली फिल्म थी 1950 में इन्होंने अच्छे अनुबंध आशा जी के साथ किए, फिल्म दर्द, फिर सुबह होगी, बहुत सारी ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई साथ में, लेकिन सबसे जो यादगार फिल्म थी इस जोड़ी की वो थी उमराव जान। तो पहले सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

उमराव जान फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत आपने सुना और इस पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी आशा जी को मिला। और ऐसा ही एक और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित था फिल्म इजाज़त से। 1987 में आई फिल्म इजाज़त का ये बेहद प्रतिष्ठित और सदाबहार गीत है जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। और गायक कलाकार तो आप सभी को पता है, आशा भोसले जी। श्रोताओं, इस गीत की खास बात थी कि जब ये गीत लिखा गया, गुलजार साहब ने ये गीत लिखा, तो आरडी बर्मन जी ने कहा कि ये क्या गीत लिखा, ऐसा लग रहा है कि अब आप कहेंगे कि मैं अखबार की हेडलाइंस को भी अपना म्यूज़िक दे दूँ। तो ये गीत मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा, ये लाइन सुनकर उनको लगा कि किसी अखबार की हेडलाइन है। पंचम दास शुरुआती दौर में इन अनोखे बिना तुकबंदी वाले बोलों पर धुन बनाने के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें गाना बेकार सा लगा, लेकिन गुलजार साहब और पंचम दास के बीच इसे लेकर बहस हुई और इसके बाद पंचम दास ने गुस्से में मात्र 15 से 20 मिनट के भीतर इसकी जादुई धुन को तैयार कर दिया। इस गाने में श्रोताओं, तबले या ढोलक जैसे पारंपरिक ताल यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसमें केवल मराकस, संतूर और एक अलग प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया। और यही वो गाना था जिसे आगे चलकर आशा भोसले जी को इस गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका और गुलजार को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

0: हमने इस खूबसूरत आवाज़ को हमेशा के लिए खो दिया। आवाज़ तो नहीं कहना चाहिए, इस शख्सियत को हमने खो दिया, क्योंकि आवाज़ हमारे साथ आज भी मौजूद है, आज भी ज़िंदा है। तो इन्हीं गीतों के साथ आशा जी को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी न्यूज़।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
3: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
4: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक हैं। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
5: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में दो तिहाई बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजवेश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
9: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
10: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को निलंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले दो दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
11: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
12: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
0: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हॉर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के

6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में

हर्षवर्धन अर्जरिया से आप सुन रहे हैं उनके गायल लोक गीत आपके अपने आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। और लीजिए अब सुनिए ये रसिया।

हर्षवर्धन अर्जरिया के गाए इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8:58 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबर।

मोदी गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं महाराष्ट्र में वे मुंबई ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज गुजरात से वर्चुअली छोटा उदयपुर धार परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे, जिससे धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में स्थित नवनिर्मित टांडा रोड रेलवे स्टेशन से नई टांडा रोड प्रतापनगर रेल सेवा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज प्रदेश में निवेश लाने के लिए कई अहम बैठकें करेंगे और निवेशकों को इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन और होटल कारोबार की संभावनाओं को देखने के लिए यूएई का प्रतिनिधिमंडल जल्द प्रदेश का दौरा करेगा। मध्य प्रदेश और यूएई के बीच हवाई सेवाएं शुरू करने को लेकर भी सहयोग पर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ. जितेंद्र सिंह आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज में कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में इंदौर को दूसरा, जबलपुर को तीसरा और भोपाल को चौथा स्थान मिला है। वहीं भोपाल के वार्ड 60 को बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। उज्जैन, सागर और देवास ने भी अपनी अपनी श्रेणी में बेहतर रैंक हासिल की है। और अहमदाबाद में चल रही विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के फाइनल में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों के लिए उतरेगा। इसमें महिला और पुरुष पैरा रिकर्व टीम, पैरा कंपाउंड पुरुष टीम और मिक्स्ड टीम W1 शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग ग्वालियर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में स्वागत है आप सभी का, आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। प्यारे प्यारे क्यों? क्योंकि वर्किंग डे में भी आप सभी वक्त निकाल के सुन लेते हैं आपका अपना कार्यक्रम और हमें इतना सारा प्यार देते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को लेके हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट दिव्या अग्रवाल। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आरंभ में हम बात करेंगे साक्षरता की। क्यों? क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, तो वो बताने के लिए हम है ना श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की तारीख के पीछे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम है। 1965 में ईरान के तेहरान में शिक्षा मंत्रियों का एक विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें निरक्षरता खत्म करने और दुनिया भर में साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके बाद यूनेस्को ने 1966 में अपने 14वें जनरल कॉन्फ्रेंस में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया, जिसे पहली बार 8 सितंबर 1967 को मनाया गया। और तब से हर साल आज के दिन दुनिया भर में साक्षरता के महत्व को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्रोताओं, हर साल की एक नई थीम होती है, लेकिन 2026 की थीम क्या है? 2026 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है लिटरेसी फॉर पीपल द प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, और हिंदी में इसका अर्थ है लोगों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता, यानी इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, हमारी समृद्धि के लिए साक्षरता। श्रोताओं, ये थीम साक्षरता को केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता तक सीमित नहीं रखती। इसका संबंध बेहतर जीवन, सामाजिक समावेशन, टिकाऊ विकास और आर्थिक अवसरों से भी है। यूनेस्को के अनुसार 2026 का आयोजन इस बात पर विचार करने का अवसर है कि पिछले 6 दशकों में साक्षरता के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई और अब भी कौन सी पुरानी तथा नई चुनौतियाँ हमारे लिए मौजूद हैं। श्रोताओं, आज का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की 60वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर यूनेस्को और मैक्सिको सरकार की ओर से 8 और 9 सितंबर को मैक्सिको के चियापास में वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री, विशेषज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थियों, साक्षरता के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में वैश्विक साक्षरता की प्रगति, मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होगी। किसी व्यक्ति का नाम पढ़ लेना या किसी वाक्य को लिख लेना साक्षरता का पहला चरण हो सकता है दोस्तों, लेकिन आधुनिक दुनिया में इसकी भूमिका इससे कहीं बड़ी हो चुकी है। आज साक्षर व्यक्ति को जानकारी समझने, सही निर्णय लेने, रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने और समाज में अपनी बात रखने के लिए पढ़ने लिखने की क्षमता की ज़रूरत होती है। जब हम साक्षरता की बात करते हैं श्रोताओं, तो केवल लिख लेना और पढ़ लेना ही नहीं माना जाता, बल्कि साक्षरता शिक्षा, अवसर, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी की बुनियाद है। साक्षरता हमें आत्मनिर्भर तो बनाती ही है और साथ में बहुत सारी बातें जो हमने बताई कि रोज़गार के अवसर हैं, समाज में अपनी बात रखने के लिए, और इसके लिए साक्षर होने के साथ, मतलब पढ़ा लिखा होने के साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना चाहिए। केवल पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम अच्छा साहित्य नहीं पढ़ते हैं, अच्छी किताबों पर ध्यान नहीं देते हैं, अच्छी बातों को सीखने की क्षमता को हम घटाते जाते हैं, तो साक्षर होना हमारा किसी काम का नहीं रह जाता। क्योंकि समाज में भागीदारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले समाज को जाने, देश दुनिया को जाने, हमारे देश में क्या हो रहा है और हमारे देश के लिए क्या सही है, क्या गलत।

है, ये सारी जानकारियां हमें देती है हमारी शिक्षा। हमारा अपना सशक्तिकरण शिक्षा के माध्यम से होता है, और जब हम खुद सशक्त होंगे तो हम दूसरों को भी सशक्त करने में आगे आ सकते हैं। श्रोताओं, साक्षरता के क्षेत्र में दशकों की प्रगति के बावजूद चुनौती खत्म नहीं हुई है। यूनेस्को के अनुसार दुनिया में कम से कम 739 मिलियन युवा वयस्क अभी भी बुनियादी साक्षरता कौशल से वंचित हैं, और ये आंकड़ा बताता है कि साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य केवल उपलब्धियों का जश्न मनाना नहीं, बल्कि उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाने की ज़रूरत पर ध्यान देना है जो अब इससे दूर हैं। अब बात करते हैं भारत के, कि हमारे भारत के लिए साक्षरता दिवस क्यों महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में साक्षरता का महत्व और भी बढ़ जाता है। शिक्षा केवल रोजगार का रास्ता नहीं खोलती, बल्कि व्यक्ति को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में सक्षम बनाती है। एक साक्षर व्यक्ति सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करने, ज़रूरी दस्तावेज समझने, वित्तीय निर्णय लेने और अपने बच्चों को बच्चों की जो शिक्षा उसे बेहतर बनाने में अधिक सक्षम हो सकता है। इसलिए हम केवल साक्षरता को स्कूल जाने के से जोड़कर नहीं देख सकते, ये व्यक्ति परिवार और पूरे समाज के विकास से जुड़ा विषय है। तो हमारे देश के लिए, जहाँ आज भी मध्य प्रदेश के लिए एक कहना चाहिए कि ऐसी बात भी है कि हमारे ही प्रदेश का ज़िला अलीराजपुर आज भी देश का सबसे कम साक्षर ज़िला है, और वहाँ तक बुनियादी शिक्षा पहुँचने में बहुत वक्त लग रहा है। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और ऐसी चुनौतियों का सामना हम ज़रूर कर सकते हैं। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सिर्फ सरकारों शिक्षा संस्थानों के लिए नहीं है, विद्यार्थी युवाओं के लिए भी इसका बड़ा संदेश है। और आज कल तो हम लोग इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियाँ एक साथ देख सकते हैं, लेकिन सही जानकारी को पहचानने और समझने की क्षमता अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज के दौर में केवल साक्षर या लिखा पढ़ा होना ज़रूरी है, डिजिटली लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो गया कि हम जाने कि हम मोबाइल पर और लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर किस तरह काम कर सकते हैं। कभी अपना नाम लिखना नहीं साक्षर होने की पहचान माना जाता था, लेकिन अब साक्षरता का यह दायरा मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंच गया है। डिजिटल दौर में पढ़ना लिखना जानने के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरना, डिजिटल भुगतान करना, मोबाइल बैंकिंग चलाना और फर्जी लिंक और साइबर ठगी के खतरों को पहचानना भी ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, यानी तकनीकी बदलाव ने साक्षरता की परिभाषा बदल दी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े उम्र के लोग हैं, 50+ लोग हैं, वो भी आज ये मोबाइल चला रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइबर ठगी का शिकार बनने वाले भी वही लोग हैं जिनको अभी मोबाइल की डिजिटल साक्षरता, जिसे कहें कि, बहुत ज़्यादा नहीं आती है, जो बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। और क्योंकि पुराने लोग हैं तो उनको लगता है कि सारी बातें सच ही होंगी, जो हमसे कहा जा रहा है वो सब सही होगा। तो इस तरह से लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं और जिनको बहुत ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर चलाने की नॉलेज नहीं है, तो वो लोग बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अब हम डिजिटली साक्षरता का नया मतलब गढ़ें, कि हम ये बताएं कि किस तरह ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है। और श्रोताओं, अब जो बड़ी उम्र के लोग हैं, 60+ लोग हैं, वो भी डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहे हैं। कम से कम 60.7% लोग डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहे हैं, 33.3% लोग कभी कभी डिजिटल भुगतान करते हैं, और नगद कैश को प्राथमिकता देने वाला कोई उत्तरदाता नहीं मिला। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जानना बहुत ज़रूरी है, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस डिजिटल साक्षरता में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हौसला हमारा हमेशा कायम रहे, ऐसी ही सुविचार के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इन संदेशों के बाद। और श्रोताओं, आज 8 सितंबर से आरंभ हो रहा है पर्युषण पर्व। जैन धर्म का महापर्व आज से शुरू होकर 15 सितंबर तक मनाया जा रहा है। और इस पर्व की शुरुआत के पहले दिन उपवास, स्वाध्याय, अहिंसा का संकल्प लिया जाएगा। श्रोताओं, बहुत सारे पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं। हर विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न धर्मों से संबंधित पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं और यही चीज़ हमारे देश को विविधता और एकता से भर देती है। जी हाँ, विविधता में एकता हमेशा हम बोलते हैं और बोलते नहीं मानते भी हैं, क्योंकि हम सभी लोग सारे ही पर्वों को एक साथ मिलकर मनाते हैं। श्रोताओं, जैन धर्म का ये जो पर्व है पर्युषण पर्व, बहुत ही ख़ास है। हम सभी को इस पर्व के

एकत्रित करके उसे उसकी मन की शांति की आंतरिक यात्रा पर निकला जाता है। तपस्या, ध्यान, धर्म ग्रंथों के अध्ययन और क्षमा भाव जैसे कार्यों से भक्तों में जो सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है वो एक ऐसा माहौल बना देती है श्रोताओं, जो व्यक्तिगत बदलाव के लिए हमें प्रेरित करती है। पर्युषण पर्व जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों को जानने का भी एक माध्यम है। ये लोगों को अहिंसा, आत्म अनुशासन और करुणा पर इस धर्म के प्रभाव को समझने का मौका देता है और अक्सर उनके जीवन भर चलने वाले आध्यात्मिक रास्ते की शुरुआत बन जाता है। इस पर्व में कुछ नियम भी पाले जाते हैं जैन समुदाय के द्वारा। खाने पीने से जुड़ी बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। 8 दिनों में हरी सब्जियाँ नहीं खाई जाती, आलू प्याज या लहसुन भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि ज़मीन से नीचे जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो जैन धर्म में बहुत जगह निषिद्ध मानी जाती हैं। सूरज डूबने से पहले खाना खा लेना, ये जैन धर्म का बहुत ही विशेष नियम है। रात के समय कोई भोजन नहीं किया जाता और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी या जूस का सेवन हम लगातार करते रहें, ये इसमें बोला जाता है। शाम के समय प्रतिक्रमण करना इस दौरान ज़रूरी माना जाता है। प्रतिक्रमण एक प्रकार का ध्यान होता है जो जैन धर्म के लोगों का ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इस दौरान बाहरी आवरण से दूर रहना, घर की कुछ बातों का ध्यान रखना, ये सारी बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ही पर्व जो हमारी आंतरिक यात्रा की शुरुआत माने जाते हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत माने जाते हैं, हमारे देश में मनाए जाते हैं, जिसमें से पर्युषण पर्व की शुरुआत आज से हुई है और साथ ही बहुत सारे पर्वों का आगमन अब होने वाला है। गणेश चतुर्थी का आगमन होने वाला है, फिर नवदुर्गों का आगमन होने वाला है। तो इस तरह से हमारा जो देश है वो पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है, आध्यात्मिकता का देश है, क्योंकि ये जो सभी धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं वो हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से भी जोड़ते हैं। और हमें भी गहराई से विचार करना चाहिए कि हम ये पर्व मना ही क्यों रहे हैं, केवल शोर शराबे, डीजे पे डांस करने के लिए, आध्यात्मिक धार्मिक भजन सुनने के लिए नहीं। ये हमारी आंतरिक यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे जीवन को नई दिशा देने के लिए भी मनाए जाते हैं।

श्रोताओं, हम आपसे बात कर रहे थे डिजिटल साक्षरता की और साइबर ठगी की। डिजिटल दौर में आजकल एक और ट्रेंड आ गया है कि हम डिजिटली पैसे मांगते हैं। बहुत सारी लोग हैं जो किसी की मदद के नाम पर, किसी संस्था के नाम पर, अनाथ बच्चों के नाम पर, बहुत सारे ऐसे लोग आगे आ जाते हैं जो बीमारी का बहाना बनाकर डिमांड करते हैं या दान देने की अपेक्षा हमसे करते हैं। तो हम कई बार तो असमंजस में पड़ जाते हैं कि दान करें या ना करें, ये कहीं दान हमारा फर्जी खाते में तो नहीं जा रहा है। और वाकई ऐसा भी हो सकता है, और कई बार वाकई बहुत सारे लोगों को मदद की ज़रूरत होती है जब हमें आगे भी आना चाहिए। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हम कैसे समझें। और आज के दौर में बहुत आसान हो गया ज़रूरतमंद की मदद करना। सोशल मीडिया पर बीमारी, आपदा, ज़रूरतमंद महिलाओं, बच्चों, परिवारों के नाम पर मदद की अपील की जाती है और एक क्लिक से बहुत सारे लोगों तक ये आसानी तक पहुंच जाती है। लेकिन श्रोताओं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हम समझें कि हर अपील सच हो, ज़रूरी नहीं। फेक चैरिटी स्कैम में साइबर ठग लोगों की भावनाओं और मदद करने की इच्छा का फ़ायदा उठाकर फर्जी कैंपेन, नकली एनजीओ, झूठी कहानियां और फर्जी यूपीआई अकाउंट के जरिए पैसे ठगे जाते हैं। तो हम कैसे सतर्क रहें? हम ऐसे कई लोग और ज़्यादातर महिलाएं सामाजिक संवेदनशीलता और मदद की भावना के कारण ऐसे अभियानों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। साइबर अपराधी इसी भावनात्मक जुड़ाव को अपना हथियार बनाते हैं। डोनेशन देने से पहले संस्था की आधिकारिक वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन की जाँच हम अवश्य कर लें। रकम भेजने से पहले संस्था का पिछला काम, विश्वसनीयता देखें। सोशल मीडिया पोस्ट देखकर तुरंत पैसे ट्रांसफ़र ना करें। बैंक डिटेल या निजी जानकारी किसी अनजान से साझा ना करें। और अपने आप से चार सवाल ज़रूर पूछें कि मैंने संस्था की सही जानकारी जांची है? पैसे मांगने वाला प्रमाण दे रहा है? मुझे भावनात्मक दबाव में फैसला लेने को कहा जा रहा है, जल्दबाजी तो नहीं की जा रही? ये मदद का सही तरीका या फिर कोई और ऑनलाइन जाल? तो ये जब चार सवाल हम अपने आप से पूछेंगे तो डेफिनेटली हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं कि हम ये जो दान करने जा रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जिस भी संस्था से आपके पास ये मैसेज आया है वो प्रमाणित है या नहीं। और इसके लिए बहुत सारे तरीके हम ऑनलाइन गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या अपने किसी जान पहचान वाले से पूछ सकते हैं। बहुत सारे NGOs जो हैं कार्यरत हैं तो उनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाके जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखकर ही हम कोई भी चैरिटी करें, क्योंकि ऑनलाइन चैरिटी करना बहुत आसान हो गया है। बहुत आसानी से और पिक्चर्स दिखा करके भी लोगों को ठगा जा रहा है, तो इससे हम सावधान रहें। और कार्यक्रम में अब चलते चलते एक गीत हम आपको सुनवा देते हैं। सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं क्योंकि वक्त हो चला है अपने कार्यक्रम आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो इजाज़त दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दिव्या अग्रवाल को और कल फिर सुनिएगा ही हमारा ये कार्यक्रम। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पी एल गोहतकर का गायन। लीजिए सुनिए इनसे इनका गाया राग अलहिया बिलावल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पीएल गोहतकर का गायन। इनसे आपने सुना इनका गाया राग अलहिया बिलावल, और सारंगी पर इनका साथ दे रहे थे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। जिले की चिट्ठी हम भोपाल केंद्र से प्रसारित कर रहे हैं।
1: है मंडला जिले की चिट्ठी, आलेख शशांक चौबे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मंडला जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व की। यहां देश विदेश से आने वाले पर्यटकों से बेहतर संवाद के लिए 59 नेचर गाइड्स को अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह कान्हा में वन रक्षकों और मैदानी अमले के लिए वन्यजीव फोटोग्राफी और फील्ड दस्तावेजीकरण पर कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस कार्यशाला में मोबाइल कैमरा सेटिंग, जियो टैगिंग और वन्य जीवों की तस्वीरों का रिकॉर्ड रखने की जानकारी दी गई। कार्यशाला के अंत में वन रक्षकों की भूमिका पर बनी लघु डॉक्यूमेंट्री द लास्ट कीपर्स भी दिखाई गई। मौसम की अगर बात करें तो इस साल मंडला जिले में मानसून ने देर से दस्तक दी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार जिले में करीब 22% कम बारिश हुई है। बारिश के बाद अब त्योहारों की बात करते हैं। मंडला जिले में रक्षाबंधन का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर जिले भर के मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया और दिन भर पूजा पाठ और भजन कीर्तन होते रहे। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के समय मंदिरों में घंटियां बजी और जयकारे लगाए गए। कई जगह झांकियां सजाई गई और बच्चों ने राधा कृष्ण और बाल गोपाल का रूप धरकर लोगों का मन मोह लिया। इसके अलावा सावन के आखिरी सोमवार को महिष्मति घाट से कांवड़ यात्रा निकाली गई। कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने मां नर्मदा का पूजन कर जिलेवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। शिक्षा से जुड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक दिवस पर मंडला के शिक्षक सदन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण से की गई। सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिए गए। इस मौके पर परीक्षा व्यवस्था में बेहतर योगदान के लिए बोर्ड परीक्षा प्रभारी महेंद्र श्रीवास को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन जिला कैरियर काउंसलर अखिलेश उपाध्याय ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में ही मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। कक्षा 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सहायता दी गई। मंडला जिले के 1,611 विद्यार्थियों के बैंक खातों में यह राशि भेजी गई है। मंडला की एक 12 साल की छात्रा ने अपनी मेहनत से जिले का नाम रोशन किया है। बीजा डांडी विकास खंड की पीहू परस्ते ने कक्षा 7वीं में 94.29% अंक हासिल कर अपनी कक्षा में पहला स्थान पाया। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बरबटी की छात्रा पीहू को प्रतिभावान बच्चों में शामिल किया गया है। 26 अगस्त को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मंडला जिले में पहल की गई है। रानी दुर्गावती महाविद्यालय में माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन बीते दिनों किया गया। विद्यार्थियों को प्राकृतिक मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो मंडला जिला अस्पताल ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के आकलन में 86.17% अंक हासिल किए हैं। विशेषज्ञ टीम ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, संक्रमण नियंत्रण, जैविक कचरा प्रबंधन और मरीजों की सुविधाओं का निरीक्षण किया था। वहीं बारिश में जल और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। साफ पानी पीने और हाथ धोने के साथ घर के आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की गई है। बुखार या उल्टी दस्त होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने को कहा गया है। जिले में 35वीं वाहनी विशेष सशस्त्र बल की वाहन शाखा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सेनानी राजेश रघुवंशी ने सरकारी वाहनों की स्थिति, साफ सफाई, रख रखाव और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अब पंचायत उपचुनाव से जुड़ी खबर। मंडला जिले की 9 जनपद पंचायतों में खाली सरपंच और पंच पदों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। उम्मीदवार 8 से 15 सितंबर तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा कर सकेंगे। जिले में सरपंच के 5 और पंच के 71 पद खाली हैं। नामांकन संबंधित जनपद पंचायत कार्यालयों में लिए जाएंगे। वहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस आयोजन में मंत्री संपतिया उइके ने खिलाड़ियों और युवाओं का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कराते खिलाड़ी तुषार चौधरी और राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी रघुवेंद्र सयाम और तनु यादव ने भी युवाओं को प्रेरित किया। और आखिर में स्वतंत्रता दिवस की खबर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीते दिनों मंडला पुलिस ने तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी के नेतृत्व में रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। मंडला जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे मंडला जिले की चिट्ठी, आलेख था शशांक चौबे का, वाचन स्वर अभिषेक खटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर।

कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने दैनिक काम निपटाते हुए सुन रहे होंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं सुरों की मलिका आशा भोंसले को, जिनकी आज जयंती है। आशा

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो मित्र दिव्या अग्रवाल का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन गीत और साथ ही बेहतरीन श्रोताओं के संदेश। आज आशा भोसले जी का जन्म दिवस है, जैसा हमने आपको सुबह बताया था, और आज के इस कार्यक्रम में हम फिर से आपको आशा जी के बहुत सुंदर नगमे आपको सुनवाने वाले हैं जो हमारे श्रोताओं ने हमें भेजे हैं आज के दिन के लिए ही। तो सबसे पहले सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव और एस के पप्पी। गांव कैरो, ज़िला तरन तारण, पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरबशद। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानुप्रकाश और गीतिका खोरवाल। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश शेरवानी स्कूल से इन्होंने संदेश भेजा है। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। इन सब की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं नवरंग फिल्म का गीत। श्रोताओं, आशा जी ने बहुत सारे हर प्रकार के गीत गाए हैं, कहना चाहिए बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर वो रही हैं, ये हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो हर तरीके के गीत गाने में माहिर रही हैं, चाहे वो रोमांटिक गीत हो, कैबरे हो, भजन हो, गज़ल हो, उदासी भरे गीत हो, और मन को छू लेने वाला हर गीत उन्होंने गाया है। ऐसा ही एक गीत है नवरंग फिल्म से। गीतकार हैं भरत व्यास, संगीतकार सी रामचंद्र और गायक कलाकार महेंद्र कपूर और आशा भोसले। इनके युगल सुरों में हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न रहे।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। और लीजिए, इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद महेंद्र कपूर के ही स्वर में ये एक और युगल गीत फिल्म वक्त से। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है रवि ने। पसंद है हमारे इन श्रोताओं की। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ साइना और निवान शर्मा। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। गांव जाखोद राजस्थान से ही फरमाइश भेजिए हमें शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा खटक ने। कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा अभिषेक, सार्थक प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुम्भार। इन सबकी पसंद पर लीजिए सुनिए वक्त फिल्म का ये एक और खूबसूरत गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में।

आशा भोसले जी के गाए कुछ रोमांटिक गीत अभी हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। और लीजिए अब सुनिए हमारे इन श्रोताओं की पसंद। पटेल नगर मलोट से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजोरिया। झज्जर हरियाणा से पसंद भेजी है बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक भाटिया ने। जलालबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से फरमाइश हमें भेजी है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा ने।

बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूणत। इन सभी ने फरमाइश की है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में गाए हुए गीत दिन है बहार के, माफ़ कीजिएगा रोका कई बार मैंने, और ये गीत हमने लिया है फिल्म मेरे सनम से। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने। सुनते हैं ये गीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले जी के गाए कुछ गीत। लीजिए आप सुनिए नमक हलाल फिल्म से ये गीत, आशा भोसले के स्वर में। गीत है अनजान का, संगीत बप्पी लहरी का, पसंद है हमारे इन श्रोताओं की। बोरखेड़ा पित्र समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतास बिहार से हैं, सोनम सिंह, अनामिका सिंह, टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी, रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से हैं रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और रेहान अंसारी, लोनी से नसीमुल इस्लाम, प्रकाश वीर राजपूत और अनुप्रिया चंद्रवंशी, खंडवा से राकेश, पिंकी और दुर्गा, जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजिए बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू ने। गौरैया जालंधर से अशोक जाटव, प्रभा जयपुरिया और डोनट पावो, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया, इन सबके पसंद पर सुनते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत।

व्हाट्सएप फरमाइश के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आशा भोसले जी के गाए कुछ गीत। और अब श्रोताओं, पहले हमने सुनवाए आपको उनके गाए कुछ रोमांटिक गीत, और अब हम सुनवा रहे हैं आपको उनके गाए कुछ कैबरे गीत। और वो जिस तरह हमने बताया कि हर तरीके की गायकी में माहिर थी, तो अब पहले सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद। मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, मोहम्मद साजिद अली, मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद शाहिद अली। दादरी गेट भिवानी से फरमाइश भेजिए कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा ने। बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नागर, अंजू, मोहित, लकी, तानिया, नारंग। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, दिशानी और निमित। हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमें फरमाइश भेजी है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश, अमरन, आफरीदी ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान छीपा और पूजा परिहार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से फरमाइश है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही और मेराज जहाँ की। इन सब की पसंद पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनहोनी फिल्म का ये कैबरे गीत आशा भोसले और उनके साथियों के स्वर में। गीत है वर्मा मलिक का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीत था मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीत आर डी बर्मन का। श्रोताओं, आर डी बर्मन के लिए आशा जी ने 500 से ज़्यादा गाने गाए और उनमें से तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत जो आपने सुना बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। आर डी बर्मन जी ने आशा की आवाज़ को कैबरे, जेज और रॉक संगीत के लिए तराशा और साथ ही सबसे ज़्यादा जो ड्यूएट उन्होंने गाए हैं मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए 900 से ज़्यादा ड्यूएट, नया दौर और तीसरी मंजिल जैसी फिल्मों के लिए जो गाने हैं वो आज भी बहुत क्लासिक माने जाते हैं। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की थी शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण, संजय, सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा। श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, सौभाग्यवती जगगुताई राजे, संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वत, कल्पना सानवी और प्रणाली देशमुख, इन सभी ने फरमाइश भेजी थी मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता यशराज, ऋषि कृष्णा घोड़के, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जीवियम और सरथना मेरठ से हैं आदि, अंश, भव्य जैन, इन सबकी पसंद पर अभी आपने सुना ये गीत और लीजिए अब सुनिए हमारे इन श्रोताओं की पसंद। बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंतीबाई बागरी, लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा श्रीमती मनोहर बाई बागरी, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, मेघा राशि, माधुरी किरण, अनुराग और मोहन, गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, इन सबकी पसंद पर अब हम आपको सुनवा रहे हम साया फिल्म का गीत। गीत को लिखा है श्रीवन रिजवी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने, आवाज़ आशा भोसले की।

श्रोताओं, आशा जी ने करीब 12,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं और 12,000 गानों में उन्होंने 1950 के दशक से शुरू करके अगर हम देखें तो 2026 आज चल रहा और अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव तक आशा जी हमेशा सक्रिय रहीं। उन्होंने बहुत सारे नॉन फिल्मी गाने भी गाए हैं जो उन्होंने खुद की एल्बम भी तैयार की। अदनान सामी के साथ उनकी जो एल्बम बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। और नए जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, संगीत निर्देशक हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत सारे गीत गाए। उनमें से एक है एआर रहमान के साथ उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत संगीत जगत को दिए हैं। इसी में से एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ताल फिल्म से। ताल फिल्म का ये गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है एआर रहमान ने और आवाज़ें हैं आशा भोसले, ऋचा शर्मा और आदित्य नारायण की। सुनने की फरमाइश हमसे की है हमारे इन श्रोताओं ने। संदलपुर आंतरी से उर्मिला यादव, कालीचरण यादव और

यादव परिवार। इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर ये गीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात से वर्चुअली छोटा उदयपुर धार परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिससे धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में स्थित नवनिर्मित टांडा रोड रेलवे स्टेशन से नई टांडा रोड प्रतापनगर रेल सेवा की शुरुआत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि इससे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को रेल सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपनी दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज प्रदेश में निवेश लाने के लिए कई अहम बैठकें करेंगे और निवेशकों को इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए आमंत्रित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन चार पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। कल उपराष्ट्रपति ने शिलांग के 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उपराष्ट्रपति आज ईटानगर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। भारत ने अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास को लेकर अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल होने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देना है। और मौसम विभाग के मुताबिक अब तक बारिश के कुल कोटे की 83.5% बारिश हो चुकी है। भोपाल समेत प्रदेश के 12 जिलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि 31 जिलों में अभी तक भी बारिश कम है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कालिया फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों ने। आरडी बर्मन की रचना है, संगीत आरडी बर्मन ने तैयार किया है, मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है। तो आइए सुनते हैं कालिया फिल्म का ये गीत।

ये गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म बैराग से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी की रचना, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

पसीना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

अब आपको सुनवा रहे हैं ढोंगी फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत आर डी बर्मन का है।

वी ने इस गीत को लिखा था, संगीत था रवि का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म अपना हाथ जगन्नाथ से। आशा भोसले का साथ दिया है किशोर कुमार ने, कैफी आजमी ने ये गीत लिखा है, संगीत है SD बर्मन का।

अब पेश है ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में राजा मेहंदी अली खां का लिखा नगमा, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है। फिल्म का नाम है दो दिलों की दास्तान।

अब आपको सुनवा रहे हैं गोविंद का लिखा नगमा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए वो नगमे चुने हैं जिसमें आशा भोसले ने कई कलाकारों के साथ गीत गाए हैं, तो आपने आशा जी की गायकी के अलग अलग रंग सुने हैं और आप सुन भी रहे हैं।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गीत गाया पत्थरों ने का वो नगमा, जिसे आवाज़ दी है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, संगीत तैयार किया है राम लाल ने।

अब लीजिए सुनिए, साहिर का लिखा नगमा, संगीत रवि का है, आवाज़ आशा भोसले और महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम आदमी और इंसान।

बुढ़ा मिल गया। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। मजरू ने इसे लिखा था, संगीत तैयार किया था आर डी बर्मन ने।

0: घर संसार फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल

0: ब्रेक।
1: शाम सुहानी हो,
0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात से वर्चुअली छोटा उदयपुर धार परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिससे धार जिले में टांडा रोड प्रतापनगर रेल सेवा की शुरुआत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि इस रेल सेवा से आदिवासी क्षेत्र के लोगों को रेल सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज प्रदेश में निवेश लाने के लिए कई अहम बैठकें करेंगे और निवेशकों को इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए आमंत्रित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज विदिशा जिले के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज में कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर कहा कि अक्षर ज्ञान से आत्मविश्वास, शिक्षा से आत्मनिर्भरता और ज्ञान से सशक्त समाज का निर्माण होता है। शिक्षा का प्रकाश समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी बच्चा, युवा या वयस्क ज्ञान की रोशनी से वंचित न रहे। 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत अब अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। G20 इनोवेशन बैठक में भारत ने AI, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है और प्रदेश में अब तक बारिश के कुल कोटे की 83.5% बारिश दर्ज हुई है। 31 जिलों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर तक रीवा और शहडोल संभाग में तेज बारिश और अन्य जिलों में हल्की बारिश का दौर रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। हम तैयार हैं आपके पत्र और आपकी पसंद के गीत लेकर। तो शुरू करते हैं आपकी फरमाइश का सिलसिला। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है छत्रपति शंभाजी नगर के श्रोताओं का। राजेश साबले, पाटिल, राजदीप, राशि, राजेश और इनके साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है जयराम प्लॉट राजकोट के श्रोताओं ने। ये हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित सुनना चाहते हैं किनारा फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और भूपेंद्र ने। गुलजार की रचना है, संगीत RD बर्मन का है। तो आइए इन सब के साथ हम भी सुनते हैं ये नगमा।

ये गीत है फिल्म सीआईडी से, शमशाद बेगम की आवाज़, ओपी नैयर का संगीत, गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। पसंद आप सब श्रोताओं की। ये है पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत के मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गा राम साहू, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर अंसारी, महराज जहां इस गीत को सुनना चाहते हैं लक्सर हरिद्वार से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर सीआईडी फिल्म का ये नगमा।

पत्थर के सनम, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसे गाया है मुकेश ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, पसंद आप सबकी है। ये हैं महाराष्ट्र के श्रोता मेहर नगर उमरखेड़ से, ये पत्र हमें मिला है अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश के, इन्होंने ये पत्र लिखा है, बदलापुर मुंबई के सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता, अर्जुन और टुक टुक का पत्र हमें मिला है।

नागपुर के श्रोता भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये पत्र हमें मिला है आकार हाइट्स बहादुरा से। वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित और ध्वनि इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इसी गीत के लिए अपनी पसंद लिख भेजी है पटेल नगर मलोट पंजाब के श्रोताओं ने। ये हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू और इनके परिवार के सदस्य। घंटाघर चौक खंडवा के श्रोताओं ने भी हमें इसी गीत की फरमाइश की है। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। तो आइए सुनते हैं पत्थर की सनम फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने चुना है बरसात फिल्म से, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से इसी गीत को पसंद किया है शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज ने। बुरहानपुर के श्रोताओं का पत्र हमें मिला है, ये हैं मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन, तैमूर, रीना, रोजूबाई और सनी बाबू। इसी गीत को हमारे कुछ और श्रोताओं ने भी पसंद किया है, ये हैं धामणी मनोरा से, तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल और अनुत डेरे। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं बरसात फिल्म का ये गीत।

0: बरसात फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जमुनिया। आज सुनिए इसकी 21वीं कड़ी।

0: एपिसोड क्रमांक 20 तक आपने सुना कि जमुनिया पढ़ लिख कर गाँव की सरपंच हो गई है और गाँव वालों को प्रेरित करती है कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें, और उधर सरकार उन बच्चों को शिक्षा के लिए पैसे दे और साथ में उनका खाने पीने का इंतज़ाम भी करे। गाँव के सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं और अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। अब आगे।
1: गुरुजी आइए। प्रणाम।
2: प्रणाम गुरुजी।
3: प्रणाम प्रणाम। आप सबको मेरा शुभ आशीर्वाद। लगता है चार्ज का लेन देन हो रहा है। अच्छा अच्छा, आप लोग निपटाइए, मैं फिर बाद में आता हूँ।
1: जी अच्छा गुरुजी।
3: अच्छा अच्छा। दीवान जी
4: बोलिए।
5: जो भी बचा हुआ कैश है हमने रख लिया है, बाकी आपने जो जो काम कराया है उसको बीडीओ साहब से पास करवा के लाकर दे दीजिएगा।
4: हो हो जयंत भाई, हो हो सब ठीक है, तो जैसा आप कह रहे हैं हो जाएगा। ठीक है तो हम चलते हैं। और ये जो काम आप बीडीओ साहब से प्रमाणित करवाने के लिए कह रहे हैं वो हम करवा के आपको वापस दे देंगे, ठीक है ना?
1: जी जीवान जी। नमस्कार।
5: नमस्कार।
4: नमस्कार जमुनिया जी। नमस्कार जैन जी। चले थे भाई, चलो
6: चलो बाबू।
5: देखो इसने कुछ काम धाम तो किया नहीं है, इसलिए पैसा तो काफी बचा हुआ है जिसे मजबूरी में इसने हमें दिया है, अन्यथा वो इसी योजना में सब कुछ काला पीला कर डालता।
1: समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे इस पैसे का?

0: हम लोग एक प्रस्ताव बनाएंगे
1: कैसा?
0: कि पिछले बचे हुए पैसे को भी हमें खर्च करने की अनुमति दी जाए, ताकि ढेर सारे काम इस गांव में हम लोग कर सकें। तो प्रस्ताव हम आज ही तैयार कर लेते हैं,
1: हाँ
0: ताकि मैं कल इन्हें ले जाकर पास करवा लाता हूं,
1: ठीक,
0: और जो पैसा पहले का आया हुआ है उसमें सबसे पहले सड़क और स्कूल का निर्माण करवाएंगे।
1: बिल्कुल सही जैन जी, मैं आज ही सभी पंचों को बुला के प्रस्ताव बनवाती हूँ, ठीक है?
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: खास समय आ गया है। अरे का से का हो गया है। पहले हमारा कितना दबदबा हुआ करता था, और अब देखते देखते इस गांव में क्या से क्या हो गया है। अरे कितना मान सम्मान था हमारा।
3: आओ मालिक।
2: अरे लोग हमसे डरते थे, झुक झुक के सलाम करते थे हमको। और ये जमुनिया ससुरी, दो कौड़ी की औरत, हमसे हमसे हिसाब ले रही है। बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। अरे
3: आओ मालिक।
2: कोई है?
3: जी मालिक, जी मालिक।
2: सुन, आज शाम को वो
3: हाँ
2: जग्गा और बिल्ला को बुला के ला।
3: हाँ मालिक,
2: समझ गया?
3: हाँ,
2: हमें कुछ जरूरी बात करनी है उनसे,
3: कर ले हो मालिक।
2: और तुम भी साथ में ही रहना।
3: हाँ हाँ मालिक,
2: अरे हमसे ये गांव का अमन चैन देखा नहीं जा रहा है।
3: जी जी मालिक,
2: कुछ करना होगा, करना होगा कुछ।
3: हाँ हाँ मालिक, बिल्कुल।

0: बाबा।
1: हाँ बेटा।
0: खाना खा लिया?
1: हाँ बेटा।
0: बाबा फिर पंचों को बुला के पंचायत घर पहुँचिए ना।
1: पंचों को बुला के?
0: हाँ बाबा, आज अपने पास बहुत काम है, मैं भी खाना खाकर वहीं आती हूँ। ठीक है?
1: ठीक है बेटा।
0: अच्छा
1: मैं भी निकलता हूँ और अब वहीं मिलेंगे पंचायत घर पे।
0: जी बाबा।
1: हाँ ठीक है बेटा।
2: अच्छा जमुनिया
0: जी,
2: मैं भी चलता हूँ।
0: अच्छा
2: लिखने पढ़ने में कुछ काम हुआ तो वो मैं कर लूंगा।
0: हाँ हाँ ठीक है।
3: अरे यार अचानक है, कैसे बुला लाओ यार। अरे घर तो आओ कोई, आके तो बात करो यार। भैया ए गोविंद भाई, समझ में नहीं आ रही यार, अचानक कैसे बुला लाओ यार।
4: जमुनिया जी आती होंगी, अब सारी बात होगा तभी पता चलेगा। अरे भे देखो आ तो गई जमुनिया जी। अरे अभी सब मालूम हो जाए, चलो आ जाओ आ जाओ, आओ आओ जमुनिया जी,
5: अभी सब मालूम हो जाए।
4: और क्या, आ जाओ।
0: प्रणाम पंचू।
4: राम राम राम राम।
0: बैठिए।
4: अरे आप सोई बैठो,
6: आप तो बैठिए,
4: बैठो बैठो।
0: मैंने आप सबको एक खास काम के लिए बुलाया है। हमें सरकार की तरफ से जो बजट मिला है उसके अलावा पिछले बजट का भी पैसा बचा है। वो सारा हिसाब किताब जयंत जी के पास है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लें।
4: अरे नहीं,
3: अरे कौन देखेगा, कौन समझ में भी नहीं आया।
0: देखिए मैं तो चाहती हूँ कि ये पैसा वापस ना करना पड़े। इसे सरकार हमें इसी गांव में खर्च करने के लिए दे दे, क्यों?
4: अच्छा है,
0: और हम सारे काम एक साथ निपटा सके। इसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। एक प्रस्ताव हमारी तरफ से सरकार को जाना होगा। ठीक है जयंत बाबू, आप लोगों को ये प्रस्ताव पढ़कर सुनाएंगे। आप लोगों को उचित लगे तो कृपया इस पर हस्ताक्षर कर दें, और जिनको कोई शंका हो तो जैन जी से पूछ ले। ये काम हमको देर से नहीं करना है, क्योंकि हम इस गांव के काम में पहले ही बहुत पीछे हो चुके हैं, है ना? चलिए जैन जी प्रस्ताव पढ़ के सुनाइए।
2: हाँ भाइयों,
6: कहाँ पढ़ने
2: भाइयों, प्रस्ताव इस प्रकार है कि
3: आपने बनाओ तो अच्छी बनाओ।
4: प्रस्ताव लाइए। हाँ और क्या, हम तो इसका अनुमोदन करते हैं।
3: और
6: हम सब करते हैं।
0: धन्यवाद भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: हाँ चलो जमुनिया सब ठीक है, हम लोग चले।
0: बिल्कुल पंचो, पर मेरी आपसे एक विनती है कि जो काम बिन पैसे हो सकता है वो हम सिर्फ अपनी मेहनत से अपने बल पर घर घर में कर डालने का प्रण करें। जैसे कि गांव की सफाई, सब लोग अपने अपने घर के पीछे एक एक गड्ढा बना लें और घर का कचरा उसी में डालें। हाँ भैया, और कुछ है थोड़ा सा, हर घर में एक एक शौचालय बनाए, इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ मदद भी मिलती है, वो भी हम दिलाने की कोशिश करेंगे।
7: ये काम बहुत अच्छा है।
6: और क्या प्रस्ताव है?
3: और तो कुछ नहीं है।
0: नहीं भैया, बस अभी इतना ही। ठीक है, नहीं नहीं भैया, राम राम है। ये लोग
6: चलते हैं। राम राम
2: जमुनिया, तो फिर मैं भी शहर निकलता हूँ
0: जी।
2: और हाँ, आज अगर ज्यादा समय लगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा और सरकार से इसका अनुमोदन लेकर ही आऊंगा।
0: अच्छा ठीक है, आराम से जाइएगा। हाँ
2: हाँ।

0: आ गए तुम लोग। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है जग्गा बिल्ला तुमसे।
1: जी साहब जी।
0: आप सुनो जी। हमारी बात गौर से सुनो।
1: अरे बोले साहब, बोले बोले।
0: बहुत दिनों से हमने ये गांव में चलते हुए घर नहीं देखे हैं।
2: देखे मालिक,
1: आप कहें तो।
0: अरे हमारे कलेजे में आग लगी हुई है।
1: ऐसी क्या बात हो गई मालिक?
0: अरे बात ही ऐसी है, और हमारे कलेजे में जो आग लगी है उसे ठंडक तभी मिल पाएगी जब कम से कम 3-4 घरों में आग लगे।
1: बिल्कुल लगा देंगे, सबके सब घूम देंगे।
0: अरे तभी हमें कुछ तसल्ली होगी।
1: अरे आप हुकुम तो करो मालिक।
2: करो मालिक।
0: बस तो 3-4 घर एक साथ आज की रात जला के राख कर दो।
2: समझ लो मालिक, काम हो गया।
1: आप निश्चिंत रहिए मालिक।
0: शाबाश, पर सुनो, काम जरा होशियारी से होना चाहिए।
1: अरे आप भरोसा रखिए,
2: खातिर जमा रखे मालिक।
0: शाबाश, किसी को नजर नहीं आना तुम लोग।
1: आप निश्चिंत रहिए मालिक, हाथ को हाथ से खबर नहीं होगी कि किसने किसको जला दिया, किसने किसको अंजाम दिया। आप तो हम पर भरोसा रखिए साहब।
0: शाबाश शाबाश, ठीक है तो फिर आज की रात।
1: जी मालिक, आप निश्चिंत रहिए मालिक।
2: आप तो सोइए मालिक।
3: मालिक कछु पैसा वैसा?
0: पैसा की फिक्र मत करो, पैसा जितना चाहिए दूंगा, काम करके आओ।
1: बस बस बस मालिक, आप निश्चिंत रहिए मालिक, सब फूक के रख देंगे।
3: हाँ मालिक, तो अब हो जाएगा काम वहां मालिक।
0: शाबाश।
3: चुपचाप चुपचाप
4: माचिस।
5: अरे जल्दी करो, अरे तू लगा यार।
4: तेरी माचिस नहीं चले यार।

0: तो सही है मेरे, तुम्हारी बात ठीक तो लगा था यार, बिना सबूत के कोई को नाम लेना ठीक नहीं है भैया। बाप रे, जाम चीजें लगा रहे हो यार।
1: अरे अब आप ढूंढते रहिए सबूत और हम भी चुपचाप नहीं सहेंगे।
0: हाँ हाँ, चुपचाप नहीं सहेंगे, इसका बदला लेंगे।
1: चलो अच्छा हुआ आग बुझ गई, पर इन चारों का बड़ा नुकसान हो गया।
0: हाँ भैया,
1: कुछ भी नहीं बचा, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे।
0: भाइयों, अगर हिम्मत है तो बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ।
2: तैयार है,
0: हम सब मिलके बदला लेंगे। उठाओ मशाल और चलो घेर लेते हैं उस दीवान का घर।
2: चलो,
1: उसे भी पता चले आग क्या होती है।
0: चलो चलो सब चलो, चलो आगे बढ़ो,
1: चलो रे
0: सब आ जाओ।
3: अरे ये चारों घर, ये चारों घर कैसे चल गए भाई?
4: अरे कुछ नहीं जमुनिया, ये सब दीवान का ही काम लगता है रे।
3: दीवान का? दीवान को आग से खेलने का बहुत शौक लगता है, पर ये इतने लोग मशाल लेकर कहाँ जा रहे हैं?
4: ये लोग बदला लेने गए, कह रहे थे कि दीवान की हवेली जला देंगे आज, उसको पता लगना चाहिए कि आग क्या होती है।
3: अरे नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, मैं जाके इनको रोकती हूँ। भाइयों रुको, मेरी एक बात सुन लो, बस एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। भैया आग से खेलने का कोई अंत नहीं है।
1: काहे से अंत है?
3: आग से आग कभी बुझी है क्या?
0: अरे अब क्या, आग से आग बुझेगी।
3: और अगर आप लोगों को लगता है कि बिना इसके दीवान को समझाया नहीं जा सकता, तो पहले आगे मुझे चलने दीजिए, पहली मशाल मैं जलाऊंगी।
1: ठीक है बहन, चलो चलो।
3: दीवान जी बाहर आइए। जमुनिया है दीवान जी।
2: जमुनिया,
3: जरा एक नजर आकर बाहर ये देख लीजिए, अगर इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो आने वाले वक्त में बहुत सारा गांव जलकर खाक हो जाएगा।
2: बिल्कुल, इतने सारे लोग इतनी मशाल जलाकर हमारे घर पर क्या कर रहे हो तुम लोग?
3: वो अपनी आग का बदला लेने आए हैं।
2: बदला लेने?
3: जिसे तूने चार घरों में लगवा कर बर्बाद कर दिया।
2: अरे का अनाप शनाप बक रही है तू? अरे हमें कहा पड़ी है कि तुम्हारे घरों को जलाओ? अरे जरूर तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है।
3: वो तो हमको सब समझ में आ रहा है दीवान जी, पर ये आग का खेल ये आग का खेल खेलना बंद कर दीजिए। जब आग जलने पर होती है ना दीवान जी, तो वो अमीर और गरीब को नहीं पहचानती।
1: कछु आया समझ में?
2: रे का कह रही है, है? मजाक समझ रखा है तूने? अच्छा लगा के तो देखो मेरे घर में आग, मैं भी देखता हूँ कैसे लगाते हो। अरे देखे कैसे लगाते हो आग है? अरे अरे तो सचमुच आगे आ गए। हे जमुनिया रोको अपने आदमियों को।
3: मैं तो इन्हें रोकने ही आई हूँ दीवान जी, लेकिन अगर किसी एक ने आग लगा दी तो मैं उनमें शामिल हो जाऊंगी। इसलिए आपको पहले समझ आ रही हूं कि इन सबके सामने एक बार वादा करे कि आगे आप कभी भी किसी के घर में आग नहीं लगाएंगे, और जो आग लगा दी है उसके लिए माफी मांगे।
2: माफी?
3: और जो इन चारों घरों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी आप करेंगे।
2: ए, सुनो सुनो सुनो जमुनिया, तुम भी सुनो। हम इस गांव के सरपंच रहे हैं तो? अरे हमारे साथ तुम लोग जो करना चाह रहे हो वो ठीक नहीं है। सुनो, तुम लोग चाहते हो तो ठीक है, हम माफी मांगते हैं तुम लोगों से, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का भी वादा करते हैं। अरे वो मैं कहा है, पहले भी इन लोगों के नुकसान हुए तो हम भरते ही रहे। अरे जहां तक आगे ऐसा ना करने की बात है तो सुनो, ना हमने पहले कभी ऐसा किया, ना आज किया, ना आगे कभी करेंगे।
3: भाइयों, मेरे ख्याल से इतना काफी है। अपनी अपनी मशाले बुझा दो भैया, क्योंकि आग जब तक बस में होती है बड़े काम की चीज होती है। रोशनी इसी से होती है और रोटी भी इसी से पकती है, पर जब ये बेकाबू हो जाती है तब किसी के काम की चीज नहीं होती। इसलिए अभी अपनी मशाले बुझा दो और अपने अपने घर चलो। कल सवेरे बैठकर हम आपस में चर्चा करेंगे कि बाकी क्या करना है।
5: अरे जो तुम कहती हो तो मान जाते हैं जमुनिया, पर ये दीवान सुधरने का नहीं।
0: अरे बहुत बदमाश है।
5: और अभी हमारे आग ठंडी ना हुई है।
3: बिल्कुल ठंडी करनी भी नहीं है, ये जलती ही रहनी चाहिए जिससे जीवन को शक्ति मिलती रहे। बाबा।
6: बोलो बेटा।
3: ना हो तो आज हाट हुआ हो।
6: हाँ ठीक है।
3: बहुत सा सामान बना पड़ा है, मैं आज घर पर ही रहती हूँ।
6: हाँ हाँ हाँ हाँ।
3: कल रात क्या हो गया वो तो आपने देखा ही होगा।
6: हाँ हाँ।
3: जयंत बाबू शहर से आते ही होंगे, देखिए क्या खबर लाते हैं। मैं पंचों को बुलाकर कल के हादसे पर बात करती हूँ।
6: ठीक है बिटिया, मैं हाथ होके आता हूँ।
3: ठीक है पापा।
6: ठीक।
3: भाई लोगों,

0: मैं कुछ अपनी बात कहूं या समझाऊं? इससे अच्छा है पहले आप लोगों की सुनूं।
1: भैया हम सबकी राय है तो अभी तो यही है कि जब तक दीवान को मुंह तोड़ उत्तर ना दिया जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे।
0: हम लोग दीवान को मुंह तोड़ उत्तर कैसे दे सकते हैं? हाँ
1: आप बताएं।
0: उसकी हवेली जलाकर?
1: हाँ।
0: उसको मार पीट के? या उससे आगे बढ़कर?
2: वो कैसा आगे आगे बढ़कर?
0: इन सब बातों पर विचार भी कर लीजिए और जो भी निर्णय हो सोच समझ कर बताइए। मैं भी आपके साथ हूँ।
1: आप हमारी सरपंच हैं, आप बताएं।
0: पर फिलहाल हमें किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाना है।
1: जे का बात का करें।
0: पहले जिन चार घरों को फूका गया है उनको दोबारा बनाना है। जो नुकसान हुआ है वो सब दीवान से लेना है।
1: बिल्कुल लेना है,
0: है ना? फिर आगे देखते हैं क्या करना है, है ना?
1: हाँ ये बात ठीक है, ठीक है। हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे,
2: इसी तरह आगे बढ़ेंगे।
0: अरे जयंत बाबू जल्दी आ गए।
3: हाँ काम तो गली हो गया था पर थोड़ी देर हो गई सो मैं वहीं रुक गया।
0: अच्छा।
3: हाँ जमुनिया एक खुशखबरी है।
0: क्या?
3: हमारे सारे प्रपोजल सरकार ने मान लिए हैं और तुम चाहो तो ये खबर पंचो को भी दे दो।
0: हाँ बिल्कुल। पंचो हमने जो प्रस्ताव सरकार को भेजा था वो सब उन्होंने मान लिया है। आप सबको बधाई। अब हम इस गांव के सारे काम एक साथ शुरू कर सकते हैं। सड़क और स्कूल का काम चल ही रहा है, है ना? अस्पताल पोस्ट ऑफिस का काम जन भागीदारी से शुरू करना है। पर बिल्डिंग बनाने में कुछ समय लगेगा,
1: सो तो है।
0: इसलिए पोस्ट ऑफिस तुरंत प्रभाव से किराए के मकान में खोल लिया जाएगा।
2: ठीक है,
0: गांव में एक बत्ती बिजली का कनेक्शन भी आना है।
1: अरे ये
0: उस पर भी काम शुरू होगा जल्दी। ये जरूरी खबर आप लोगों को देना बहुत जरूरी था।
1: अरे जे तो बहुत ही बढ़िया। बधाई
0: आप सबको पंचो। अगर हम लोग मिलजुल कर इसी तरह आगे बढ़े तो इस गांव की तरक्की और तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी।
1: अरे आप तो रास्ता बताते चले।

0: जितने काम हमने अभी शुरू कर दिए हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार उस पर नजर रखना जरूरी है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जमुनिया।
1: सच में
0: मेरे ख्याल से गांव के कुछ ईमानदार लोगों को लेकर एक एक काम का जिम्मा सौंप देना ठीक रहेगा। तुम क्या सोचती हो जमुनिया?
1: मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ जो आप सोच रहे हैं।
0: पर जमुनिया, मैं ये क्या सुन रहा हूं?
1: क्या
0: कल रात इस गांव में बड़ा तनाव हो गया था?
1: सही सुना आपने, ये दीवान ना अपनी खुराफात से बाज ही नहीं आ रहा। इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा, आप सोचिए ना।
0: कुछ सोचना ही पड़ेगा इस दीवान का। तो
2: भाई लोग, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस गांव के सारे आधे अधूरे काम पूरे करें।
3: सब मिलकर करेंगे और क्या?
2: कल बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए लोग आएंगे, उसमें खाते खुलवाने के लिए जितने गांव के लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें पैसा मिलना है उन्हें बता दिया जाए कि वो आकर खाते खुलवा लें।
4: सबको बता देंगे।
2: उन्हें भुगतान इसी पोस्ट ऑफिस या बैंक से होगा।
4: अरे वाह,
2: कोई नकद लेन देन नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई लोग?
5: छमुनिया,
1: हाँ,
5: अंग्रेजी में कहावत है, well become his half ton।
1: क्या?
5: ओ, इसका मतलब है अगर काम काज ठीक ठाक शुरू हो जाता है तो समझो आधा काम हो जाता है।
2: अंग्रेज बहादुर, नीचे आ जाओ अपनी फटी चटाई पर।
0: अरे
2: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
0: हाँ, ये कहावत मैंने इसलिए कही जमुनिया।
6: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया की 21वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात से वर्चुअली छोटा उदयपुर धार परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिससे धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में स्थित नवनिर्मित टांडा रोड रेलवे स्टेशन से टांडा रोड प्रतापनगर रेल सेवा की शुरुआत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि इससे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को रेल सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज प्रदेश में निवेश लाने के लिए कई अहम बैठकें करेंगे और निवेशकों को इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए आमंत्रित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज में कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर कहा कि अक्षर ज्ञान से आत्मविश्वास, शिक्षा से आत्मनिर्भरता और ज्ञान से सशक्त समाज का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का प्रकाश समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी बच्चा, युवा या वयस्क ज्ञान की रोशनी से वंचित न रहे। 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत अब अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। G20 इनोवेशन बैठक में भारत ने AI, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
6: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

मंगलमय मंगलवार की मंगल कामनाओं के साथ हाजिर हूं मैं आज आपकी सखी शालिनी सोनी। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक अक्षर, एक शब्द, एक पुस्तक और इन्हीं से आरंभ होती है परिवर्तन की एक नई कहानी। जी हाँ सखियो, जहाँ अक्षरों का ज्ञान होता है वहाँ विचार जन्म लेते हैं, और जहाँ विचार जन्म लेते हैं वहाँ चेतना जागती है, और जहाँ चेतना जागती है वहाँ समाज प्रगति करता है, और जब समाज प्रगति करता है ना सखियो तो देश तरक्की करता है। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का दिन है, और ये दिन केवल एक दिवस नहीं बल्कि ज्ञान के उस अमर दीप को प्रज्वलित करने का अवसर है जिसकी ज्योति मानव सभ्यता को अज्ञान के अंधकार से निकालकर विकास और उन्नति के प्रकाश की ओर ले जाती है। सखियों, प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं।

यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि साक्षरता पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, विवेक और स्वावलंबन का संचार करने वाली शक्ति है। सखियों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा बालक जिसके हाथ में कभी पुस्तक नहीं थी, आज वही ज्ञान के पन्ने पलट रहा है। एक ऐसी महिला जिसने कभी अपने अधिकारों की बात की ही नहीं, आज वही अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी हस्ताक्षर करने में असमर्थ था, आज वही अपने नाम के साथ अपने सपनों को भी साकार कर रहा है। यही साक्षरता की वास्तविक शक्ति है सखियों। साक्षरता व्यक्ति को केवल शब्द का अर्थ नहीं सिखाती बल्कि उसे जीवन का अर्थ समझाती है। यह अंधविश्वास के स्थान पर विवेक, निर्भरता के स्थान पर आत्मनिर्भरता और मौन के स्थान पर अभिव्यक्ति का साहस देती है। सखियों, किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या ये प्रकाश समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच पाया है या नहीं? सखियों, आज भी अनेक लोग शिक्षा के समान अवसरों से वंचित हैं। इसलिए साक्षरता का संकल्प केवल किसी एक संस्थान, विद्यालय या सरकार का दायित्व नहीं, हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम किसी एक व्यक्ति को पढ़ाना सिखाते हैं ना सखियों, तो केवल उसके वर्तमान को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को बदल देते हैं। तो आइए आज हम एक संकल्प लें, न कोई अज्ञान के अंधकार में रहे, न कोई शिक्षा के अधिकार से वंचित रहे। ज्ञान का दीप घर घर जले और साक्षरता का प्रकाश जन जन तक पहुंचे, क्योंकि जिस हाथ में कलम होती है उस हाथ में केवल शब्द नहीं अपने भविष्य को गढ़ने की शक्ति होती है। आइए अक्षरों से आरंभ करें एक नई क्रांति और शिक्षा के प्रकाश से रचें एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति साक्षर हो, हर मन जागरूक हो और हर सपना साकार होने का अवसर पाए। इसी आशा, इसी संकल्प और इसी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान बांटिए, चेतना जगाइए और साक्षरता की ज्योति जलाइए।

सिक्योर हरित भारत मिशन, जी हाँ, हरियाली की ओर एक बढ़ता कदम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभियान की जिसका उद्देश्य हमारे देश को अधिक हरा भरा, स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है। क्या सिक्योर आपने कभी सोचा है कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जल और मिट्टी के संतुलन को बनाए रखते हैं और साथ ही साथ जैव विविधता को संरक्षण देते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय हरित भारत मिशन यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के घटते वन और वृक्षों की रक्षा करना, उन्हें पुनर्स्थापित करना और उनकी वृद्धि करना है। हरित भारत मिशन के अंतर्गत वन और वृक्षों को बढ़ाने के साथ साथ जो मौजूदा वन है ना, उनकी गुणवत्ता को सुधारने पर भी ध्यान दिया जाता है। मिशन का लक्ष्य वृक्षों का आवरण बढ़ाना है, साथ ही साथ उनकी गुणवत्ता सुधारना भी है। इसके अलावा लगभग 30 लाख परिवारों को वन आधारित जीविका को बेहतर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन केवल सरकार के ये प्रयास काफी नहीं है सखियो, और इसमें हम सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पौधों की देखभाल करें, पानी की बचत करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और अपने आस पास स्वच्छता बनाए रखें। स्कूल, परिवार और हम मिलकर पर्यावरण संरक्षण के छोटे छोटे प्रयासों को बड़े बदलाव में बदल सकते हैं सखियों। याद रखिए सखियों कि हर पेड़ केवल एक पौधा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन की उम्मीद है, प्रकृति की रक्षा है। प्रकृति की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। तो आइए आज हम भी संकल्प लें कि सभी पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, हरित भारत का सपना सजाएंगे, क्योंकि जहां हरियाली होगी वहां खुशहाली होगी। बिल्कुल सखियो, खुशहाली तभी होगी जब हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, जी हाँ, सफलता के नए आयाम रच पाएंगे और कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो किसी के लिए प्रेरणा का सबक बन जाए। आज मेरी उड़ान क्रम में हमारे साथ हैं एक ऐसी सखी जिन्होंने खेल जगत में अपना नाम कमाया और आज उसी के दम पर अपनी आजीविका भी चला रही हैं। आइए मिलते हैं खेल प्रशिक्षिका अनु झारिया से अपने क्रम मेरी उड़ान में।

0: सखियों आज के क्रम मेरी उड़ान में मेरे साथ हैं खेल प्रशिक्षिका या कहूँ गेम्स टीचर अन्नू झारिया। ये एक प्रतिष्ठित संस्थान में बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण देती हैं। बतौर गेम्स टीचर सफल और आत्मनिर्भर हैं। आइए मिलते हैं अन्नू झारिया से और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मेरी उड़ान में। सबसे पहले अनु जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका रुझान इस फील्ड में कैसे आया।
1: धन्यवाद शालिनी जी, मुझे आपने मेरे बारे में बताने का मौका दिया। जैसे कि बच्चे बूढ़े सभी को ही खेलों में इंटरेस्ट होता है, उसी प्रकार मुझे भी खेलों में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने गेम्स में जाने का फैसला किया और मैं 8 साल की एज से जिमनास्टिक खेलने लगी थी। मेरे सर है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज मैं एक स्पोर्ट टीचर भी बनी हूँ और एक अच्छा प्लेयर बनी हूँ।
0: अनु जी, आप हमारी सखियों को ये बताइए कि आप किस प्रकार के खेल में आप माहिर हैं और आपका पसंदीदा खेल कौन सा है।
1: मेरा फेवरेट गेम जिमनास्टिक है, जिसमें मैंने बहुत नेशनल भी खेला है, स्टेट लेवल चैंपियन रह चुकी हूँ। मैं 8 साल की एज से इस गेम को खेल रही हूँ। मैंने इसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल, ओपन्स नेशनल, वुमेन्स नेशनल, सभी नेशनल खेल चुकी हूँ मैं, और ये सब मैंने जिमनास्टिक में ही अचीव किया है। और जिमनास्टिक एक ऐसा गेम है जिसमें 4 अपरेटस होते हैं, 4 अपरेटस गर्ल्स के लिए होते हैं, 6 अपरेटस बॉयज के लिए होते हैं। जिमनास्टिक वैसे तो एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वाला गेम है, जिसे मतलब कम एज से आप स्टार्ट करते हो तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत होती है। बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा तभी आप जिमनास्टिक कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपके अंदर बहुत पावर, स्टेमिना और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिमनास्टिक गेम बहुत रिस्की भी होता है। इसमें स्टंट करने के साथ साथ चोट लगने का भी डर रहता है। आपका माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ भी स्टंट करते हैं या फिर कुछ जंप करते हैं तो उसमें आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे मूव करना है।
0: बहुत सही बात कही अनु जी। देखिए, जब हम

0: अपने शरीर में तालमेल बिठाना सीख जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो काम बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात बोल रही हैं आप। और भी हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारी कोई सखी आपकी तरह गेम्स टीचर या ट्रेनर बनना चाहती है तो उसे क्या करना होगा?
1: सबसे पहले तो शालिनी जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस फील्ड में बहुत मेहनत है और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तक खुद से इंटरेस्टेड नहीं होगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही।
1: इसीलिए मतलब जैसे इसको आपने जैसे पहले कभी कोई गेम में आपका इंटरेस्ट हो या फिर आपने कुछ गेम खेल रखे हो या जिस गेम के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, जानकारियाँ हो, तो उस गेम में आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे BPED होता है, BPED कोर्स है जिसको करने से आपको है ना तो स्पोर्ट्स के हर गेम के बारे में नॉलेज मिलती है। मेन गेम जैसे आपका कुछ भी हुआ, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, जिम्नास्टिक क्यों ना हुआ।
0: बहुत बढ़िया अनु जी, आपने हमारी सखियों को इतने सारे कोर्सेज के बारे में बताया जिनकी वजह से वो आगे चलकर एक अच्छी ट्रेनर या गेम्स टीचर बन सकती हैं। अब मैं आगे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गेम्स की फील्ड में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं तो क्या हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं?
1: क्यों नहीं शालिनी जी, छोटे से लेवल से भी आप इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। और हम सब मिलकर एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, थोड़े बहुत बच्चों से स्टार्टिंग होती है, भले से 4 बच्चे आ रहे 2 बच्चे आ रहे, धीरे धीरे वो चीज़ चल के बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: और धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जैसे कि हर स्कूलों में स्पोर्ट टीचर की डिमांड, सभी को मतलब खेलों में अब रुचि आने लगी है, बच्चों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा खेलों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि आपकी धीरे धीरे करके अर्निंग शुरू होने लग जाएगी और आप इसमें माहिर हो जाएंगे।
0: तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि खेल हमें स्वस्थ तो रखते ही हैं, साथ ही साथ हमारी जेब को भी हरा भरा रखते हैं ना। आखिर में आप हमारी सखियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: अब मैं सखियों से यह कहना चाहूँगी कि अब वो समय नहीं रहा है जब कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब। अब वह समय है, जितना महत्व पढ़ाई का है उतना महत्व खेलों का भी है। अब आप भी चुप मत रहिए, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारिए और आप भी अगर किसी गेम में रुचि रखती है या इंटरेस्टेड है तो आगे बढ़िए।
0: बहुत अच्छी बातें कही अनु जी ने हमारी सखियों से। हम भी चाहेंगे कि सखियां अपने अरमानों को, अपने सपनों को पूरा करें, चाहे तो गेम्स टीचर के रूप में। अनु जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

सखियो, अभी हम सुन रहे थे क्रम मेरी उड़ान और हमारे साथ थी खेल प्रशिक्षिका अन्नू झारिया, और अब आनंद लीजिए इस प्यारे से मधुर गीत का।

वर्णि की ओर और देखिए ना, मौसम के इस बदलते रुख का असर हमारे सिर से लेके पैर तक हो जाता है और इससे जन्म लेती है टैनिंग की समस्या। बारिश के बाद निकलने वाली तेज धूप हमें टैनिंग दे जाती है।

साफ कर ले, इससे आपका जो कालापन है ना माथे का वो दूर हो जाएगा। एक कटोरी में आधा चम्मच हल्दी लें, कच्चा दूध मिलाकर माथे और हाथ पैरों में लगाकर सूखने दें। बाद में साफ ताजे पानी से धो लें। धीरे धीरे माथे और हाथ पैरों का जो कालापन है ना सखियो वो दूर हो जाएगा। कच्चे दूध में गुलाब जल मिलाकर भी लगा सकती हैं, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो रंगत सुधारता है। एक चम्मच शहद में अगर हम आधा चम्मच नींबू का रस मिला लेते हैं और उंगलियों की मदद से चेहरे और हाथ पैरों पर लगाते हैं तो ये जो है वो ब्लीच का काम करेगा, जो मैल को तो हटाएंगे ही साथ ही स्किन टोन को भी सुधारेंगे। अगर सखियो आपके पास नारियल का तेल है तो नारियल तेल में बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल मिलाकर चेहरे पर मालिश करें और इसे धो लें। इसका अच्छा असर हमें देखने को मिलता है और साथ ही अगर चेहरे पर पिगमेंटेशन हो गए हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। खीरे के रस में नींबू का रस मिलाएं और इसे कॉटन की मदद से चेहरे हाथ पैरों में लगाएं, लगभग 15 मिनट बाद धो लें, इससे भी चेहरे की रंगत सुधरती है। इसके अलावा एक चम्मच बादाम का तेल, शहद, दूध पाउडर मिलाएं और पेस्ट को लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें, फिर आप इसे धो लें। इससे आपके चेहरे की चमक भी बढ़ेगी साथ ही टैनिंग भी दूर होगी। एक और नुस्खा है जो अक्सर हमारी सखियां करती हैं, मध्यम आकार का आलू काट लें और इसका रस निकाल लें, दही, बेसन, नींबू का रस और शहद मिलाएं और इस मास्क को लगभग आधे घंटे तक हाथ व पैरों पर लगाएं। इसके अलावा पैरों के लिए कांच की कटोरी में टूथपेस्ट, बेकिंग पाउडर, नींबू का रस मिलाकर इस मिक्स को पैरों पर लगाएं, जिससे पैरों की टैनिंग भी दूर होगी, पैरों का कालापन भी दूर होगा। इन छोटे छोटे घरेलू उपायों को अपना कर सकियो आप हर मौसम में टैनिंग से बच सकती हैं। अब सजने सवरने सौंदर्य की बातों के अलावा बारी आ जाती है हमारी पेट पूजा की। जी हाँ, आज के फूड जोन में हम बात करेंगे बच्चों और बड़ों की पसंदीदा सेजवान चटनी की, जिसे आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। लगभग 500 ग्राम सेजवान चटनी बनाने की सामग्री मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको सूखी लाल मिर्च 15 से 20, जो की कश्मीरी और तीखी मिली जुली हो, बारीक कटा हुआ लहसुन आधा कप, बारीक कटा हुआ अदरक आधा कप, तेल लगभग आधा कप, सोया सॉस 2 बड़े चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 बड़ा चम्मच, शक्कर 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। सबसे पहले सखियों, दोनों तरह की लाल मिर्च को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दें। अब इन्हें बारीक पीसकर पेस्ट बना लें। कढ़ाई में तेल गरम करें, लहसुन और अदरक को गुलाबी होने तक भून लें सखियों। इसमें मिर्च का पेस्ट मिलाएं और धीमी आंच पर तेल अलग होने तक पकाते रहें। अब इसके बाद सोया सॉस, सिरका, शक्कर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएं और अंत में काली मिर्च का पाउडर डाल दें। चटनी जब तैयार हो जाए इसे ठंडा करें और जार में भरकर फ्रिज में रख लें। इस चटनी को आप लगभग 1 महीने तक स्टोर कर सकती हैं सखियो। देखिए ना कितनी आसानी से तैयार हो गई सेजवान चटनी। और हाँ सखियो, अब चटपटी चटनी के बाद हो जाए एक प्यारा सा मीठा मीठा गीत।

सखियो, अब बारी है कुछ काम की बात। आज हम बात करेंगे बचत में मदद करेगी आपको ऑटो स्वीप योजना। सखियो, अमूमन हम बैंक में अपना धन बचत खाते में सुरक्षित रख देते हैं और बैंक आमतौर पर 4% ब्याज देता है जो कि नाकाफी लगता है। ऐसे में बैंक हमें एक ऐसी सुविधा भी देता है जिसके जरिए आप बचत खाते से सरप्लस फंड और इससे ज्यादा ब्याज कमा सकती हैं। ये सुविधा है ऑटो स्वीप सेवा। इसकी मदद से आप एक ही बैंक अकाउंट में बचत खाते और FD दोनों के फायदे ले सकती हैं। सखियो, ऑटो स्वीप योजना के लिए बैंक से संपर्क करना होगा। इसे बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी जांच सकती हैं। हर बैंक ऑटो स्वीप सेवा अलग अलग नामों से जानी जाती है। इस सेवा को चालू कराने के बाद पूंजी की एक सीमा तय करनी होगी, यानी आपको बैंक को बताना होगा कि आप बचत खाते में कितनी राशि चाहते हैं। इसके फायदे ये हैं सखियो कि हमें बार बार बैंक जाकर या ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी और इसकी जो लंबी प्रक्रिया है इसके झंझट से भी हम बच जाएंगे। पैसे खुद ब खुद FD खाते में ट्रांसफर होते रहेंगे। पैसे सुरक्षित रखने के लिए आपको अलग से खाता खुलवाने की जरूरत भी नहीं है। सखियो, ऑटो स्वीप में आप FD से पैसा निकाल भी सकते हैं और समय भी निश्चित नहीं है। तो सखियो, इस तरह बचत खाते को हम FD में स्वीप कर सकते हैं और इस योजना का लाभ लेकर अपनी बचत का दायरा बढ़ा सकते हैं और साथ ही असुविधा से भी बच सकते हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी जिसका लाभ हम सबको लेना चाहिए सखियो। लेकिन अब चलने का समय हो रहा है सखियो। बस यही कहेंगे सखियो कि न दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं, न पास रहने से रिश्ते जुड़ जाते हैं। ये तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और भी मजबूत हो जाते हैं। तो सखियो, हम मिलते रहेंगे इसी तरह कार्यक्रम के माध्यम से। स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार और अब दे अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी को। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो, कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
5: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सपना सिसोदिया के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सपना सिसोदिया के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए योगेश दुबे के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे योगेश दुबे के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ गीत नहीं गाती, वो मौसम बदल देती हैं, यादों को रंग देती हैं और खामोशियों में भी धुन भर देती हैं। आशा भोंसले की आवाज भी एक ऐसी ही आवाज है, कभी शोक हवा की तरह चंचल, कभी रेशमी शाम की तरह नर्म, तो कभी दिल की धड़कनों पर थिरकती हुई। उनके गीतों ने प्रेम को शोखी शरारत दी, उदासी को अपना संगीत और जिंदगी को मुस्कुराने का एक बहाना दिया। आज उस आवाज के जन्म लेने का दिन है। जी हाँ, आज आशा जी का जन्मदिन है। फिल्म संगीत के इस छोटे से सफर में आइए हम उन्हें याद करते चलें।

श्रोताओं, कुछ कलाकार समय के साथ चलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो समय को अपने साथ चलना सिखा देते हैं। आशा भोसले उसी दूसरी श्रेणी का नाम है। उन्होंने संगीत को कभी एक ही रंग में नहीं देखा। शास्त्रीयता से लेकर पॉप तक, गजल से लेकर फिल्मी गीतों तक, लोक की मिट्टी से लेकर आधुनिक प्रयोगों तक, हर नई राह पर उन्होंने अपने लिए एक नई पहचान रची। उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि उन्होंने उम्र को कभी अपनी कला की सीमा नहीं बनने दिया। हर दौर के संगीत को अपनाया, नए प्रयोग किए और हर पीढ़ी से एक रिश्ता बनाया।

घटित था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रतापनगर और टांडा रोड के बीच नई यात्री ट्रेन सेवा सहित अन्य ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में भारत रेल कोच, मेट्रो कोच और रेल इंजन निर्माण का बड़ा केंद्र बना है। 2014 के बाद से अब तक करीब 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रेल बजट 2,75,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिससे रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं।
1: इस वर्ष का रेल बजट 2,75,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ये 12 वर्ष पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। यानी रेलवे के आधुनिकीकरण पर हो रहा खर्च हजारों हजार नए रोजगार बना रहा है। और ये रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान तो बनता ही है। एक बार रोड, रेल, पाइपलाइन, पोर्ट, एयरपोर्ट बन गया तो फिर उसके आसपास नए उद्योग लगना शुरू हो जाते, नए बिजनेस आते हैं, ये फिर नए रोजगार बनाते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दुबई प्रवास के तीसरे दिन आज शारजाह चैम्बर बीआर और एमआर के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री यूएई के प्रमुख उद्यमियों और निवेशकों से 1-to-1 संवाद कर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने कहा कि ऐसे निर्देश को अंतरिम चरण पर जारी नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि ऐसे मामले पर एक अन्य जनहित याचिका पर कल सुनवाई की गई थी। प्रदेश में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों ने कमला पार्क की सड़क पर धरना देकर रास्ता जाम किया है, जबकि इंदौर समेत कई शहरों में भी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ओपीडी और ओटी का बहिष्कार किया गया है। वहीं इंदौर के एमवाई अस्पताल में भी इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध जताया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों और इंटर्न डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। प्रदेश में अब तक औसतन 31.1 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य बारिश से करीब 2 इंच कम है। प्रदेश में सीजन की 83.5% बारिश हो चुकी है। भोपाल समेत 12 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि 31 जिले अभी भी सामान्य से पीछे हैं। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार 11 सितंबर तक रीवा और शहडोल संभाग में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा में शासकीय आईटीआई ने पिछले 10 वर्षों में पहली बार 100% प्रवेश लक्ष्य हासिल किया है। आगरमालवा के शासकीय नेहरू कॉलेज में विद्यार्थियों ने मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं तैयार कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर ने देश भर में 3रा स्थान हासिल किया है और शहर का AQI 77 दर्ज किया गया। नर्मदापुरम में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए कैंप आयोजित किया जा रहा है। जबलपुर में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में

0: क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा

0: उन्होंने गुजरात सरकार की 2600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए एआई सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। जीएफएफ वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। जीएफएफ 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ में इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
3: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर

0: इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
1: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहा सुनी हुई शोर शराबे के ऊपर, उसके बाद वो कहा सुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
3: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, दोपहर का ये समय, अगर आप अपने रोजगार में हैं तो कुछ रफ्तार लिया हुआ दिन, और अगर घर में हैं तो कुछ थमा थमा सा दिन। तो इस तेजी और इस सुस्ती के बीच हम आपकी जिंदगी में घोलने जा रहे हैं सुरों का रंग, और सुर भी वो जो आपकी पसंद के हैं। जी हाँ, आपकी फरमाइश के कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं। लेकिन आप जानना चाह रहे होंगे कि चिट्ठियाँ किनकी शामिल हो रही हैं, तो चलिए सबसे पहले तो ये बता दूँ कि जो पहला गीत है वो किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में है। नीरज ने इस गीत को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने। और अब बारी फरमाइशी नामों की। ये खत आया हुआ है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा का। दिल्ली शहर से इसी गीत को पसंद करते हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। और अगला ख़त मैं उठा रही हूँ पालदा नाका इंदौर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। तो आप सब की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। सिमट आई जिसमें कायनात सारी, वो साथ है तेरा, तेरे साथ से भला बढ़कर क्या चाहत हो मेरी।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना। अब आइए आपकी फरमाइश के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो गीत है वो हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। धामड़ी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत डेरे, ये खत आया हुआ है ग्राम अमूना, तहसील टोकखुर्द, जिला देवास से। लिखने वाले श्रोता हैं बबलू मालवीय और उनके पिता अनोखी लाल मालवीय, और इसी गीत को पसंद करते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से। श्रोताओं के नाम हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं तलाश फिल्म का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया है SD बर्मन ने। सौ सौ उम्मीदें बंधती हैं एक एक निगाह पर, मुझको न ऐसे प्यार से कोई देखा करे।

आपकी फरमाइश पर कुछ फिल्मी गीत हम आप तक भेज रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और ये खत आया हुआ है गोला बाजार बक्सर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं आरजू फिल्म में मोहम्मद रफ़ी को। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। मुस्कुराहट का अपनी असर देख लो, दिल का गुंचा खिला है तुम्हारी तरह।

आपकी फरमाइश का अगला गीत तीन देवियां फिल्म से हमने लिया है। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार SD बर्मन। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। और ये खत आया है मानूरा वाशिम से। लिखने वाले श्रोता हैं ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति गिरी, तेजस, प्रणिता, शैलेश, सोनम और धनुषपुरी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं तीन देवियां फिल्म का ये नगमा। कह रही हैं जो आपकी नजरें, हम समझते हैं आप कहें ना कहें।

लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, एक खूबसूरत सा सवाल जिसका जवाब दोनों को मालूम है। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं पड़ोसन फिल्म से। इसके लिए आवाज़ें लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों की हैं, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना आरडी बर्मन की और अनुरोध आप सबका है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, राही सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहाणकर, प्रणीता गवहाणकर, अर्जुन गवहाणकर टुक टुक और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाणकर, सुमित गवहाणकर और ध्वनि गवहाणकर परी। नई सी चाल है जिंदगी की इन दिनों, साथ इसके देखें दिल पहुंचता है किधर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश, आयुष, आयुषी और सानवी। ग्राम सनोतिया, जिला गुना से मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार और हिमांशु। कवाईबारा, राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। और दतरेंगी से भागवत वर्मा। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं आराधना फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। एक हुजूम में दिखा जो चेहरा अचानक एक झलक, दिल ने कहा मेरा ख्वाब यही मेरी हकीकत।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रतापनगर और टांडा रोड के बीच नई यात्री ट्रेन सेवा सहित अन्य ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई प्रवास के तीसरे दिन आज शारजा चैम्बर बीआर और एमआर के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री यूएई के प्रमुख उद्यमियों और निवेशकों से 1-to-1 संवाद कर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों ने कमला पार्क की सड़क पर धरना देकर रास्ता जाम किया है, जबकि इंदौर समेत कई शहरों में भी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल

0: तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। और मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार 11 सितंबर तक रीवा और शहडोल संभाग में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। बाकी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30, रात 8:15 और रात 10:00। शाम 6:00 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। रात 9:30 पर हम पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम कहकशां। इसमें आज सुनिए कव्वालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिले समा। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे गुलाम कदीर खां का ख्याल गायन राग केदार। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:25 पर आप सुनेंगे बुंदेली समाचार। और किसान भाइयों के लिए किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:30 पर। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर अनिल मुरलीधर बिसेन के साथ की गई भेंटवार्ता, ग्रामीण स्वरोजगार के लिए जरूरी कौशल दिवस। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, OTT वेब्स और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5:00 अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए सपना सिसोदिया के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सपना सिसोदिया के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम कुछ भक्ति रचनाएं आपको सुनवाने जा रहे हैं। कलाकार हैं योगेश दुबे। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे योगेश दुबे के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में कुछ गीत। पहला गीत मेरे सनम फिल्म से और उसके बाद आप सुनेंगे किस्मत फिल्म का गीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विभिन्न भाषाओं, विधाओं और सिनेमाई रूपों में विविधताओं का प्रतीक हैं। मंत्रालय ने कहा कि आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में VFS ग्लोबल के वैश्विक प्रमुख अमित साइचर के साथ बैठक कर मध्य प्रदेश में वीजा सेवाओं के विस्तार, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की। प्रदेश में MBBS इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों ने कमला पार्क की सड़क पर धरना देकर रास्ता जाम किया है, जबकि इंदौर समेत कई शहरों में भी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज अहमदाबाद में आयोजित 2026 विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष युगल के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला का खिताब अपने नाम किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वार्ता वेदों में प्रकृति प्रेम। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रभु दयाल मिश्र और इसके बाद आप सुनेंगे काव्य पाठ संतोष श्रीवास्तव से। तो आइए पहले सुनते हैं डॉक्टर प्रभु दयाल मिश्र की वार्ता वेदों में प्रकृति प्रेम।
1: अथर्वेद में एक मंत्र आता है, पश्यदेवस्य काव्यम न ममार न जीर्यते, अर्थात यह सृष्टि देव का काव्य है, ईश्वर की कविता है और एक ऐसी कविता है जो न कभी जीर्ण होती है न कभी इसका अंत होता है। इससे हमने यह संकेत लिया और यह हमें जान लेना चाहिए कि वेद काव्य है, सनातन काव्य है, एक ऐसा काव्य जिसमें प्रकृति से प्रेम भरा हुआ है। संक्षेप में इस पर हम विचार करते हैं, तीन धरातल हैं हमारे विचार के, आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक। वेदों को समझने के लिए इन तीनों दृष्टियों की आवश्यकता है। हम और हमारा संसार जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हम कहेंगे हम और हमारा संसार द्वैत से अद्वैत की प्रयाण गाथा है, हमारे ज्ञान का सारा अनुभव द्वैत से अद्वैत की ही महायात्रा है। जीव और विषय का यह द्वैत, जहाँ दर्शन में पुरुष और प्रकृति है तो व्यवहार में वही व्यक्ति और पदार्थ है। जहाँ व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति इस द्वैत को भोग के द्वारा विसर्जित करने की चेष्टा रहती है, वहीं दार्शनिक धरातल पर इसे दृष्टाभाव से स्वीकार कर मिथ्या भेद का अतिक्रमण किया जाता है। ऋग्वेद मंडल 1 की सूक्त 164 का यह बहुत प्रसिद्ध मंत्र इसी तथ्य को प्रकट करता है, द्वा सुपर्णा सहजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्लम स्वादवत्यत अन्यो अभि चाक्षीति, अर्थात मित्र दो पक्षी एक तरु शाखा बैठे परस्पर प्रीतिपूर्वक, चख रहा फल स्वाद पूर्वक एक पर दूसरा है देखता केवल बिना खाए उसे। यह दृष्टा और भोक्ता भाव का जो भेद बताता है मंत्र, उससे यह संकेत प्राप्त कर सकते हैं कि आध्यात्मिक जो दृष्टि होती है वो एक दृष्टा की दृष्टि होती है। वास्तव में वेद अपनी परिपूर्णता में तीनों ही आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक दृष्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वेद कर्षि सत्य का आत्यंतिक दृष्टा है। परमात्मा की परा प्रकृति द्वारा धारण किया गया है संसार, जितना बाहर प्रतीत हो रहा है उतना ही वह उसके भीतर भी बैठा हुआ है। गीता के 15वें अध्याय के श्लोक प्रथम में इसीलिए इसे ऊर्ध्वमूल मदाशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्यम अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। प्रकृति के अध्यात्म पक्ष को प्रवर्तित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय सूत्र, पुरुष सूक्त ऋग्वेद 10:90, हिरण्यगर्भ 10:181, नासदी सूक्त 10:129 में भी देखे जा सकते हैं। सृष्टि के आदि में था हिरण्यगर्भ ही केवल, जो सभी प्रकट प्राणियों का प्रकट अधीश्वर था, वही धारण करता था पृथ्वी और अंतरिक्ष, आओ उस देव की हम उपासना करें हवि से। पुरुष सूक्त में सृष्टि के यज्ञ प्रक्रिया से विकास का वर्णन करते हुए कहा गया है, यज्ञ से ही अश्वत्थ पैदा हुए, दांत दोनों ओर जिनके, और पैदा हुई गायें बकरियां भेड़ें व्याघ भी। आदिदैविक दृष्टि से देखने पर हमें पता चलता है कि वेद में ऐसे देवताओं की भरमार है जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आकाश, आकाश के परे और पृथ्वी स्थानीय हैं, इंद्र, अग्नि, वायु, पर्जन्य, अश्विनी कुमार, सोम, बृहस्पति, सूर्य, उषा, विष्णु, रुद्र, मरुत, वरुण आदि अनेक देवता हैं।

0: ये देवता उन सभी विभूतियों के स्वामी हैं जो मनुष्य को अभिप्रेत हैं। सूर्य से इसीलिए दृष्टि, चंद्रमा से मन, चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत, सूरज नेत्र से उपजा और मुख से अग्निज्वाला, स्रोत्र उसके हुए कारण पवन के भी प्राण के भी, पुरुषोक्त 10:90-13 मंत्र। इससे यही प्रकट होता है कि हमारी इंद्रियों की ऊर्जा इन्हीं देवताओं के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। सभी लौकिक समृद्धि के कारण और उपादान ये देवता ही हैं। श्री सूक्त का ऋषि इसीलिए अग्नि से प्रार्थना करता है, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण शत्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावय, हे जात वेद अग्नि आप लक्ष्मी जी को हमारे निकट लाइए। वास्तव में इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष प्रकृति का वह रागात्मक प्रेम है जिससे वेद का ऋषि तादात्मीकृत होता है। इस संबंध में वेद का ऋषि नदी, पृथ्वी, पर्जन्य, सूर्य, मंडूक, मरुत, शुनि, शर्मा आदि से सीधा संवाद करता है। उग्र वेग से बहती हुई व्यास और सतलज नदियाँ जब विश्वामित्र का विनत अनुरोध सुनती हैं तो वे कह उठती हैं, कभी विस्मृत नहीं हो संवाद अपना प्रार्थनामय, यह अमर आलेख भावी युग शिला पर कभी भी न हो अनादर हमारा जग में, नमन स्वीकारो सुहृद शिल्पी ऋचाओं के, ऋग्वेद 3:33-8। नदियाँ इतनी प्रभावित हैं कि वे विश्वामित्र को सुगमता से उन्हें पार करने को न केवल मार्ग दे देती हैं बल्कि वे यह भी परामर्श दे जाती हैं कि वे आगे नहरें बनकर राष्ट्र को हरा भरा बनाने के लिए खेतों तक भी पहुंचना चाहती हैं। वेद के प्रकृति प्रेम का प्रकर्ष अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है। अथर्ववेद में जिस देव काव्य का दर्शन कराया गया है वह विश्व की सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ कविताओं में अत्यंत मनोहारी रूप में प्रकट हुआ है। इन मंत्रों पर दृष्टिपात करते हुए श्री अरविंदो की परंपरा के महान वेद विश्लेषक श्री अनिर्वाण का कहना है, ऐसा लगता है कि पर्दे की ओर से ऋषि की आंखों के सामने एक महिमावी अपरूपा अथवा अद्भुत स्वरूपा का आविर्भाव हुआ है। सचमुच यह तो वही है, हे पृथ्वी तुम वहन करती हो पर्वतों की आच्छिन्नता, ओ निर्झरवती तुम भूमि को अपनी महिमा से करती हो स्फुरित स्पंदित, हे महिमामयी पर्वतों के तरंगायन में विपुल पृथ्वी की अब्रभेदी उत्तुंगता उनकी दिव्य महिमा को हमारी आंखों के सामने उजागर करती हो, आदित्य जब उत्तरायण में चरम बिंदु पर होते हैं और जब द्योलोक में ज्योति का महाप्लावन होता है तब पृथ्वी के शिखर पर मेघमालाओं का शैल समारोह शुरू होता है, प्रथम वर्षण की अविराम बौछारों और फुहारों से लगता है द्योलोक की ज्योति नहीं पार्वती के अंग अंग में अनगिनत निर्झरों की मुक्त धाराओं द्वारा चिन्मय प्राण उड़ेल दिया है, उसकी छुवन से यहाँ इस मृणमयी भूमि के अणु अणु में श्यामल प्राण पुलकित हो उठा है, भूलोक की उच्छित उदात्त आकांक्षा में द्योलोक की ज्योति की महिमा निशिक्त हुई, द्यावा पृथ्वी तब एकाकार हो गई, पृथ्वी दिव्य दिव्य आवेश में कमला हो गई। वेद मीमांसा तृतीय खंड पृष्ठ 961। अथर्ववेद के कांड 10:7 सूक्त जिसे स्कंभ सूक्त कहा गया है के मंत्र 42 में रात और दिन को श्याम गौर दो युवतियों की संज्ञा दी गई है। छवि विरोधी युवतियां जो दिन प्रभा रजनी छिरुत की खूंटियों पर वर्ष का ताना बुन रही हैं चल सतत। सांख्य दर्शन के अनुसार महाभूत पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। यह गंध मनुष्य का आकर्षण, उसकी औषधि और भूमि द्वारा उसे प्रदत्त ऐसा उपहार है जो न केवल मनुष्य को एक मनुष्य अपितु सभी जीवधारियों को जोड़ देने का एक महासेतु भी है। पृथ्वी सूक्त के मंत्र 23 में ऋषि ने इसी अद्भुत भाव को प्रकट किया है, यस्ते गंधा पृथ्वी संबभूव यम विभृत्योषधा मापा यम गंधर्वा अप्सरश्च भेजरे तेन माम सुरभिम कृणुमानो दीक्षत कश्चिन। गंध तेरी भूमि जिससे आचमन करते वनस्पति जल, अप्सरा गंधर्व जिसको धारते हैं वह करे सुरभित हमें भी, द्वेष रत्न कहीं कोई कभी हो हमसे। अर्थात जिस पृथ्वी ने ऐसी गंध दी जिसे औषधियाँ जल सूर्य अप्सरा आदि धार कर सुख भोगते हैं वह हम मनुष्यों में भी परस्पर प्रेम और सौहार्द का आधार बने। यह गंध प्रकृति का शाश्वत श्रृंगार है, यह कमल में है, वायु में है और देवता इसके दैवी समारोहों में संलेप किया करते हैं। सत्य तो यह है गंध जो पृथ्वी तुम्हारी पुरुष में है, गंध जो पृथ्वी तुम्हारी पुरुष में है और नारी में परस्पर कांति शोभा। अश्वमृग हाथी सुकन्या आदि का वर्चस, अश्वमृग हाथी सुकन्या आदि का वर्चस वह करे सुरभित हमें भी, द्वेष रत्न कहीं कोई कभी हो हमसे। एक प्रकार से श्री कृष्ण ने जिस तरह संभाव की स्थापना में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता संदर्शिना, वैदिक ऋषि संचेतना के धरातल पर इसी सनातन सत्य को प्रतिष्ठित कर रहा है। जैसा कि कालांतर में महाभारतकार वेदव्यास ने कहा कि परिपीड़नम ही महापाप है, और तुलसी ने कहा कि परिपीड़ासम नहीं अधमाई, वेद का ऋषि इस अधमता से पग पग पर मुक्ति चाहता है। भूमि चलते कभी बैठे खड़े, वाम दक्षिण चरण से दिग्गमन करते, प्रार्थना यह हमारी है भूमि हमसे दुखी ना हो कोई कभी। श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी ने अथर्ववेद के सूक्तों की काव्यानुवाद पुस्तक अथर्ववेद का काव्य इस संबंध में लिखी है, और एक बड़ी सटीक टिप्पणी उन्होंने की, विराट तत्व की अनुभूति, कालचक्र के आवर्तन विवर्तन, मातृभूमि के प्रति अकुंठ भक्ति, कल्याण कामना तथा जीवन मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति पृथ्वी सूक्त में की गई है। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को ऋषियों की समर्थ वाणी ने यहाँ प्रकट किया है। दुनिया के प्रसिद्ध पराभौतिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नील डिग्रास से टाइम मैगजीन की ओर से पूछा गया कि उनके जीवन भर के शोध के दौरान उन्हें सबसे बड़ा आश्चर्य क्या मिला, तो उनका कहना था कि जब उन्हें यह समझ आया कि मनुष्य संसार में नहीं है बल्कि संसार भी उसमें उतने ही गहरे बैठा हुआ है जितना कि वह संसार में है, इस तरह मनुष्य के ब्रह्मांड से अटूट संबंधता ने उन्हें सर्वाधिक चमत्कृत किया। मैं नहीं समझता पराभौतिकी के इस सत्य को वेद ने पूरी प्रामाणिकता से इस प्रकार प्रकट कर दिया है।
1: वेदों में प्रकृति प्रेम, अभी आप डॉक्टर प्रभुदयाल मिश्र की ये वार्ता सुन रहे थे, और अब हम आपको सुनवाते हैं संतोष श्रीवास्तव का काव्य पाठ।
2: अतीत का ठहरा ताल, न जाने कहाँ से रोज आ जाती हैं केसर के बैंजनी फूल लिए रातों की तन्हाई में लल्लेश्वरी की वाखें। अतीत का ठहरा बेरुखा ताल तब नहीं रिझाता था, कैसा गुजर जाता था राह के किनारे किनारे हमारे सपनों की पोटली का प्रतिबिंब लिए। प्रेम की पराकाष्ठा में आहुति बनी हाड़ी रानी का दर्द लिए दूर चट्टानों से सट कर बैठा है सर्द रातों में अलाव, ठिठक जाते हैं राहगीर, ठिठक जाते हैं राहगीर पुरवा के झोंके में शाकुंतलम का पन्ना फड़फड़ा कर ताल की सतह पर खिले कमल और कुमुदनी को थरथरा जाता था कि फिर न दोहरा दी जाए असफल प्रेम कहानी। केसर के परागों में अब नफरत पनप रही है, अलाव की आग में झुलसे जा रहे हैं प्रेम के असंख्य बीज। ताल ठहर चुका है, ताल ठहर चुका है सतह से तलहटी तक वीरान चुप में समाया। टूटे कांच में आकृतियां बिन रंग कूची कैनवस के वह रच डालता है सुरम्य बालू के तट पर आकृतियां, बिन रंग कूची कैनवस के वह रच डालता है सुरम्य बालू के तट पर आकृतियां, दोनों हाथों से बालू बटोर बनाता है जानी पहचानी आकृतियां जिनमें सुख बुगाता है प्रेम विश्वास समर्पण श्रद्धा, जीवंत होते हैं राधा कृष्ण शिव पार्वती बुद्ध गांधी हीर रांझा दोना पाउला और उसके कांच से सपने जो आकृतियों पर फेंके सैलानियों के सिक्कों से होकर पेट तक पहुंचते हैं। उसके हुनर से बड़ी है पेट की दुनिया, डरता है वह समंदर के ज्वार से बरसात से और सूने पड़े तट से कि लहरें अपनी कठोर बाहों में समो लेती हैं आकृतियां। वह देखता है सपनों के टूटे कांच में आकृतियों की टूटन, सहता है दर्द देर तलक, ऐसा अक्सर होता है। मोह अमर बेल सा, मोह अमर बेल सा छा जाता है जीवन वृक्ष पर, परजीवी मोह सोख लेता है सारी शक्ति सारी ऊर्जा। मोह अमर बेल सा छा जाता है जीवन वृक्ष पर, परजीवी मोह सोख लेता है सारी शक्ति सारी ऊर्जा, उजालों में अंधेरे के बीज बोता, ज्वार भाटे के गणित में समुद्र की तलहटी तक लहरों को भींचता, नष्ट कर डालता है विवेक के कोमल तंतु, तीक्ष्ण उद्वेगों से उबर कहाँ पाता है जीव, कितने वितानों में रच डालता है मोह, सातों भावनाएं, प्रेम के सातों रंग, संगीत के सातों सुर, सात समंदर पार का तिलस्मी जाल, फिर कहीं से धर जाता है हथेली पर क्षीण जर्जर धागे जिनसे जीवन के पैबंदों की तुरपाई नहीं हो सकती, कर जाता है मोह कितना असहाय, जबकि फिसल जाता है जीवन उम्र को पोर पोर छीलता। आँखें बायोस्कोप होती हैं, आँखें बायोस्कोप होती हैं, आँखों में होता है सपनों का संसार, अरमानों का गहरा समंदर, थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ी सी बेकरारी, हंसते हुए जज्बात, रोती हुई हताशा, एक पूरा का पूरा गांव, एक पूरा का पूरा शहर, बसते हुए इंसान, उजड़ती हुई जिंदगी, मौसम की करवटें, खामोशी से गिरती बर्फ, पहले जादुई फिर खौफनाक, बर्फ से पटते हुए घर और बेताब उम्मीदें, पलकें थाम लेती हैं पूरा का पूरा आकाश, ख्वाबों में उतरता चांद, चांद पिघल जाता है, आंखें टटोलती रह जाती हैं ख्वाबों का कोना कोना, आंखें नहीं जानती क्या क्या दिख जाता है उनमें, चिलमन की गवाही, जैसे ही बाहर आई कठोरता से लड़कर, कांटों पर चलकर हौले हौले पंखुड़ी की चिलमन में जुम्बिश हुई, झांकना चाहा बाहर की दुनिया में, पेड़ के अधीन रहने की परंपरा को तोड़कर उन्मुक्त विस्तार देना चाहा, जबकि वसंत अपने पूरे दांव पेच से सवार था उस पर, हवा भी तो छू छू कर बार बार उसे चिढ़ाती रही, उसके सिकुड़े अधूरे तन को डुलाती रही, पेड़ की रची सीमाओं में चिलमन की चुन्नटें कैद दायरे में कस मसाती रहीं, दूर आसमान में तड़प की ताप से बनी बादलों की बूंदों ने रिमझिम फुहारों की दस्तक दे चिलमन को धरती की ओर झुका दिया, अब सांसें दुश्वार थीं, वह हाँफती अंतिम सांसों में हवा के कंधों पर सवार, चिलमन एक अधखिली कली की गवाही बन धरती पर बिखर गई। मन करता है जिंदगी की पहेली से जूझते जब कभी डूबता सूरज देखती हूँ, जिंदगी की पहेली से जूझते जब कभी डूबता सूरज देखती हूँ, लाल दीवारें हैं जिसकी, सुरमई सलेटी मटमैली सी बुर्जियाँ हैं जिसकी, मन करता है मैं भी जा सकूँ लाल दीवारों में खुलते दरवाजे तक, जहाँ मैं उतार सकूँ अपने दर्द को जूतों की तरह, अपने रत जगों को खूंटी पर टांग सकूँ कपड़ों की तरह, तब मैं धरती आकाश पाताल तक हवा की तरह हल्की हो बहती रह सकूं, थाम सकूं बीहड़ के सन्नाटे, जज्ब हो जाऊं सोखते में गीली संवेदनाओं सहित, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, पहेली के खांचे मजबूत हैं और जिंदगी के इम्तहान बाकी। किताब मेरी तन्हाइयों को समेट लेती है, किताब मुझको खुद में और खुद को मुझ में डुबो लेती है, किताब मेरी तन्हाइयों को समेट लेती है, किताब मुझको खुद में और खुद को मुझ में डुबो लेती है, किताब कभी दिख जाता है पन्नों में दबा कोई गुलाब, कभी दिख जाता है पन्नों में दबा कोई गुलाब, तो यादों के झरोखे खोल देती है किताब, रिश्ता कितना गहरा कितना अपना निभा लेती है किताब, कितनी मुलाकातें कितनी यादें कितनी बातों से जुड़ी रहती है किताब, तभी तो जिंदगी छूट जाने पर भी नहीं छूटती किताब। आखिर क्यों आदम से हव्वा तक सदियों का अंतराल लांघ मेरा और तुम्हारा आज महज एक सवाल, आदम से हव्वा तक सदियों का अंतराल लांघ मेरा और तुम्हारा आज महज एक सवाल, मेरा होना, मेरा होना उम्र के अलाव में धीमे धीमे पकना, दर्द को पाँव से दिल तक दिल से दिमाग तक चीरे जाते हुए सहना, दर्द के ना होने पर खुद को संभाल ना पाना, टूटना तन्हाइयों में सिमट जाना, नींद को बाजू में सुला पलकों को उघाड़े रखना, स्मृतियों की किताब खोल इन सारे सवालों के जवाब ढूंढना, नचिकेता बन यम के द्वार तक पहुंच जाना, जवाब ना पा खंगाल डालना वेद पुराण उपनिषद शास्त्र, जवाब ना पा खंगाल डालना वेद पुराण उपनिषद शास्त्र, विराट को समझ पाने की भूल में बूंद भर अस्तित्व को खोकर तिरोहित हो जाना उस बड़े शून्य में जहाँ पहुँच

0: लपेट रहा था सतरंगी सपनों को कि अचानक कहीं से तीर आकर चीर गया कलेजा, कि अचानक कहीं से तीर आकर चीर गया कलेजा। मौसम ने छल लिया अनुराग को, आह आर्तनाद प्रेम की आहुति, विलाप हा विलाप की रच गया महाकाव्य। प्रेम की आहुति से उपजा नए छंद, नई भावभूमि का पहला महाकाव्य। आह विलाप से या आहुति से कवि की कलम किससे मुखरित हुई, संशय है, था, रहेगा अनंत काल तक। तुम साथ होते हो तो, तुम साथ होते हो तो मैं जान लेती हूँ चोंच में दाना लेकर घोंसले के पास लौटती चिड़िया की अधीरता। तुम साथ होते हो तो मैं जान लेती हूँ चोंच में दाना लेकर घोंसले के पास लौटती चिड़िया की अधीरता। बासी फूलों का झर झर कर लंबी घास में समा जाना और घास के सिरों पर अटकी शबनम का किरणों की छुअन से सतरंगी हो जाना। तुम साथ होते हो तो पूरब और पश्चिम भ्रमित नहीं करते ढलते सूरज और उगते चांद के एक जैसे पथ को। तुम साथ होते हो तो समझ में आ जाती है समंदर की अकुलाहट, बार बार तट से टकराती लहरों की बेचैनी और सीप के खुले मुंह में टपकी स्वाति की बूंद का मोती बन जाने को पल भर थरथराना फिर स्थिर हो जाना। मेरे लिए कहीं कुछ भी नहीं रह जाता जिसे मैं मालूम न कर सकी तुम्हारे साथ होने पर। जंग जारी है, डूबती नाव की तरह मैं जिंदगी के समंदर में ऊबती डूबती रही, कभी कोनों को पकड़कर डूबने से बचती, कभी बेसहारा सी लहरों की मर्जी का शिकार हो जाती। कभी उत्ताल तरंग पर सवार हो विजी हो अपने ही कंधों पर बैठ इठलाती, कभी तेज लहर पाताल तक खींच ले जाती, मैं हाथ पैर मारकर ऊपर आ जाती, मैं हाथ पैर मारकर ऊपर आ जाती। इस जद्दोजहद में कितनी ही बार खुद को टूटा बिखरा पाती, सतह पर शांत बने रहने के लिए मुझे खुद को काट करना पड़ेगा और मुझे काट होने से इनकार है, मेरी जंग अब भी जारी है।
1: आप सुन रहे थे संतोष श्रीवास्तव का काव्य पाठ। इसके साथ ही कार्यक्रम शब्द सागर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला गीत उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में, फिल्म का नाम है जब वी मेट।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए धारावाहिक जमुनिया की 21वीं कड़ी।

0: एपिसोड क्रमांक 20 तक आपने सुना कि जमुनिया पढ़ लिख कर गाँव की सरपंच हो गई है और गाँव वालों को प्रेरित करती है कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें, और उधर सरकार उन बच्चों को शिक्षा के लिए पैसे दे और साथ में उनका खाने पीने का इंतज़ाम भी करे। गाँव के सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं और अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। अब आगे।
1: गुरुजी आइए। प्रणाम।
2: प्रणाम गुरुजी।
3: प्रणाम प्रणाम। आप सबको मेरा शुभ आशीर्वाद। लगता है चार्ज का लेन देन हो रहा है। अच्छा अच्छा, आप लोग निपटाइए, मैं फिर बाद में आता हूँ।
1: जी अच्छा गुरुजी।
3: अच्छा अच्छा।
4: दीवान जी
5: बोलिए।
4: जो भी बचा हुआ कैश है हमने रख लिया है, बाकी आपने जो जो काम कराया है उसको बीडीओ साहब से पास करवा के लाकर दे दीजिएगा।
5: हो जयंत भाई, हो हो, सब ठीक है तो जैसा आप कह रहे हैं हो जाएगा। ठीक है तो हम चलते हैं। और ये जो काम आप बीडीओ साहब से प्रमाणित करवाने के लिए कह रहे हैं वो हम करवा के आपको वापस दे देंगे, ठीक है ना?
1: जी जीवान जी, नमस्कार।
4: नमस्कार।
5: नमस्कार जमुनिया जी, नमस्कार जैन जी। चले थे भाई, चलो
6: चलो बाबू।
4: देखो इसने कुछ काम धाम तो किया नहीं है, इसलिए पैसा तो काफी बचा हुआ है जिसे मजबूरी में इसने हमें दिया है, अन्यथा वो इसी योजना में सब कुछ काला पीला कर डालता।
1: समझ रहे हैं, अब क्या करेंगे इस पैसे का?
4: हम लोग एक प्रस्ताव बनाएंगे।
1: कैसा?
4: कि पिछले बचे हुए पैसे को भी हमें खर्च करने की अनुमति दी जाए ताकि ढेर सारे काम इस गांव में हम लोग कर सकें। तो प्रस्ताव हम आज ही तैयार कर लेते हैं।
1: हाँ।
4: ताकि मैं कल इन्हें ले जाकर पास करवा लाता हूँ।
1: ठीक।
4: और जो पैसा पहले का आया हुआ है उसमें सबसे पहले सड़क और स्कूल का निर्माण करवाएंगे।
1: बिल्कुल सही जयंत जी, मैं आज ही सभी पंचों को बुला के प्रस्ताव बनवाती हूँ, ठीक है?
4: हाँ ये ठीक रहेगा।
5: खास समय आ गया है। अरे का से का हो गया है, पहले हमारा कितना दबदबा हुआ करता था और अब देखते देखते इस गांव में क्या से क्या हो गया है। अरे कितना मान सम्मान था हमारा, अरे लोग हमसे डरते थे, झुक झुक के सलाम करते थे हमको। और ये जमुनिया ससुरी दो कौड़ी की औरत हमसे हिसाब ले रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। अरे कोई है?
7: जी मालिक।
5: सुन।
7: जी मालिक।
5: सुन, आज शाम को
7: हाँ
5: जग्गा और बिल्ला को बुला के ला।

0: सामान
1: समझ क्या? हमें कुछ जरूरी बात करनी है उनसे।
0: हाँ कर ले मालिक।
1: और तुम भी साथ में ही रहना।
0: हाँ हाँ मालिक।
1: अरे हमसे ये गांव का अमन चैन देखा नहीं जा रहा है।
0: जी जी मालिक।
1: कुछ करना होगा, करना होगा कुछ।
0: हाँ हाँ मालिक।

0: बाबा।
1: हाँ बेटा।
0: खाना खा लिया?
1: हाँ बेटा। हाँ।
0: बाबा फिर पंचों को बुला के पंचायत घर पहुंचिए ना।
1: पंचों को बुला के?
0: हाँ बाबा, आज अपने पास बहुत काम है, मैं भी खाना खाकर वहीं आती हूँ। ठीक
1: अच्छा,
0: है?
1: ठीक है बेटा।
0: अच्छा
1: मैं भी निकलता हूँ और अब वहीं मिलेंगे पंचायत घर पे।
0: जी बाबा।
1: हाँ ठीक है बेटा।
2: अच्छा जमुनिया
0: जी।
2: मैं भी चलता हूँ,
0: अच्छा
2: लिखने पढ़ने कुछ काम हुआ तो वो मैं कर लूंगा।
0: हाँ हाँ ठीक है।
3: अरे यार अचानक है यार, कैसे बुला लाओ यार? अरे घर तो आओ कोई, आके तो बात करो यार। क्या भैया? ए गोविंद बाबा समझ में नहीं आ रही यार, अचानक कैसे बुला लाओ यार?
4: जमुनिया जी आती होंगी, अब सारी बात होगा तभी पता चलेगा। अरे भे देखो आ तो गई जमुनिया जी। अरे अभी सब मालूम हो जाए, चलो आ जाओ आ जाओ, आओ आओ जमुनिया जी,
5: अभी सब मालूम हो जाए।
4: और क्या, आ जाओ।
0: प्रणाम पंचू।
4: राम राम राम राम।
0: बैठिए।
4: अरे आप सोई बैठो,
6: आप तो बैठिए,
4: बैठो बैठो।
0: मैंने आप सबको एक खास काम के लिए बुलाया है। हमें सरकार की तरफ से जो बजट मिला है उसके अलावा पिछले बजट का भी पैसा बचा है, वो सारा हिसाब किताब जयंत जी के पास है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लें।
4: अरे नहीं, क्या करके देखते
3: हैं? अरे कौन को कौन देखेगा, कौन समझ में भी नहीं आया।
0: देखिए मैं तो चाहती हूँ कि ये पैसा वापस ना करना पड़े। इसे सरकार हमें इसी गांव में खर्च करने के लिए दे दे, क्यों?
4: अच्छा है,
0: और हम सारे काम एक साथ निपटा सके। इसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। एक प्रस्ताव हमारी तरफ से सरकार को जाना होगा। ठीक है जयंत बाबू, आप लोगों को ये प्रस्ताव पढ़कर सुनाएंगे। आप लोगों को उचित लगे तो कृपया इस पर हस्ताक्षर कर दें, और जिनको कोई शंका हो तो जयंत जी से पूछ ले।
4: कैसी बातें कर रही, शंका मुझका काय की
0: शंका? ये काम हमको देर से नहीं करना है, क्योंकि हम इस गांव के काम में पहले ही बहुत पीछे हो चुके हैं, है ना? चलिए जयंत जी प्रस्ताव पढ़ के सुनाइए।
7: अरे अरे भैया, भाइयों
8: का पढ़ने,
7: भाइयों प्रस्ताव इस प्रकार है कि
3: आपने बना हो तो अच्छी बना हो।
4: प्रस्ताव लाइए। हाँ और क्या, हम तो इसका अनुमोदन करते हैं।
3: और
6: हम सब करते हैं।
0: धन्यवाद भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
9: हाँ चलो जमुनिया सब ठीक है, हम लोग चले।
0: बिल्कुल पंचो, पर मेरी आपसे एक विनती है कि जो काम बिन पैसे हो सकता है वो हम सिर्फ अपनी मेहनत से अपने बल पर घर घर में कर डालने का प्रण करें। जैसे कि गांव की सफाई, सब लोग अपने अपने घर के पीछे एक एक गड्ढा बना लें और घर का कचरा उसी में डालें। हाँ भैया, और कुछ है थोड़ा सा, हर घर में एक एक शौचालय बनाए, इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ मदद भी मिलती है, वो भी हम दिलाने की कोशिश करेंगे।
9: ये काम बहुत अच्छा है।

0: और तो कुछ नहीं है।
1: नहीं भैया, बस अभी इतना ही ठीक है।
2: अरे नहीं
1: नहीं भैया, राम राम भाई लोग
2: चलते हैं। राम राम
3: राम राम
4: राम। जमुनिया, तो फिर मैं भी शहर निकलता हूँ
1: जी।
4: और हाँ, आज अगर ज्यादा समय लगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा और सरकार से इसका अनुमोदन लेकर ही आऊंगा।
1: अच्छा ठीक है, आराम से जाइएगा। हाँ
4: हाँ।

0: आ गए तुम लोग। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है जग्गा बिल्ला तुमसे।
1: जी साहब जी।
0: सुनो हमारी बात गौर से सुनो।
1: अरे बोले साहब बोले बोले।
0: बहुत दिनों से हमने ये गांव में चलते हुए घर नहीं देखे हैं।
2: मालिक
1: आप कहें तो।
0: अरे हमारे कलेजे में आग लगी हुई है।
1: ऐसी क्या बात हो गई मालिक?
0: अरे बात ही ऐसी है, और हमारे कलेजे में जो आग लगी है उसे ठंडक तभी मिल पाएगी जब कम से कम 3-4 घरों में आग लगे।
1: बिल्कुल लगा सबके सब घूम देंगे।
0: अरे तभी हमें कुछ तसल्ली होगी।
1: अरे आप हुकुम तो करो मालिक।
2: करो मालिक।
0: बस तो 3-4 घर एक साथ आज की रात जला के राख कर दो।
2: समझ लो मालिक, काम हो गया।
1: आप निश्चिंत रहिए मालिक।
0: शाबाश। पर सुनो, काम जरा होशियारी से होना चाहिए।
1: अरे आप भरोसा रखिए,
2: खातिर जमा रखे मालिक।
0: शाबाश, किसी को नजर नहीं आना तुम लोग। ठीक,
1: आप निश्चिंत रहिए मालिक। हाथ को हाथ से खबर नहीं होगी कि किसने किसको जला दिया, किसने किसको अंजाम दिया। आप तो हम पर भरोसा रखिए साहब।
0: शाबाश शाबाश, ठीक है तो फिर आज की रात।
1: जी मालिक, आप निश्चिंत रहिए मालिक।
2: आप तो सोइए मालिक।
3: मालिक कछु पैसा वैसा?
0: पैसा की फिक्र मत करो, पैसा जितना चाहिए दूंगा, काम करके आओ।
1: बस बस बस मालिक, आप निश्चिंत रहिए मालिक, सब फूक के रख देंगे।
3: हाँ मालिक, अब हो जाएगा काम वहां मालिक।
0: शाबाश।
3: चुपचाप चुपचाप
4: चुपचाप।
5: जल्दी करो, अरे तू लगा यार,
4: तेरी माची से नहीं चले। ये बात तो सही है, मेरे तुम्हारी बात ठीक तो लगा था यार, बिना सबूत के कोई को नाम लेना ठीक नहीं है भैया। बापे ले जाम सीधे लगा रहो यार।
2: अरे अब आप ढूंढते रहिए सबूत, और हम भी चुपचाप नहीं सहेंगे।
1: हाँ चुपचाप नहीं सहेंगे, इसका बदला लेंगे।
6: चलो अच्छा हुआ आग बुझ गई,

0: पर इन चारों का बड़ा नुकसान हो गया।
1: हाँ भैया,
0: कुछ भी नहीं बचा।
2: बर्बाद हो गए,
0: क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे।
3: भाइयों, अगर हिम्मत है तो बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ।
4: हाँ तैयार है।
3: हम सब मिलके बदला लेंगे। उठाओ मशाल, और चलो घेर लेते हैं उस दीवान का घर।
5: चलो,
0: उसे भी पता चले आग क्या होती
3: है। चलो चलो सब चलो,
5: चलो
3: चलो आगे बढ़ो।
0: चलो रे
3: सब आ जाओ,
6: ये चारों घर कैसे चल गए भाई?
2: अरे कुछ नहीं जमुनिया, ये सब दीवान का ही काम लगता है रे।
6: दीवान का? दीवान को आग से खेलने का बहुत शौक लगता है, पर ये इतने लोग मशाल लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये तो बहुत गलत बात है, मैं जाके इनको रोकती हूँ। अरे भाइयों रुको रुको, तो एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अरे भाइयों रुको, मेरी एक मिनट बात सुन लो, बस एक मिनट मेरी बात तो सुनो। भैया आग से खेलने का कोई अंत नहीं है।
7: काहे से अंत है?
6: आग से आग कभी बुझी है क्या?
3: अरे अब क्या आग से आग बुझेगी?
6: और अगर आप लोगों को लगता है कि बिना इसके दीवान को समझाया नहीं जा सकता, तो पहले आगे मुझे चलने दीजिए। पहली मशाल मैं जलाऊंगी।
7: ठीक है बहन।
6: दीवान जी बाहर आइए। हम जमुनिया है दीवान जी।
5: जमुनिया,
6: जरा एक नजर आकर बाहर ये देख लीजिए, अगर इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो आने वाले वक्त में बहुत सारा गांव जलकर खाक हो जाएगा।
5: बिल्कुल। इतनी सारे लोग इतनी मशाल जलाकर हमारे घर पर क्या कर रहे हो तुम लोग?
6: वो अपनी आग का बदला लेने आए हैं।
5: बदला लेने?
6: जिसे तूने चार घरों में लगवा कर बर्बाद कर दिया।
5: अरे का अनाप शनाप बक रही है तू? अरे हमें कहा पड़ी है कि तुम्हारे घरों को जलाओ? अरे जरूर तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है।
6: वो तो हमको सब समझ में आ रहा है दीवान जी, पर ये आग का खेल, ये आग का खेल खेलना बंद कर दीजिए। जब आग जलने पर होती है ना दीवान जी, तो वो अमीर और गरीब को नहीं पहचानती।
7: कछु आया समझ में?
5: रे का कह रही है, है? मजाक समझ रखा है तूने? अच्छा लगा के तो देखो मेरे घर में आग, मैं भी देखता हूँ कैसे लगाते हो। अरे देखे कैसे लगाते हो आग है? अरे अरे अरे तो सच में आगे आ गए। हे जमुनिया रोको अपने आदमियों को।
6: मैं तो इन्हें रोकने ही आई हूँ दीवान जी, लेकिन अगर किसी एक ने आग लगा दी तो मैं उनमें शामिल हो जाऊंगी। इसलिए आपको पहले समझा रही हूं कि इन सबके सामने एक बार वादा करे कि आगे आप कभी भी किसी के घर में आग नहीं लगाएंगे, और जो आग लगा दी है उसके लिए माफी मांगे,
5: माफी,
6: और जो इन चारों घरों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी आप करेंगे।
5: ए, सुनो तुमको, सुनो जमुनिया, तुम भी सुनो। हम इस गांव के सरपंच रहे हैं, अरे हमारे साथ तुम लोग जो करना चाह रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम लोग चाहते हो तो ठीक है, हम माफी मांगते हैं तुम लोगों से, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का भी वादा करते हैं। अरे वो मैं कहा है, पहले भी इन लोगों के नुकसान हुए तो हम भरते ही रहे। अरे जहां तक आगे ऐसा ना करने की बात है तो सुनो, ना हमने पहले कभी ऐसा किया, ना आज किया, ना आगे कभी करेंगे।
6: भाइयों, मेरे ख्याल से इतना काफी है।
7: अरे अभी क्या
6: बोलूंगा, अपनी अपनी मशाले बुझा दो। भैया, क्योंकि आग जब तक बस में होती है बड़े काम की चीज होती है, रोशनी इसी से होती है और रोटी भी इसी से पकती है। पर जब ये बेकाबू हो जाती है तब किसी के काम की चीज नहीं होती। इसलिए अभी अपनी मशाले बुझा दो और अपने अपने घर चलो। कल सवेरे बैठकर हम आपस में चर्चा करेंगे कि बाकी क्या करना है।
1: अरे जो तुम कहती हो तो मान जाते हैं जमुनिया, पर ये दीवान सुधरने का नहीं।
7: अरे बहुत बदमाश है,
1: और अभी हमारे आग ठंडी ना हुई है।
6: बिल्कुल ठंडी करनी भी नहीं है, ये जलती ही रहनी चाहिए जिससे जीवन को शक्ति मिलती रहे। बाबा।
4: बोलो बेटा।
6: ना हो तो आज हाट हुआ हो।
4: हाँ ठीक है।
6: बहुत सा सामान बना पड़ा है, मैं आज घर पर ही रहती हूँ।
4: हाँ हाँ हाँ हाँ।
6: कल रात क्या हो गया वो तो आपने देखा ही होगा।
4: हाँ हाँ।
6: जयंत बाबू शहर से आते ही होंगे, देखिए क्या खबर लाते हैं। मैं पंचो को बुलाकर कल के हादसे पर बात करती हूँ।
4: ठीक है बिटिया, मैं हाथ होके आता हूँ।
6: ठीक है बाबा।
4: ठीक।
6: भाई लोगों, मैं कुछ अपनी बात कहूँ या समझाऊँ? इससे अच्छा है पहले आप लोगों की सुनूँ।
1: भैया, हम सबकी राय है तो अभी तो यही है कि जब तक दीवान को मुंह तोड़ उत्तर ना दिया जाए हम चैन से नहीं
6: बैठेंगे। हम लोग दीवान को मुंह तोड़ उत्तर कैसे दे सकते हैं? हाँ
1: आप बताएं।
6: उसकी हवेली जलाकर, उसको मार पीट के, या उससे आगे बढ़कर?
1: वो कैसा आगे बढ़कर?
6: इन सब बातों पर विचार भी कर लीजिए और जो भी निर्णय हो सोच समझ कर बताइए। मैं भी आपके साथ हूँ।
1: आप हमारी सरपंच हैं, आप बताएं।
6: पर फिलहाल हमें किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाना है।
1: जे का बात का करें।
6: पहले जिन चार घरों को फूका गया है उनको दोबारा बनाना है। जो नुकसान हुआ है वो सब दीवान से लेना है।
1: बिल्कुल लेना है,
6: है ना? फिर आगे देखते हैं क्या करना है, है ना?
1: हाँ ये बात ठीक है, जमुनी हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे,
8: इसी तरह आगे बढ़ेंगे।
6: अरे जयंत बाबू जल्दी आ गए।
4: हाँ काम तो कल ही हो गया था।

0: थोड़ी देर हो गई, सो मैं वहीं रुक गया।
1: अच्छा।
0: हाँ जमुनिया, एक खुशखबरी है।
1: क्या?
0: हमारे सारे प्रपोजल सरकार ने मान लिए हैं, और तुम चाहो तो ये खबर पंचो को भी दे दो।
1: हाँ बिल्कुल। पंचो, हमने जो प्रस्ताव सरकार को भेजा था वो सब उन्होंने मान लिया है। आप सबको बधाई। अब हम इस गांव के सारे काम एक साथ शुरू कर सकते हैं। सड़क और स्कूल का काम चल ही रहा है ना? अस्पताल, पोस्ट ऑफिस का काम जन भागीदारी से शुरू करना है, पर बिल्डिंग बनाने में कुछ समय लगेगा।
2: सो तो है,
1: इसलिए पोस्ट ऑफिस तुरंत प्रभाव से किराए के मकान में खोल लिया जाएगा। गांव में एक बत्ती बिजली का कनेक्शन भी आना है, उस पर भी काम शुरू होगा जल्दी। ये जरूरी खबर आप लोगों को देना बहुत जरूरी था।
3: अरे जेती हो, ये बढ़िया।
1: बधाई आप सबको पंचो। अगर हम लोग मिलजुल कर इसी तरह आगे बढ़े तो इस गांव की तरक्की और तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी।
3: अरे आप तो रास्ता बताते चले।
4: हम भी यही चाहते हैं।
5: हाँ, और क्या।

0: जितने काम हमने अभी शुरू कर दिए हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार उस पर नजर रखना जरूरी है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जमुनिया।
1: सच में
0: मेरे ख्याल से गांव के कुछ ईमानदार लोगों को लेकर एक एक काम का जिम्मा सौंप देना ठीक रहेगा।
2: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया की 21वीं कड़ी। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अलीराजपुर जिले के डेकाकुंड रेलवे स्टेशन का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके साथ ही जोबट टांडा रोड रेल लाइन और डेकाकुंड स्टेशन को के क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दुबई में एआईएम कांग्रेस

0: कांग्रेस 2026 के दौरान शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन अब्दुल्ला सुल्तान अल ओवैस से मुलाकात की। दोनों के बीच मध्य प्रदेश और शारजा के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत करने और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कैंसर डे केयर सेंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि विदिशा और आसपास के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसी उद्देश्य से सेंटर शुरू किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल बोए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। और मौसम विभाग के मुताबिक 12 सितंबर के बाद एक नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से एक बार फिर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति।

कहते हैं अक्षर छोटे होते हैं लेकिन इंसान की दुनिया बहुत बड़ी कर देते हैं। एक किताब के कुछ पन्ने किसी की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। कलम जब हाथ में आती है तो सिर्फ शब्द नहीं लिखे जाते, अपने भविष्य की इबारत भी लिखी जाती है। और जब इंसान पढ़ना सीखता है तो वह केवल किताबें नहीं पढ़ता बल्कि अपने अधिकार, अपने अवसर और अपने सपनों को भी पहचानना सीखता है। इन्हीं अक्षरों की ताकत, ज्ञान की रोशनी और सीखने के अधिकार को समर्पित है आज का दिन, जिसको कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। स्टूडियोज की घड़ी पर समय हो रहा है 5:03। आवाज़ है आपके रेडियो साथी तुषार तमिल सेना की। स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम में जिसका नाम है युवाओं की वाणी, युववाणी। गुड इवनिंग।

सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में सुने गीत फिल्म कभी खुशी कभी गम से। गीतकार थे अनिल पांडे और संगीत था संदेश शांडिल्या का। दोस्तों, बात जब साक्षरता की होती है तो अक्सर हमारे मन में सबसे पहले पढ़ने और लिखने की क्षमता आती है। लेकिन साक्षरता का अर्थ केवल अपना नाम लिख लेना या किसी किताब के शब्द पढ़ लेना भर नहीं है। असल मायनों में साक्षरता हमें जानकारी को समझने, अपने अधिकारों को जानने, सही गलत में अंतर करने और अपने जीवन से जुड़े फैसले बेहतर तरीके से लेने की क्षमता देती है। इसी महत्व को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से हर वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष

1965 में ईरान की राजधानी तेहरान में शिक्षा मंत्रियों का एक विशेष विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद यूनेस्को ने वर्ष 1966 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया और पहली बार इसे 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता तो उसके लिए बैंक का फॉर्म भरना, दवाई पर लिखे निर्देश समझना, सरकारी योजना की जानकारी लेना, नौकरी के लिए आवेदन करना या अपने मोबाइल पर आई किसी महत्वपूर्ण सूचना को समझना, ये रोज़मर्रा के काम भी कितने मुश्किल हो सकते हैं। और दोस्तों, आज साक्षरता की परिभाषा भी पहले से कहीं व्यापक हो चुकी है। आज का दौर डिजिटल तकनीक का दौर है, इसलिए पढ़ने लिखने के साथ साथ डिजिटल साक्षरता भी बेहद ज़रूरी हो गई है। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही डिजिटल रूप से साक्षर होना नहीं है। ऑनलाइन मिली जानकारी की सत्यता पहचानना, साइबर धोखाधड़ी से बचना, डिजिटल भुगतान सावधानी से करना और तकनीक का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी इसका हिस्सा है। साक्षरता दिवस हमें एक और महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति बचपन में शिक्षा से वंचित रह गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके लिए सीखने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। कलम किसी भी उम्र में उठाई जा सकती है और अक्षरों से दोस्ती किसी भी उम्र में की जा सकती है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है लोगों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता। दरअसल जब कोई व्यक्ति शिक्षित और जागरूक होता है तो वह केवल अपने लिए बेहतर अवसर नहीं बनाता बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी बेहतर निर्णय ले पाता है। और शिक्षा हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो करती ही है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम केवल यह ना पूछें कि हमारे आसपास कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, एक सवाल खुद से भी पूछें, हमने अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कितना किया है। तो साथियों, ये थी बातें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के ऊपर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

0: सुखविंदर सिंह की आवाज में सुनाई गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। गीतकार थे जयदीप सहानी और संगीत था सलीम सुलेमान का। साथियों, अब बात करेंगे एक अहम रोजगार सूचना की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है CHSL 10+2 के कुल 2536 पोस्ट के लिए। 7 सितंबर से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक की आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 7 अक्टूबर। तो श्रोताओं, 7 सितंबर से आवेदन पत्र शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 7 अक्टूबर। और अधिक जानकारी के लिए आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। मैं पुनः दोहराता हूँ, कुल पद हैं 2536। 7 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, अंतिम तिथि है 7 अक्टूबर और ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.gov.in। आवेदक की आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये थी बातें एक रोजगार सूचना की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुनाई गीत फिल्म किल दिल से। गीतकार थे शाद अली और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक युवा है, आँखों में बड़े बड़े सपने हैं, कुछ बनने की चाहत है, परिवार की उम्मीदें हैं और सामने पूरी ज़िंदगी है, लेकिन कभी दोस्तों के दबाव में, कभी तनाव से बचने के लिए और कभी सिर्फ ये सोचकर कि एक बार करने से क्या होगा, वह एक ऐसी आदत की तरफ कदम बढ़ा देता है जिससे वापस लौटना हर बार आसान नहीं होता। और शायद इसीलिए नशे की समस्या को केवल किसी एक व्यक्ति की समस्या मानकर नहीं देखा जा सकता। इसका प्रभाव उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ उसके परिवार, उसकी पढ़ाई, रोजगार, आर्थिक स्थिति और कई बार पूरे सामाजिक जीवन पर भी पड़ सकता है। कहते हैं किसी भी बुरी आदत से लड़ने का पहला हथियार डर नहीं बल्कि जागरूकता होती है, और इसी जागरूकता को एक जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य केवल नशे के खिलाफ नारे लगाना नहीं है, इसका प्रयास है लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, विशेष रूप से युवाओं तक पहुँचना, नशे की समस्या से प्रभावित लोगों की पहचान और सहायता करना तथा ज़रूरत पड़ने पर उन्हें काउंसलिंग, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास से जोड़ना। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का समय जीवन का वह दौर है जब हम नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और कई बार दोस्तों या आसपास के लोगों का प्रभाव भी हमारे फैसलों पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यही वह जगह है जहाँ हमें समझदारी से फैसला लेना होता है। किसी दोस्त के दबाव में आकर कोई चीज़ करना दोस्ती नहीं है, और किसी गलत आदत को मना कर देना कमज़ोरी नहीं बल्कि अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी है। यहाँ परिवार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार डांट से ज़्यादा ज़रूरत संवाद की होती है। दोस्तों, नशा मुक्त भारत का अर्थ केवल नशीले पदार्थों से मुक्त देश नहीं है, बल्कि जहाँ नशे के खिलाफ डर से ज़्यादा जागरूकता हो, तिरस्कार से ज़्यादा सहयोग हो और समस्या छिपाने से ज़्यादा मदद मांगने का साहस हो। और अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति नशे की समस्या

समस्या से जूझ रहा है तो उसे अकेले सहना जरूरी नहीं है। भारत सरकार की ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन 1446 के माध्यम से भी सहायता और मार्गदर्शन लिया जा सकता है। मैं पुनः हेल्पलाइन नंबर दोहराता हूँ, 1446 के माध्यम से भी आप सहायता या मार्गदर्शन आप वहाँ से ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें नशा मुक्त भारत के ऊपर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

घड़ी की सुई अब हमें इशारा कर रही है कि आपसे विदा लिया जाए। आशा और उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अलग अनेक कार्यक्रम में। अलविदा, नमस्कार।

युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में है। दिलवाले फिल्म का ये गीत है जिसे लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत गहराइयां फिल्म से है। लोथिका झा और सवेरा मेहता ने इस गीत को गाया है। गीत लिखा कौशल मुरी ने, संगीत कबीर का।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा, प्रीतम का संगीतबद्ध किया कलंक फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ें दी श्रेया घोषाल और विशाल महदे ने।

0: श्रेया घोषाल और वैशाली मेहदी के आवाज़ में कलंक फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लेते हैं छोटा संतराल।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानीज नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से समाज सेवा तथा स्वच्छता को दैनिक आदत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नवसारी में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दुबई में AIM कांग्रेस 2026 के दौरान शारजाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन अब्दुल्ला सुल्तान अल ओवैस से मुलाकात की। दोनों के बीच मध्य प्रदेश और शारजाह के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत करने और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कैंसर डे केयर सेंटर का शुभारंभ किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास में निजी विश्वविद्यालयों के योगदान विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यवहारिकता, गहनता और जीवन का गूढ़ दर्शन है। उन्होंने कहा कि इस गौरवशाली परंपरा को वर्तमान और भावी पीढ़ी तक सार्थक रूप से पहुंचाना जरूरी है। और मौसम विभाग के मुताबिक 12 सितंबर के बाद एक नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से एक बार फिर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियां, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ NCERT की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है, वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओं, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओं, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूँगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी

0: जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी, आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताज़ी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा
3: आएगा। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
4: जीत,
5: हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
2: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
5: 1, 2, 3 सब छुप गए ना। 98, 99, 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
3: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
6: मोहित,
7: अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
3: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
5: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
3: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
5: बबली, तुम अलमारी के पीछे हो? मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
3: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
5: मारिया, तुम पलंग के नीचे हो?
8: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
9: अंदर छुपा।
5: मारिया,
8: ठप्पा। अरे नहीं।
3: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
10: दादी, दादी, दादी हिलना मत, जीत आया है, वो मेरे धप्पा बोल देगा।
5: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ। और ये गया, ये
9: जोर जोर से
5: सिमरन धप्पा।
8: फिर पकड़ लिया।
5: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
3: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।
5: चादर के पीछे। यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
3: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया।

0: पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा।
1: अरे नाजिया कहां छुपी हो?
0: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
2: जी धप्पा।
1: ओहो अरे नहीं मेरी फिर से बारी आ गई।
0: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
1: एक दो तीन।
3: छुपन छुपाई है ना मजेदार खेल। तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
5: साथियों पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापक गण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए, और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
6: साथियों आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं।
7: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
8: नमस्कार।
6: आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण ये संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी आप
8: जी जी
6: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप

0: मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
1: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। मीना
2: जी,
1: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
2: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
1: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
2: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
3: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
1: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई। इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
3: अच्छा।
1: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
0: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे?
3: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
0: अच्छा।
3: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
1: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
3: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
1: जी,
3: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
1: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी, उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
3: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
0: जी।
3: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
1: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
3: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
0: जी। नीलम जी, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
4: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हीलचेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
3: अच्छा, एक बात बताओ
4: जी,
3: सरिता व्हीलचेयर का प्रयोग कब से करती है?
4: इसकी माँ ने बताया था कि व्हीलचेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
3: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
2: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
4: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
3: हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है, और जो हर बच्चे में अलग अलग दिखाई देता है।
4: जी,
3: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं।
0: अच्छा।

0: हाँ तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दें।
1: जी।
0: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
1: जी।
0: केवल बच्चों को और उनके माता पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
1: जी ठीक है।
2: हाँ दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
3: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
4: नमस्ते।
2: डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
0: अच्छा अच्छा। सीमा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
4: मैं सातवीं में पढ़ती हूँ।
0: रेनू जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
5: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है।
0: अच्छा।
5: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
3: डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है। ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है। गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
5: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं, उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है। कभी कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
0: अच्छा।
5: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
3: डॉक्टर पुष्पा, कभी कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
5: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
3: जी।
5: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई छूत की बीमारी ना हो,
0: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
3: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
4: हाँ, समझ तो आता है पर लिख नहीं सकती।
5: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
0: अच्छा।
5: और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसे लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते।
3: रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है?
5: ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी, तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
0: अच्छा।
5: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी। शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
3: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
0: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है। क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
3: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
0: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
2: जी। आज हमने 3 प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
3: जी।
2: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
3: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगी?
0: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
2: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
0: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।
2: नमस्कार। नमस्कार।
6: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी

0: उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
1: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना।
2: हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
3: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
4: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
5: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
6: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। शाम के 6:30 बजे हैं। दीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज किशोर कुमार के गाए इस गीत से, जिसे हमने लिया कटी पतंग फिल्म से। संगीत तैयार किया आर डी बर्मन ने और इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए आनंद फिल्म के इस गाने के बाद आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। शब्द रचना SH बिहारी की है, धुन तैयार की OP नैयर ने और फिल्म है कश्मीर की।

कार्यक्रम का अगला गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन तैयार की आरडी बर्मन ने, किशोर कुमार की आवाज़ है और फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म दाग से। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का है। फिल्म का नाम आपकी कसम।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गाए आपकी कसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: मीडियम वेव 188.3 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर ए श्रेणी में कर दिया है। प्रधानमंत्री इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: भूमिका है, इसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है। मैं आपको कैपिटल और क्रेडिट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। एक बहन है जो छोटी दुकान चलाती है, उसको हर दिन डिजिटल पेमेंट मिलता है। अब उसकी इनकम और खर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वो उस लेवल से आगे बढ़ चुकी है जहां कम कैपिटल भी काफी

0: भी था।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्म युगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नजर इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से 7:25 पर आप सुनेंगे बुंदेली समाचार। 7:30 से 8 के बीच किसान वाणी सुनिए, जिसमें आज आप सुन सकते हैं ग्रामीण स्वरोजगार के लिए जरूरी कौशल दिवस विषय पर डॉक्टर अनिल मुरलीधरन बिसेन से भेंटवार्ता। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में रात 8 सुर्खियों में फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं रात 8:15 और 10। कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा, इसे आप सुन सकते हैं रात 9:30 उर्दू कार्यक्रम कहकशा में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 सुनिएगा गुलाम कदीर खां का ख्याल गायन राग केदार। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां गीत संगीत और समय के साथ। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा, इसका समय रोज ही की तरह सुबह 8:30। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनिएगा दिलीप महाशब्द के गाय

कुछ भजन। प्रदेश की सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 बजे। 10 बजे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा कार्यक्रम महिला संसार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 बजे कल हम आपको सुनवाएंगे हाफिज अहमद का ख्याल गायन। इन्हीं को आप सुन सकते हैं कल रात 10:30 बजे। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगी, जिसमें आप सुनेंगे रबी सब्जी वर्गीय फसलों की रोपणी कैसे तैयार करें, विषय पर डॉक्टर देवेंद्र पाटिल से ली गई भेंटवार्ता। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, इसका समय 11:00 बजे है। दिन में 12:00 बजे आपकी फरमाइश। 12:30 बजे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में सुनिएगा धारावाहिक जमुनिया का भाग 22। 1:00 बजे महिला कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी ग्वालियर की ही प्रस्तुति में 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2:00 बजे, 2:30 पर, शाम 5:33 और शाम 6:30 बजे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम प्रतिदिन की तरह रात 8:00 बजे होगा। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे रात 8:15 बजे। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। भोर का सूरज, अजीमुद्दीन का लिखा ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे कल रात 10:00 बजे। प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र स्वरूप राजन। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दुबई में निवेशकों से 1-to-1 बैठकें की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में विदिशा मेडिकल कॉलेज में कैंसर डे केयर सेंटर की शुरुआत हुई। और प्रदेश में अब तक सामान्य बारिश का 83% कोटा पूरा। रीवा और शहडोल संभाग में 11 सितंबर तक तेज बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर

0: प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2800 किलोमीटर के विशेष माल ढुलाई गलियारे का पूरा होना 21वीं सदी के भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है और देश में बदलती कार्य संस्कृति का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा सौर, परमाणु और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को देख रहे हैं। प्रौद्योगिकी की भविष्य में पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आगामी उद्योग पूर्ण रूप से ऊर्जा संचालित होंगे। सरकार इसके लिए मजबूत और बहुक्षेत्रीय ऊर्जा तंत्र स्थापित करने पर ध्यान दे रही है।
1: अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रतापनगर, वडोदरा और टांडा रोड के बीच नई मेमू यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिससे धार जिले में आजादी के बाद पहली बार यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई। साथ ही छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना के जोबट टांडा रोड हिस्से का शुभारंभ किया गया। टांडा रोड पर केंद्रीय राज्य मंत्री और धार महू सांसद सावित्री ठाकुर मौजूद रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विभिन्न भाषाओं, विधाओं और सिनेमाई रूपों में विविधताओं का प्रतीक हैं। मंत्रालय ने कहा कि आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया जाएगा। भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म और राम नामी को जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र चुना गया है। फिल्म ब्रह्म युग्म के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। 1954 में शुरू हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दुबई में AIIM कांग्रेस 2026 के तीसरे दिन निवेशकों और उद्यमियों के साथ वन टू वन बैठकें की। मुख्यमंत्री ने डीपी वर्ल्ड के CEO रिजवान सुमार में से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर चर्चा की। उन्होंने पोवारखेड़ा लॉजिस्टिक्स हब को अंतर्देशीय लॉजिस्टिक्स के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बताएं। उन्होंने शाराफ ग्रुप के इंदौर और पीथमपुर में रेल साइडिंग युक्त लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। इसमें 30 से 50 मिलियन डॉलर के निवेश से करीब 300 से 600 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को वर्ष 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कैंसर डे केयर सेंटर की शुरुआत हुई। सेंटर का उद्देश्य विदिशा और आसपास के मरीजों को कैंसर के इलाज की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। इस संबंध में एम्स भोपाल और मेडिकल कॉलेज विदिशा के बीच MOU भी हुआ है। इसके तहत सेंटर को एम्स भोपाल का मार्गदर्शन, विशेषज्ञों की विजिट और जरूरत पड़ने पर एम्स में इलाज की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशे से दूर रहने की अपील की।
3: एक तो है इलाज, दूसरा बीमारी ना हो, इसलिए जीवन शैली बदलने की भी जरूरत है। अब सवेरे सवेरे उठे और घिसी सुपारी और जर्दा और दिया मोमिन, अब उसमें कितनी कैंसर की संभावना बढ़ती है। और दूसरा ये नशा, किसी भी तरह का ये नशे का नाश कर दो भैया, अपने जिले से नशा कैसे खत्म हो, अवेयरनेस भी हम चलाए, प्रशासन कार्रवाई भी करे। जीवन शैली ऐसी हो कि बीमारी कम से कम हो ना, फिर भी कभी कभी होती।

0: खाओ पियो भी ऐसा कि जो शरीर को लगे।
1: प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ई वीडियो कंटेंट अब कल से ई ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कल शाम 5 बजे चैनल का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 10 डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों के ई कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। अब तक 2305 वीडियो शूट किए गए हैं, जबकि 954 वीडियो की एडिटिंग पूरी हो चुकी है। वीडियो की गुणवत्ता और पाठ्यक्रम के अनुरूप होने का वैलिडेशन बोर्ड द्वारा परीक्षण किया जाएगा। प्रदेश में नवे राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन कल से 8 अक्टूबर तक हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम पर किया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया कल इंदौर से अभियान का शुभारंभ करेंगी। एक माह तक चलने वाले अभियान में पोषण मेले, रेसिपी प्रदर्शनियां और बच्चों की शारीरिक माप जैसी गतिविधियां होंगी। स्थानीय एवं मौसमी खाद्य पदार्थों, पर्याप्त प्रोटीन और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। 11 सितंबर से बच्चों का वजन, लंबाई और ऊंचाई मापी जाएगी और कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 100% लाभ के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। प्रदेश में अब तक सामान्य बारिश का 83.5% कोटा पूरा हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का असर अधिक रहेगा। रीवा और शहडोल संभाग में 11 सितंबर तक तेज बारिश होने के आसार हैं, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में विश्व साक्षरता दिवस पर जगमल गांव की निर्मला साकेत की कहानी प्रेरणादायक बनी है, जो कभी अंगूठा लगाती थीं और अब स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हैं तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती हैं। कटनी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राहियों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में सेंट्रल जीएसटी की 5 टीमों ने 365 डिग्री फिटनेस सेंटर के 5 ठिकानों पर कार्रवाई कर 1 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी है। मनीला में कान्हा टाइगर रिजर्व के खापा क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण दिया गया। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एनएसएस ने विश्व साक्षरता दिवस पर शिक्षा सबका अधिकार है का संदेश दिया। झाबुआ के मेघनगर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई, जिसमें करीब 90 आवेदन प्राप्त हुए। आगरमालवा में कृषि विभाग की टीम किसानों के खेतों का निरीक्षण कर सोयाबीन फसल में रोग कीट नियंत्रण के लिए दवाओं के छिड़काव और अन्य उपाय अपनाने की सलाह दे रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बाबूलाल कुशवाहा और साथियों का गाया ये लमटेरा।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
2: राम राम स्वीकारें किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहन अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना की। भैया अभी 3 दिन पहले हम सब ने जन्माष्टमी मनाई है। भगवान श्री कृष्ण को नाम लेते ही भाई हमारे मन में गोकुल गैया और गोपाल की सुंदर छवि

0: मन में उभर याद है भैया, कन्हैया जी को जीवन और गोकुल की परंपरा हमें गौवंश के प्रति प्रेम को संदेश देते हैं, है ना? और जई भावना को आज के वैज्ञानिक पशुपालन से जोड़त भय राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से देसी गौवंश संरक्षण संवर्धन और उत्पादकता बढ़ावे की कोशिश में लगे हैं, जैसे पशुपालकों की आमदनी बढ़ सके। भैया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा बेहतर प्रजनन सुविधा और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अच्छी नस्ल के पशुधन तैयार हो सके और देसी नस्लों को संरक्षण करा जा सके। साथ ही स्वस्थ पशु, संतुलित आहार, सही टाइम पे टीकाकरण और वैज्ञानिक ढंग से पशु पालन के द्वारा पशुपालक ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें, मतलब गैया भी खुश और ग्वाल भी खुश। सच्चे अर्थों में देखी जाए तो जई कृष्ण भक्ति है। आप हरण का एक बात और बता देवे, जैसे पशुधन की अच्छी सेहत के लाने उनकी देखभाल जरूरी है, वैसे ही फसलों की अच्छी सेहत के लाने उनकी निगरानी और देखभाल भी बहुत जरूरी होते है। भैया, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली की। जय एक ऐसी व्यवस्था है जाके अंतर्गत आप अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं और जाके अपनी फसलों के नमूना लेके जा सकते हैं, फोटो लेके जा सकते हैं और बाकी सही जानकारी, सटीक जानकारी लेके आ सकते हैं। जे के लाने आपको कहीं कोई पैसा नहीं देने हैं, पूरी तरह सब व्यवस्था निःशुल्क है। और सरकार की ई व्यवस्था को उद्देश्य ही जो है कि किसान के लाने सही टाइम पे सही रोग या कीट की जानकारी मिल सके, जैसे कि वो सही टाइम पे सही दवाई को सही मात्रा में छिड़काव कर सके। तो भैया, आप भी सरकार की जब व्यवस्था को लाभ उठाओ। अगर फसलों में कहीं कोई कीट व्याधि दिख रही है तो अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विभाग में जाके संपर्क करें और अनुशंसित दवाइयों को प्रयोग करें। भैया, जैसे अभी हमने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करी और बात करी फसलों में रोग और कीट व्याधियां लगने पे का करें, मनो एक बात तो है, गांव की समृद्धि और विकास केवल अच्छी फसल होबे से, स्वस्थ पशुधन होबे से नहीं है। आज जरूरत है गांव में युवा और ग्रामीण परिवार अपने हुनर को रोजगार में बदलें। भैया, एक ऐसी बातचीत हम आज आपके लाने सुनवा रहे हैं। ग्रामीण स्वरोजगार के लाने जरूरी है कौशल विकास। डॉक्टर अनिल मुरलीधर विसेन से बात कर रही हैं अमृता जैन।
1: ग्रामीण स्वरोजगार के लिए जरूरी कौशल विकास, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनिल मुरलीधर विसेन जी, जो वाइस चांसलर हैं सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में। सर, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आकाशवाणी का कि इस विषय पर मुझे बोलने का मौका मिला।
1: बिल्कुल सर। और सर, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण कौशल विकास की, तो सर सबसे पहले ये बताइए कि ग्रामीण कौशल विकास से आपका क्या आशय है और आज इसकी आवश्यकता क्यों है?
2: ग्रामीण कौशल विकास का अर्थ केवल युवाओं को प्रशिक्षण देना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता, प्रतिभा और संसदीय संस्थाओं का रोजगार से जोड़ना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
2: भारत एक बड़ी आबादी गाँव में रहती है और इन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है, पशुपालन है, पर्यटन है, डिजिटल सुविधाएं हैं और छोटे उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। आज जो जरूरी है वो हमारी ग्रामीण युवा को केवल रोजगार खोजने वाला नहीं बनके बल्कि रोजगार देने वाला भी बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गांव का युवा यदि कुशल है तो गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और मजबूत गांव ही आत्मनिर्भर भारत की एक आधारशिला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने बात की ग्रामीण युवाओं की, तो ये बताइए कि भारत सरकार ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चला रहा है?
2: भारत सरकार ने कौशल विकास को बहुत एक राष्ट्रीय प्राथमिकता दी है और इसमें से जो प्रमुख योजना है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसको हम PMKVY 4.0 बोलते हैं। दूसरा जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, DDU-JKY। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना है, PMNAPS। और जन शिक्षण संस्थान तथा ऐसी और सारी योजनाएं हैं। विशेष रूप से DDU JKUI ये ग्रामीण गरीब युवाओं को बाजार की मांग अनुरूप प्रशिक्षण और रोजगार जोड़ने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसके साथ जो है स्किल इंडिया डिजिटल हब एक प्रशिक्षण रोजगार और अप्रेंटिसशिप और उसके अलावा जो है उसमें उद्योगों में एक अवसर को एक डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रयास किया है।
1: जी सर, ये तो आपने कई ऐसी योजनाएं बताई जो हमारे युवाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ग्रामीण युवाओं के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है?
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विकास योजना है जिसमें पारंपरिक कौशल के अलावा जो आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऐसे जो भविष्य के जो कौशल हैं, भविष्य की जो स्किल है उसके ऊपर में विशेष ध्यान दिया है और इन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। जैसे कि एक ड्रोन के माध्यम से हम पूरे के पूरे कृषि को उसका पूरी निगरानी करना, फसल की निगरानी करना और आजकल AI टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी सक्षम है कि कौन सी बीमारी लगने वाली है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के माध्यम से, तो उसका पहले से ही वो हमको भविष्य बता सकती है कि ये वाली बीमारी लगेगी और उसके लिए हमारा किसान तैयार हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो PMKVY युवाओं के लिए बहुत लाभकारी है।
1: जी सर, अभी आपने चर्चा के दौरान कहा DDU JKY एक योजना है, तो सर ये बताइए कि DDU JKY ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष रूप से किस प्रकार महत्वपूर्ण है?
2: DDU JKY ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण के अलावा सीधे रोजगार के अवसरों को जोड़ना होता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रशिक्षण केवल प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेशन तक नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने का पूरा जोर दिया जाता है जिसमें हम बोलते हैं कि स्किल देना, फिर इम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीनों मिलकर एक ग्रामीण परिवार की आय बढ़ा सकते हैं, पलायन को भी बहुत कम करने में मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है जिसमें सिर्फ सर्टिफिकेट ना दे करके एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी वो आगे बढ़ सकते हैं।
1: सर ये बताइए, क्या केवल सरकारी योजनाओं से ग्रामीण कौशल विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है?
2: मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन सिर्फ सरकार ही ऐसा कर सकती है, ऐसा उसके प्रयास जो है वो पर्याप्त नहीं है। हमें सरकार प्लस विश्वविद्यालय, उद्योग और स्थानीय प्रशासन, पंचायत हैं, बहुत सारे NGOs हैं और वित्तीय संस्थाओं के बीच में एक साझेदारी बनानी होगी और इसमें जो है एक विश्वविद्यालय का एक विशेष महत्व होता है क्योंकि विश्वविद्यालय सिर्फ वो डिग्री देने के लिए न बने, उनको जो है एक स्किल एजुकेशन पे जाएं और डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जिसमें गाँव के लोगों को उसका फायदा मिल सके।
1: सर ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती हैं?
2: इसमें मेरे विचार से बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन जो मेन जो चुनौतियां हैं वो उसमें एक होता है कि स्किल जो ट्रेनिंग है वो उसकी जो पहुंच है वो बहुत सीमित है। दूसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो उसका एक लिमिट है। फिर उद्योग की वास्तविक आवश्यकता के जानकारी का अभाव, मतलब अगर मैं बहुत लोगों से जब मिलता हूँ तो उद्योगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास में जो युवा आते हैं उनको स्किल एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। वो बोलते हैं कि हमको एक रेडीमेड मैन पावर चाहिए जो हम दे नहीं पाते हैं, और विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही, बहुत सारे विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही हो रहा है। अब इसका अभाव जो होता है वो ग्रामीण युवाओं तक पहुंच नहीं पाता कि उद्योगों की किस चीज़ की ज़रूरत है और उस चीज़ की ज़रूरत के हिसाब से वो तैयार हो जाए। तो एक ये जो अभाव होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। एक प्रशिक्षण के बाद में रोजगार के बाजार से जुड़ाव की कमी, जिसमें कि प्रशिक्षण तो हो गया उसका लेकिन रोजगार का जो बाजार है उससे जुड़ाव में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, वो लिंक नहीं कर पाते। इसमें मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ ट्रेनिंग ना हो बल्कि एक ट्रेनिंग के बाद में एक सर्टिफिकेशन हो, सर्टिफिकेशन के बाद में उसको जो है इंटर्नशिप हो, जो इंटर्नशिप के बाद में इम्प्लॉयमेंट हो और मेंटरिंग हो।
1: सर आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही, अब एक महत्वपूर्ण सवाल
2: जी,
1: महिलाओं की ग्रामीण कौशल विकास में क्या भूमिका हो सकती है?
2: महिलाओं की ग्रामीण कौशल विकास में सबसे बड़ी भूमिका है और ये सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग, टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, डिजिटल सर्विसेज, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर सपोर्ट, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप और ई कॉमर्स जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो मतलब एक ग्रुप बना करके बहुत सारी महिलाएं जो हैं उसमें जुड़ सकती हैं, जिसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल मार्केटिंग और बाजार से जोड़कर हम महिलाओं को बहुत आगे भी लेके जा सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो उसका लाभ केवल एक व्यक्ति को नहीं मिलता बल्कि पूरा परिवार और अगली पीढ़ी को मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है। अभी हमने बात की नई तकनीक, नए विज्ञान का जमाना है।
2: जी जी,
1: तो ये बताइए कि नई तकनीक और डिजिटल शिक्षा ग्रामीण कौशल विकास में किस प्रकार का परिवर्तन ला सकती है?
2: आज डिजिटल जो युग है और शिक्षा है इसमें बहुत बड़ी शक्ति बन के निकला है। डिजिटल डेटा है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल एक हमारा स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से विद्यार्थी और युवा ऐसे बहुत सारे कोर्सेस और ट्रेनिंग जो है वो कर सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। आजकल अगर आप गूगल पे जाएंगे, TCS पे जाएंगे और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी जो हैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खोल के रखी है कि जिसमें वो स्किल अपना ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ युवाओं को गाँव में केवल मोबाइल ही चलाना नहीं है लेकिन बल्कि मोबाइल को एक लर्निंग, अर्निंग और एंटरप्रेन्योरशिप का एक माध्यम बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि AI और डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विसेज ये जैसी जो क्षमता है वो ग्रामीण युवाओं को स्थानीय बाजार से और राष्ट्रीय वैश्विक बाजार तक पहुंचा सकती हैं।
1: और अब अंत में यदि आपको हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए कोई संदेशा देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: ग्रामीण भारत का जो युवा है उसके लिए मैं एक चीज कहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी डिग्री नहीं, आपकी क्षमता और आपकी कौशल है। और आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत नए नए रोजगार आ रहे हैं, पहले जैसे नहीं रहा। हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में, आज AI के ज़माने में AI एजेंट्स आ गए हैं, इससे आप अपना बहुत सारा काम करवा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये ना करें कि मैं नौकरी के तरफ जाऊँ। आप युवा हैं, आप ये देखें कि मैं अपने कौशल को कैसे पहचानूं और नई तकनीक कैसे सीखूं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे जाऊं। मेरा यह मानना है कि कुशल युवा, सशक्त गांव, आत्मनिर्भर परिवार और विकसित भारत, ये तभी होगा जब हमारा युवा गांव में रहने वाला सशक्त होगा, गांव सशक्त होगा, इंडिपेंडेंट इनकम होगी और आगे बढ़ पाएगा।
1: सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।
0: भैया अबे हमने जानो ग्रामीण स्वरोजगार के लाने कौशल विकास कितनो जरूरी है। कहते हैं ना, हुनर जब मेहनत से जुड़ जाए तो आत्मनिर्भरता की रास्ता और आसान हो जाते है। कार्यक्रम की शुरुआत से ही हम भगवान कृष्ण की, गैया की, कन्हैया की बात कर रहे हैं। भैया हम बात तो आपसे कर रहे हैं, मनो हमारे मन में कन्हैया जू की एक छवि तैर रही है। कोमल कोमल हाथ, कोमल शरीर, मंद मंद मुस्कान और मनमोहक उनकी छवि, बस ऐसो लगत है अभी सामने आ जाए तो अभी उन्हें कहियां ले लेवे। एक ऐसो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं छगन लाल वर्मा और साथियों के सुरों में।

0: का बात है भैया, मजा आ गयो। इतो बढ़िया मीठो गीत सुन के मन अच्छो हो गयो है। अब हम आपके लाने आगे ले चल रहे हैं एक ऐसी जानकारी की तरफ जो किसान भैया आगामी रवि मौसम में सब्जी उत्पादन करबो चाह रहे हैं, नर्सरी लगा रहे हैं, के भी जानबो चाह रहे हैं कि कौन सी पौध लगाएं, कैसे लगाएं, का तैयारी करें, यही के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मेदनी प्रताप सिंह, CIAE यानी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। सुनते हैं उनकी दईजा जानकारी।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे रबी में सब्जियों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। जो किसान भाई हमारे रबी सीजन में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए अब सही समय आ चुका है नर्सरी डालने का। किस तरीके से हम सब्जियों की नर्सरी डालें, बीज की बुआई करें, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी के सीजन में मुख्यतः सब्जियों की फसलों में जैसा कि टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, बैगन, गोभी वर्गीय हमारी जो सब्जियां हैं जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, ये जो हमारी सब्जियां होती हैं, इन्हें हमें सबसे पहले नर्सरी में इनकी पौध तैयार कर लेनी चाहिए। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें नर्सरी प्रबंधन यानी किस तरीके से करना है जिससे कि हमारी पौध स्वस्थ तैयार हो, और जब हमारी पौध स्वस्थ होगी तो हमें उत्पादन ही भी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाई, हमें सबसे पहले ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे मृदा की उर्वरता अच्छी हो, और हम जब भी नर्सरी का बनाएं, नर्सरी हमेशा जमीन से लगभग 5 से 6 इंच उठा करके बनानी चाहिए, और नर्सरी की चौड़ाई हमारी 1 मीटर रखनी चाहिए। लंबाई हम अपने अनुसार रख सकते हैं। तो किसान भाई, अच्छी तरीके से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें और नर्सरी को लगभग जमीन से 4 से 5 इंच उठा करके बनाएं। उसके बाद किसान भाइयों, आप सबसे जो मुख्य बात होती है, हमें बीज का चयन, उन्नतशील और प्रमाणित बीज हमें बोना चाहिए। उन्नतशील और प्रमाणित बीज का चयन करें, और बीज जो है हमें अच्छी जगह से ही लेना चाहिए। अच्छी जगह का मतलब होता है हमें कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और जो भी हमारे सरकारी प्रमाणित संस्थाएं हैं, उन जगहों से हम बीज का, अच्छी प्रजातियों का लेके आएं और उनको फिर हम जो है बुआई करें। तो नर्सरी हमने तैयार कर ली, अच्छी तरीके से मिट्टी को हमें भुरभुरा कर लेना चाहिए। उसमें हमें वर्मी कंपोस्ट या जो हमारी गोबर की सड़ी हुई खाद है उसको अच्छी तरीके से मिला करके और उसको उठा करके नर्सरी को बनाएं। प्रॉपर उसमें अच्छी नमी होना चाहिए। उसके बाद हम 3 से 4 अंगुल में लाइन खींच करके नर्सरी में, जिस तरीके से जैसा कि मैंने कहा टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैगन है या गोभी वर्गीय है, उनके बीज को हमें डालना है। ध्यान ये देना है कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा हमें बीज को नहीं बोना है, क्योंकि इन सब्जी वर्गीय पौधों के जो हमारे बीज होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं रखनी। अगर ज़्यादा गहरी हम सब्जी की बीज को डालेंगे तो फिर उसका अंकुरण अच्छा नहीं होगा। तो किसान भाई, अच्छी तरीके से हमें बीजों की बुआई कर दें। बुआई करने के उपरांत हमें बारीक वर्मी कंपोस्ट या बारीक सड़ी हुई गोबर की खाद से उनको अच्छी तरीके से ढक दें। थोड़ा हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये सितंबर का महीना चलता है, कई बार हमारे मानसून का जो लौटती मानसून की बारिश है और वो काफी तेज होती है, तो उससे बचाव, नर्सरी को बचाने के लिए हमें जो है, अगर हो सके यदि हमारे पास पॉलीटनल है तो बहुत अच्छा है, पॉलीटनल उसके ऊपर रख देना चाहिए। पॉलीटनल का मतलब ये होता है कि हम बांस की खपच्चियों का भी बना सकते हैं और हमारा आयरन का भी यानी लोहे की भी टनल को बना करके उसके ऊपर सफेद रंग की जो पॉलीथीन होती है उसको हम ढक देते हैं, जिससे कि अनावश्यक जो बारिश है, ज्यादा नमी है, वो हमारी नर्सरी को नुकसान ना पहुंचा पाए। किसान भाई, देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद आपकी नर्सरी जमना शुरू हो जाएगी, और उसमें हमें फिर एक ध्यान देना है कि कई बार अगर हम देखते हैं कि शुरुआती अवस्था में हमारे नर्सरी में बीमारियां कुछ आने लगती हैं, जिसे हम कॉलर रॉट या डैम्पिंग ऑफ के नाम से भी जानते हैं, जो आप देखते हैं कि छोटे पौधे ही जैसे ही उगते हैं और उनमें जो है फंगस का अटैक हो जाता है और वो जो है जड़ के पास से ही तने से वो के गिर जाते। इससे बचाव के लिए हमें कार्बंडाजिम या मैंकोजेब नामक जो फफूंद नाशक दवा है, इसका 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ड्रेंचिंग करना चाहिए। तो हमारी नर्सरी पौधे दी देखते हैं, देख बहुत ही अच्छी स्वस्थ नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है। और किसान भाई, रबी फसलों में कुछ हमारी सब्जियां हैं जिनको हम सीधे खेत में बुआई करते हैं, जैसे आप देखते हैं पालक है, धनिया है, मेथी है, गाजर है, चुकंदर है, और यहाँ तक हमारी सब्जी मटर भी हम जो है सीधे बुआई करते हैं। खेत की तैयारी हमें इस तरीके से करना है, संतुलित मात्रा में हम खेत की तैयारी करें जिससे कि हम अच्छे से अपने उसमें जो है उर्वरकों को दें और सभी उर्वरकों को खेत की तैयारी करते समय मिलाएं और सही से उसमें जो बीज दर है और सही समय पर बीज का बुआई करें जिससे कि हमारी फसल अच्छा उत्पादन देगी और हमें अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। तो किसान भाई, सही समय आ गया है, आप अच्छी तरीके से नर्सरी का बनाए और नर्सरी पौध हमें जो है 20 से 25 दिन की जब नर्सरी पौध हो जाए तभी हमें उसकी रुपाई कर देना चाहिए।
0: अब हम बढ़ रहे हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे। बात मौसम की अगर करें तो प्रदेश में आगामी दिनों में बरसात जारी रहने की संभावना है, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बरसात होने को अनुमान है। मनो, आप सबके लाने सलाह जा है कि क्षेत्रीय मौसम की चेतावनी को ध्यान से सुनत रहें और बाकी हिसाब से अपनो काम करें। मौसम के बदलाव को असर अब फसलों पे दिख रहा है, खास तौर पे देखी जाए तो सब्जी उत्पादक किसान ध्यान देवे, क्यारियों में पानी बिल्कुल भी ना रुको रहने दें। टमाटर, मिर्ची, बैगन, भिंडी, लौकी और कद्दू वर्गीय सब्जियों में पत्तियों में धब्बा बने दिखाई दें, पत्तियां मुड़ी दिखाई दें, पौधे मुरझाए भाई दिखाई दें, फसलों में छेद दिखाई दें तो बिना देरी के अपने पास के कृषि वैज्ञानिकों से मिलें या कृषि विज्ञान केंद्र में जाके जानकारी लें और तुरंत इन रोग व्याधियों को मिटावे के उपाय करें। हाँ, जा बात ध्यान रखें, जैसे ही ऐसी कोई समस्या दिखाई दे तो नीम आधारित दवाइयों को प्रयोग जरूर कर ले, जैसे कि फिलहाल के तौर पे उन कीट और रोगों को नियंत्रित करो जा सके। चलत चलत मंडी के भाव की बात भी कर ले भैया। 7 सितंबर यानी कल इंदौर कृषि उपज मंडी में अनाजों के भाव जो रहे, अधिकतम भाव हम आपको बता रहे हैं। मूंग को भाव 7,000 रुपया प्रति क्विंटल थो, उड़द बिकी 8,196 रुपया के भाव से, हरी मटर को अधिकतम भाव रहो है 3,790 रुपया, तुअर यानी अरहर को भाव अधिकतम 6,695 रुपया प्रति क्विंटल, देसी चना 9,000 रुपया प्रति क्विंटल बिको, डालर चना बिको 8,905 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन को अधिकतम भाव 6,570 रुपया और गेहूं को भाव 2,771 रुपया दर्ज भाव थो, तिल को भाव 11,720 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज करोगो। जे थे मंडी के भाव। तो भैया, जो तो रहो आज को किसान वाणी कार्यक्रम। अब हम मिले कोई और कार्यक्रम में, फिर आपसे करें ढेर सारी बातें। अब आज्ञा दो अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना को, स्वीकार करो दो हाथ जोड़े की राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। हम आज इन्हीं सब कुछ विषयों पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी। केतन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: सबसे पहले तो केतन जी हमें यही बताइए कि प्रधानमंत्री की जो आज की सभा रही है और विशेष रूप से जो विभिन्न विकास परियोजनाओं का आरंभ हुआ है वह किस रूप में है और कैसे गुजरात समेत पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा।
3: प्रधानमंत्री जी ने आज गुजरात के प्रमुख दो शहर की मुलाकात लेके वेरियस डेवलपमेंटल वर्क्स है उनको या तो शिलान्यास किया है या तो डेडिकेट किया है नेशन को।
2: जी।
3: सुबह सबसे पहले वो वडोदरा आए थे सेंट्रल गुजरात में, जहां करीबन 35,000 करोड़ से भी ज्यादा वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स का उन्होंने शिलान्यास किया या तो फिर इनोग्रेशन किया, जिसमें मेनली देखे जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स और इंडियन रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट्स को समावेश किया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करीबन 1840 करोड़ प्रोजेक्ट्स की कीमत के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। और जो जिस प्रोजेक्ट पर सबकी नजर है वो जैसे आपने जिक्र किया कि 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे के, उसका उन्होंने आज राष्ट्र को समर्पित किया।
2: जी।
3: तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा जो प्रधानमंत्री का दौरा है भारत का, उसमें ये सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो 20,000 करोड़ का एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC, ये जो 3 प्रमुख उपक्रम है उसका लोकार्पण आज हुआ है।
2: यहाँ पर श्रोताओं हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही, खासतौर से रेलवे के क्षेत्र में देश ने जो प्रगति की है उसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि पिछले दशक में भारत न केवल रेलवे कोच और मेट्रो कोच बल्कि रेलवे लोकोमोटिव के लिए भी एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के तौर पर उभरा है। 2014 से लेकर अब तक देश में 50,000 आधुनिक रेलवे कोच बनाए गए हैं। आइए हम प्रधानमंत्री का वक्तव्य समझते हैं।
1: जब देश की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बीते एक दशक में भारत रेल कोच मेट्रो कोच बनाने का, रेल इंजन बनाने का भी एक बड़ा निर्माता बना है। 2014 के बाद से अब तक भारत ने करीब 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए हैं। पुरानी सरकार 10 साल में 50,000 टॉयलेट नहीं बना सकती थी, 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही। करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं, 2.5 लाख।
0: यहाँ पर केतन जी, हम समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा कि रेलवे का बजट काफी बढ़ा है, उससे पूरा इकोसिस्टम बदल गया है, इसे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए किस रूप में परिवर्तन हो रहा है।
2: देखिए, प्रधानमंत्री का जो पहले विजन था कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है। वेरियस प्रोजेक्ट चाहे वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में उन्होंने बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। थोड़े साल पहले बड़ौदा में ही एक बोम्बार्डियर रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन भी उन्होंने किया था। तो आज जो बड़ौदा में हुआ है, करीबन 329 किलोमीटर का जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है, मोर देन 9,700 करोड़, उसमें वडोदरा रतलाम का एक रेलवे लाइन है, करजन से मलसर तक का ब्रॉडगेज कन्वर्जन है, और विश्वामित्री डभोई सेक्शन का एक डबलिंग रेलवे ट्रैक है। वो सब प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया और या तो इनोग्रेशन किया या तो शिलान्यास किया। लेकिन सबसे ज्यादा देखने की बात है कि मुंबई से वडोदरा, मतलब महाराष्ट्र को सेंट्रल गुजरात और सेंट्रल गुजरात से अहमदाबाद तक,
0: जी,
2: वो पूरा जो इंडस्ट्री कॉरिडोर है, जिसको गुजरात में हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत अब तक आया करती थी वो माल परिवहन की थी, गुड्स परिवहन की,
0: जी,
2: कि एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती थी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में आज कहा है कि एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी और गुड्स ट्रेन भी चलेगी, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए परेशानी होगी। तो पहले जितना डिस्टेंस काटने के लिए 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा लगता था, वो डिस्टेंस इन डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर की वजह से कम होके आधे से भी कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यदि मुझे बड़ौदा से मुंबई किसी चीज को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो जो ट्रैवलिंग टाइम था, ऑपरेशन कॉस्ट थी, वो जो पहले आती थी, वो इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से काफी कम हो जाएगी। तो नो डाउट ये, इसमें दो तरह से हम देख सकते हैं इस चीज को, कि एक तो जो रेलवे के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कि नई लाइन शुरू करना, नई परिवहन सेवाएं शुरू करना, तो इनसे तो नए रोजगार के नए अवसर तो क्रिएट होंगे, साथ में इस प्रोजेक्ट से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्रीज जो अभी गुजरात में आ रही है, गुजरात अहमदाबाद और मुंबई के बीच का जो कॉरिडोर है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उस बीच में जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है, उन इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विद इन डोमेस्टिक, मतलब कंट्री में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा की जरूरत, वो सुविधाएं काफी बढ़ेगी। वो सुविधाएं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन और पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से बूस्ट मिलेगा।
0: यहाँ यदि हम ये समझना चाहें तो बड़े पैमाने पर इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, किस रूप में रोजगार का परिदृश्य बदलेगा, बढ़ेगा, एक ओर कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा, दूसरी ओर आम लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा, थोड़ा इसको भी स्पष्ट कीजिए।
2: मतलब जिस तरह के प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक आ रहे हैं, ब्रॉड लाइन कन्वर्जन से लेके नई लाइन क्रिएट करना, तो ऑब्वियसली नए प्रोजेक्ट्स में नए लोगों की खपत होगी, नए गुड्स की खपत होगी, तो जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है पूरी एक रेलवे लाइन को डेवलप करने के लिए या कोई एक नेशनल हाईवे को डेवलप करने के लिए, तो ऑब्वियसली जब काम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और दूसरा, इनसे क्या है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो प्रॉस्पर होगी, और यदि लोकल इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर होगी तो मेरे ख्याल से ये परिवहन की वजह से जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो बड़े प्रोजेक्ट पहले नहीं ला सकती थी, वो बड़े प्रोजेक्ट्स वो शुरू करेगी सब इंडस्ट्रीज। तो ऑब्वियसली किसी भी इंडस्ट्री का यदि ग्रोथ होता है, पूरे एक सेक्टर का ग्रोथ होता है, तो उसी सेक्टर में और उस इंडस्ट्री में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
0: यहाँ पर हम प्रधानमंत्री के उस उद्बोधन को याद करना चाहेंगे जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगी और जिससे देश के भीतर एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। किस रूप में इसे देखते हैं कि जो नया फ्रेट कॉरिडोर बना है, साथ ही जो नई नई कह लें औद्योगिक इकाइयां आ रही हैं, उससे किस तरह से पूरे देश के लिए और विश्व के लिए आने वाले दिनों में हम सप्लाई चेन के रूप में विकसित हो सकेंगे?
2: सप्लाई चेन एसेंशियल है, और ऐसा इफेक्टिव सप्लाई चेन के लिए हमें चाहिए क्या, एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, चाहे वो रेलवे के जरिए हो या और जरिए से हो। आज जो प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का डेडिकेट किया है नेशन में, उसमें आप उसमें देखिए आप तीन सेक्शन इंक्लूड है, एक सारण से मकरपुरा मतलब बड़ोड़ा,
0: जी
2: एक उमरगाम से न्यू सफाले, और तीसरा न्यू सफाले से मुंबई का JNPT पोर्ट। तो इस तरीके से देखें तो सानंद यहाँ है अहमदाबाद के बगल में,
0: जी
2: वहां से लेके मुंबई के JNPT पोर्ट तक जो गुड्स का परिवहन जिस गति से होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था। अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से परिवहन में काफी तेजी आएगी, क्योंकि एक डेडिकेटेड कॉरिडोर है तो परिवहन में तेजी आएगी, तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट मिलेगा। और दूसरा कि जिस तरह से हम पिछले अभी हमने देखा है कि गुजरात में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आ चुकी है, पूरे विश्व की नजर अभी जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ रही है, तो उस दिशा में हमें किसी पर आयात करने के लिए निर्भर न रहना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर से लेके जो जो भी चीजें जिस पर हम दूसरे देशों पे निर्भर हुआ करते थे इंपोर्ट करने के लिए, वही चीजें हम आज डोमेस्टिकली अपने देश में बना रहे हैं। शुरू हो गया है, कहीं प्रोजेक्ट स्पीड पकड़ चुका है, ऑटो इंडस्ट्री में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, टेक्सटाइल तो हमारा है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, सेमीकंडक्टर चिप बनाने से लेके। तो जो एक 2047 का एक प्रधानमंत्री ने हमें जो
0: जी
2: पूरे
0: जी
2: देश को एक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, इस विकसित भारत के लक्ष्य में सबसे प्रमुख कोई चीज है तो वो है इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहाँ जो चीज की जरूरत है वो चीज का उत्पादन भी हमारे वहाँ हो और उस चीज का बाजार भी हमारे यहाँ हो, तो ये दोनों तरीके से ये अलाइन होता है उनके विजन के साथ, कि एक तरफ यदि हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो जो उत्पादन हो रहा है उसको बाहर भेजने के लिए, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट और देश के बाहर भेजने के लिए जो सुविधा हमें डेवलप करनी चाहिए। और उसी सिलसिले में उन्होंने शिप का जिक्र किया था
0: जी
2: कि चाहे हम दरियाई रूट से एक्सपोर्ट करें या और अदर रूट से, लेकिन वो जो पोर्ट है, पोर्ट से इंटीरियर एरिया में परिवहन करने के लिए भी इफेक्टिव सुविधा की जरूरत है। तो दिस वॉज द गैप विच वी वेर एक्सपीरियंसिंग पिछले कई सालों से, तो वो गैप आज इस प्रकार के प्रोजेक्ट की वजह से काफी कम होता जा रहा है, काफी हम उस दिशा में काफी आगे देखते जा रहे हैं।
0: यानी कुल मिलाकर हम देखें तो देश तेज गति से प्रगति कर रहा है और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। इस बदलाव को किस रूप में आंकते हैं आप?
2: निश्चित तौर से एक बदलाव लोग अभी महसूस कर रहे हैं। सी देखिए सबसे बड़ी बात पैसेंजर के तौर में मैं बताऊं, आज हम देख रहे हैं कि कितनी सारी वंदे भारत ट्रेन से कनेक्टिविटी बढ़ी है, सुविधाएं मिली है, नई नई वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है और वो डेडिकेट हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है, उसके पीछे का जो परिश्रम है, वो ये रेलवे रिलेटेड फैसिलिटीज खड़ी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, कि किसी एक ट्रेन को आप एक शहर के से दूसरे शहर को जोड़ते हैं तो इफेक्टिव कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो उस दिशा में ये काफी सिग्निफिकेंट है कि पहले रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, हमारे पास सबसे बड़ा कनेक्टिविटी पावर है, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं हम ये महसूस नहीं कर पा रहे थे कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक के जो लास्ट विलेजेस है भारत के, वो हम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। तो इस सरकार ने जो रेलवे पर फोकस किया है, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 2.75 लाख करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें 50,000 कोच अपने आप में एक माइलस्टोन है। जिस देश में अभी 10-15 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि रेलवे कोच बनाएंगे, वहां आज हम 50,000 रेलवे कोच नए जोड़ चुके हैं।
0: जी
2: तो रेलवे में अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छी गाड़ियां देखने को मिलती है। और आज गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद से सूरत जाने के लिए, अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए आज आपके पास ट्रेन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपका समय बचाता है, आपकी एनर्जी बचाता है। और एट द सेम टाइम ये डेडिकेटेड फ्रे कॉरिडोर की वजह से जो इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, उसका समय बचेगा, इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट परिवहन कर पाएंगे, वो भी अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है टूवर्ड्स 2047।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हम सधे कदमों से धीरे धीरे चलकर पूरा कर रहे हैं, और हम विश्वास रखते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेज गति से देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ेगा। केतन जी, आपने हमें बहुत उपयोगी जानकारियां दी हैं। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ है। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और फिल्म का नाम मेरे हमसफर।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर का गाया हुआ। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, प्यार का मौसम फिल्म से, जिसे आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने, मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना संगीत आर डी बर्मन का।

0: मुकेश की आवाज़ में गाए अनीता फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
5: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
4: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
5: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
5: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
4: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
5: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
4: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
5: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
5: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
9: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहाँ की सरकार, वहाँ के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
4: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव

0: ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
2: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
3: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में

मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: title. The women's recurve team of Bhavna and Pooja settled for silver after going down 0-6 to Chinese pair in the final. Swati and Adil Muhammad Nazir Ansari finished runners-up in the mixed team W1 recurve compound event, taking silver. Swati then claimed bronze in the individual W1 category, defeating Russia's Elena Krutova 6-2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's fintech journey takes new heights with innovation and inclusion at its core, inaugurates Global Fintech Fest in Mumbai. Prime Minister dedicates to nation projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat, says from chips to ships, India is now building a new manufacturing future. Defence Minister Rajnath Singh arrives in Colombo on a three-day visit to Sri Lanka to boost bilateral defence and maritime cooperation. Russia backs India's peace efforts to end Ukraine conflict, says Moscow alliance with New Delhi's position on the issue. Heavy rainfall likely over Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Odisha and northeastern states tomorrow. And India win 5 medals, including 2 gold at the World Para Archery Series in Ahmedabad. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सफर नई बुलंदियों तक पहुंच गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तिराआत और सबकी शमूलियत शामिल है। वजीराजम ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की मालियत के कई प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं, ताकि बाहमी दिफा और समंदरी सरहद से मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। रूस ने यूक्रेन लड़ाई के खात्मे के लिए भारत की अमन कोशिशों की हिमायत की है। रूस ने इस मामले पर भारत के मौकिफ से वाबस्तगी का इजहार किया है। बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड, ओडिशा और शुमाल मशरकी रियासतों में कल बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। और अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के 2 तमगों समेत भारत ने 5 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फिनटेक सफर को नई बुलंदियों तक ले गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तिराआत और सबकी शमूलियत है। वजीराजम ने कहा कि एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम जैसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंस के शोबे में नए इम्कानात खोल रही हैं। जनाब मोदी ने आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 7वें एडिशन से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीराजम ने फिनटेक के चैंपियन के तौर पर UPI की सताइश की और इस बात का जिक्र किया कि पिछले महीने 2400 करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गईं। उन्होंने कहा कि अब भारतीय UPI 11 मुल्कों में दस्तियाब है।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
1: पिछली सहमाही में मुल्क के काबिले जिक्र मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह तरक्की की सताइश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि चैलेंजों से पुर आलमी तनाजात, गैर यकीनी सूरत हाल और तवानाई और जरूरी अशिया की आलमी सप्लाई चेन्स पर दबाव के बावजूद भारत की 7.8% तरक्की ने दुनिया को एक बार फिर उम्मीद की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने मुल्क की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- तक पहुंचा दिया है, जिसमें एक मुस्तहकम आउटलुक शामिल है, और इस तरह भारत 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे के बाद ए रेटिंग के जुमरे में वापस लौटा है। 4 रोजा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मुंबई में 8 से 11 सितंबर तक मुनक्किद हो रहा है। इससे कबल दिन में आज वजीर आजम ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम ने मगरबी रेलवे के लिए वक्फ मालगाड़ी की राहदारियों के 3 अहम सेक्शन मुल्क के नाम वक्फ किए और ये मालगाड़ी की राहदारी के नेटवर्क की पूरी तरह तकमील और

0: बाकायदा कामकाज शुरू होने की अलामत है। जनाब मोदी ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू अंबरगांव और न्यू जेएनपीटी से मालगाड़ी खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक मुसाफिर रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो दूर दराज के कबायली इलाके अलीराजपुर को कौमी रेल ग्रिड से जोड़ती है। वजीर आजम ने 9,700 करोड़ रुपये की मालियत के रेलवे के 3 तौसी प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है।
1: अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: वजीर आजम ने कहा कि एक मुकम्मल खुद कफील सप्लाई चेन मुल्क के अंदर तैयार हो रही है, जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक से समंदरों में भारी जहाजरानी तक का अहाता करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर उभरा है और वो अब खुद जदीद तरीन रेलगाड़ियों और मेट्रो के कोच बना रहा है। वजीर आजम ने भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर की तेजी से होती कायापलट को भी उजागर किया।
1: आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: वजीर आजम ने नवसारी में नौ तामीर शुदा बीजेपी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद एक पुरहजूम अवामी रैली से खिताब किया। जनाब मोदी ने शहरियों और अवामी नुमाइंदों से जोर देकर कहा कि वो समाजी खिदमात और सफाई को रोजमर्रा की बिला कोशिश आदत बना लें। साथ ही इस बात को यकीनी बनाएं कि तरक्याती स्कीमों की रसाई आखिरी फर्द तक हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतादिद रहनुमाओं के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। रूस यूक्रेन जंग के सिलसिले में तर्जुमान ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के साथ राबते में है और इस बात पर गौर कर रहा है कि इस लड़ाई को रोके जाने के सिलसिले में क्या कोई नज़रियात और तजावीज हैं जो मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में यूक्रेन और पोलैंड का दौरा किया था। अपनी बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि भारत ने मुसलसल ये मौक़िफ बरकरार रखा है कि ये दौर जंग का नहीं है और कोई भी हल जंग के मैदान से नहीं निकलेगा। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब से मुतालिक बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय फॉरेंसिक टीम और टनल में बचाव टीम ज़मीनी सतह पर काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम इस वक्त काठमांडू में 2 लेबॉरेटरियों में काम कर रही है और वो 1,200 DNA नमूनों की जाँच कर रही है। जनाब जायसवाल ने कहा कि 275 भारतीय शहरी लापता हैं, जिनमें वो 49 अफराद भी शामिल हैं जो चीन की जानिब लापता हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 169 भारतीय शहरियों को अब तक बचा लिया गया है।
2: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो DNA की सैंपलिंग भी ले गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहाँ की सरकार, वहाँ के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल के आवाम और हुकूमत के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने जल्द मदद का हाथ बढ़ाया और वो राहत इमदाद, बचाओ और तामीर नौ की कोशिशों में मदद जारी रखेगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि 7 तैयारों के जरिए अब तक 95 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है और कुछ और इमदादी सामान जल्द भेजा जाएगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत चीन ताल्लुकात रफ्ता रफ्ता मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ताल्लुकात के इस तरह रफ्ता रफ्ता मामूल पर आने और अवाम से अवाम के दरमियान रबते इंतहाई अहम हैं। इस महीने की 6 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय हिस्से के वाचा में और कल चीन की जानिब दमाई में पहली आला सीनियर मिलिट्री कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग के सिलसिले में सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि मगरबी सेक्टर में भी इसी तरह का तरीक़ेकार मौजूद है।
2: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों

0: और सबकी शमूलियत शामिल है। वजीर आजम ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं ताकि बाहमी दिफा और समंदरी सरहद से मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। और रूस ने यूक्रेन लड़ाई के खात्मे के लिए भारत की अमन कोशिशों की हिमायत की है। रूस ने इस मामले पर भारत के मौकफ से वाबस्तगी का इजहार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। सामईन, आज के कहकशां प्रोग्राम में महफिल समा सीरीज़ के तहत हम बात करेंगे सूफ़ी रिवायत में मोहब्बत, अमन और भाईचारे की, और साथ ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे मखमली आवाज़ों वाले गुलूकारों की कव्वालियों से। अज़ीज़ दोस्तों, तसव्वुफ़ कहता है कि खुदा एक है, उसकी नज़र में उसके सारे बंदे एक हैं। परवरदिगार से मोहब्बत ही इंसानी ज़िंदगी का मकसद है और मोहब्बत ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो इंसान इस मोहब्बत को पा लेता है उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती। तसव्वुफ़ की सबसे बुनियादी तालीम है कि इंसान अपने खालिक व मालिक से ऐसा रूहानी रिश्ता जोड़े कि उसे अपने दिल के आईने में सारी दुनिया का अक्स नज़र आने लगे। इस तरह दिल से दिल के तार जुड़ते चले जाएंगे और कोई भी उसके लिए गैर नहीं रह जाएगा। कबीर दास जी ने क्या खूब कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सामईन, जैसा कि हम जानते हैं हमारा प्रोग्राम महफिल समा कव्वालियों से सजा होता है, तो आइए सुनते हैं अपने प्रोग्राम की पहली पेशकश में ये खूबसूरत कव्वाली। समात फरमाइए।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार माजिद शोला की जादुई आवाज़ में कव्वाली समात फरमा रहे थे। सामईन, हमारी बातचीत का मौजू था सूफी रिवायत में मोहब्बत, अमन और भाईचारा। इंसानी समाज और जंगल राज में ये वाज़े फ़र्क है कि इंसानी समाज का एक दस्तूर होता है, जबकि जंगल में कोई कानून नहीं चलता। हर ताकतवर जानवर कमज़ोर जानवर को खा जाता है, मगर इंसानी माशरे में ऐसा नहीं चल सकता। इंसान को बकाए बाहम के दस्तूर पर चलना होता है और जियो और जीने दो के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ये हक़ पूरे महज़्ज़ब समाज का है, इसके बग़ैर कोई इंसानी माशरा वजूद में नहीं आ सकता। बकाए बाहम का उसूल अक्वामे मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हुकूक का हिस्सा है। वैसे भी अगर ये इंसान खून इंसानी का एहतराम करना बंद कर दे तो ये दुनिया बाकी नहीं बचेगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, तसव्वुफ़ बताता है कि अल्लाह हर वक्त हर जगह इंसान की निगरानी कर रहा है, इसलिए उसे कभी भी कुदरत के कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। सामईन, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाक़या है कि किसी शख्स ने आपसे पूछा कि फ़लाँ शख्स मेरे साथ बदसलूकी करता है, क्या मैं भी उसके साथ वैसा ही सलूक करूं? तो आपने फ़रमाया कि हरगिज़ नहीं। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए तो तुम भी उसके रास्ते में कांटे बिछाओ, तो ये दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटों का जवाब कांटे हरगिज़ नहीं हो सकते। सूफिया इकराम की यही तालीमात इंसान के अंदर मुस्बत स्पिरिट पैदा करती है, जुल्म तशद्दुद से रोकती है। अगर दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो दुनिया को इसी सोच की जानिब आना पड़ेगा।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रदूषित पानी पीने

0: हम हो सकते हैं बीमार।
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ।
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
1: और उसको पिएं छान कर उबाल कर।
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, रात्रि के 10 बजे हैं। डीजी सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत, जिसे हमने लिया थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें, गुलजार के बोल, संगीत खय्याम का है। सुनना चाहा है घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। इंदौर से पतराया लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया का। महेश हजारे, मिंताश हजारे, आदित्य हजारे, ये श्रोता हैं करजत पुणे से।

अर्थ लीजिए इस फिल्म में सुनिए जगजीत सिंह को, कैफी अजमी के बोलों को संगीतबद्ध किया जगजीत सिंह ने, सुना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश सावले, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से पत्राए बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मास्टर मनीष, गांधी चौक से ही रोपड़ बाजार से पंजाब से पत्राया हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत सुना जा है बनिया पारा धमतरी से रामचंद माखीजा काफिर भाई सविता माखीजा स्वाति पूरा माखीजा परिवार सिंहपुर बड़ा से। ये पत्र है राजेश नेमा संगीता भावना और प्राची नेमा का। जयराज प्लोट राजकोट से इस गीत को सुना चाह है मधुसूदन भट्ट आरती पूजा जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने। इन सभी श्रोताओं की पसंद है खयाम का संगीतबद्ध किया बाजार फिल्म का ये गीत जिसे आवाज़ें दी लता मंगेशकर और तलत अजीज ने। गीत लिखा मखदूम मोहिउद्दीन ने।

संगीत कुलदीप का, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, जगजीत सिंह की आवाज़ में। ये गज़ल है साथ साथ फिल्म से, जिसे सुनना चाहा अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लू राम पूरन छोटू डुंडुन और समस्त परिवार। इसी की फरमाइश आई है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद परमानंद पंकज प्रमोद रोहित मोहित और राम जी आर्य की।

वक्त फिल्म की फरमाइश हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे आवाज़ दी आशा भोसले ने, रवि का संगीत है, गीत साहिल लुधियानवी का। इसे सुनना चाहा नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन ने। ये श्रोता हैं बलविंदर, जितेंद्र, राकेश, सोहम, गौरव, शांति और उनके सभी साथियों का। ये सभी श्रोता हैं बैरागढ़ भोपाल से। इसी गीत की फरमाइश भेजी है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से, राजेश कुमार धनजीर, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से, विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा, नीतू और इनके मम्मी पापा ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर वक्त फिल्म का गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए अब सुनिए पाकीज़ा फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। कैफ भोपाली की रचना है, संगीत गुलाम मोहम्मद का। सुना चाहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान, हदिया खान असमा सालिया शोएब खान, पोत्रा मुश्ताबा खान राव भाई शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली कटनकर। इसी गीत की फरमाइश भेजी है, रामविलास वर्मा, सोहनलाल वर्मा, रमेश सुरेश और उनके सभी साथियों ने। ये श्रोता हैं डिंडोरी जबलपुर से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए पाकीज़ा फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की इच्छा है। पाठक को आगे दीजिए, नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए, अब सुनिए गुलाम कदीर खान का राग केदार में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे गुलाम खदीर खान का राग केदार में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली से ही 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के 3रे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके

0: Bulletin.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 और 5 सेकंड हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।